नमस्कार, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आज दिन रविवार है, शक संवत 1948, ज्येष्ठ माह की 24वीं तिथि है, अर्थात अंग्रेजी सन 2026 जून महीने की 14वीं तिथि है। सुबह के 5:58 और 44 सेकंड हुए हैं। सभी श्रोताओं को हार्दिक अभिनंदन करते हुए हम आरंभ करते हैं आज की पहली सवा।

0: नमस्कार। आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार बल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दो देशों फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के शहर नीस पहुंच गए हैं। G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा श्री मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया। हमारे संवाददाता ने बताया है कि भारतीय समुदाय के लोगों ने होटल नेग्रेस्को में श्री मोदी का गर्मजोशी से स्वागत सत्कार किया।
1: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने

0: कथक, ओडिसी और भारतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के नीस में चल रहे प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने उनके स्वागत सत्कार को अविस्मरणीय बताया। उन्होंने कहा कि भारत से मीलों दूर होने के बावजूद स्वदेश के प्रति प्रवासियों के संबंध में मजबूती आई है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से लगभग 12 किलोमीटर दूर रेहरधर शाखा तक पहुंचने में 2 घंटे से अधिक का समय लगता है। ड्रोन सेवा से ये समय घटकर मात्र 60 मिनट हो जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। मध्य प्रदेश के इंदौर में 5 दिन का ब्रिक्स कृषि सम्मेलन सम्पन्न हो गया है। सदस्य देशों ने इंदौर घोषणा पत्र में खाद्य सुरक्षा और कृषि में स्मार्ट तकनीक के उपयोग को सर्वसम्मति से स्वीकार किया। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सम्मेलन में 4 नई संस्थागत पहलों की घोषणा की गई। इसरो के चेयरमैन वी नारायणन ने बताया कि उन्होंने परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया है जो लूनर लैंडर को चंद्रमा के बेहद ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में इसरो प्रमुख ने बताया कि अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने पर काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। आर्टिफिशियल हीटर वाला ये लैंडर चंद्रमा के कठोर मौसम में भी काम कर सकेगा। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस से पहले आयुष मंत्रालय आज मोरारजी देसाई राष्ट्रीय योग संस्थान और हैबिल्ड के सहयोग से वैश्विक ऑनलाइन योग कार्यक्रम आयोजित कर रहा है। ये सत्र सुबह 6:15 बजे से 7:35 तक चलेगा। 130 से अधिक देशों के इस कार्यक्रम में भाग लेने की आशा है। आयुष मंत्रालय ने कहा कि कार्यक्रम का उद्देश्य योग में रुचि रखने वाले विश्व भर के लोगों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर साथ लाकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाना है। इच्छुक लोग 1-800-315-7008 पर मिस कॉल देकर कार्यक्रम के लिए पंजीकरण करा सकते हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर हो जाने की आशा व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता तो अंतिम विकल्प भी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा है कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओ, अभी आप हिंदी में समाचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब हम आपको आज के पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की रूपरेखा के बारे में जानकारियां दे देते हैं। अब से थोड़ी देर बाद इनके सुबह के 6:10 का समय रहेगा भक्ति गीतों का। 6:30 बजे सुने महिला से संबंधित कार्यक्रम। सुबह 7 बजे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार। 7:05 पर आज का दिन और 7:30 बजे रहेगा बच्चों से संबंधित कार्यक्रम का।

सुबह 8 बजे दिल्ली केंद्र से प्रसारित की जाएंगे समाचार प्रभात। 8:15 पर सुनिए कुछ देशभक्ति गीत। 8:30 बजे का समय रहेगा आकाशवाणी के शिलोंग केंद्र से अब सुन पाएंगे अंग्रेजी में पूर्वोत्तर समाचार। 8:40 पर सुनिए आप सभी का पसंदीदा कार्यक्रम शुरू की रंगोली।

सुबह 9 बजे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से प्रसारित की जाएंगे पूर्ण आंचलिक बातें। स्थानीय गीतों का कार्यक्रम का रूपरेखा इस तरह से, सुबह 9 बजकर सुने खेल मा कार्यक्रम, आज आप सुन पाएंगे कुछ खेल मा भक्ति गीत, आवाजें होंगे सोंगने सुखक्षेप और उनके साथी को आवाज में। 9 बजकर 25 मिनट पर सुने रांगखोल कार्यक्रम, आज आप सुन पाएंगे लार फिर हो रांगखोल और उनके साथी को आवाज में कुछ रांगखोल भक्ति गीत। 9 बजकर 35 मिनट पर सुने जयंत्या कार्यक्रम, आज सुन पाएंगे कुछ जयंत्या भक्ति गीत, गायक कलाकार होंगे अंजन सदाप और उनके साथी। और बेती गीतों के कार्यक्रम का समय रहेगा सुबह 9 बजकर 45 मिनट पर, आज आप सुन पाएंगे नगाकी नगमलाई और उनके साथी के आवाज में कुछ बेती आधुनिक गीत। सुबह 10 बजे मुंबई केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे विविध भारती के कार्यक्रम, 12 बजे सुनिए हिंदी में समाचार, 12 बजकर 5 मिनट का समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का, 1 बजे पुनः सुनिए दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार, 1 बजकर 5 मिनट पर विविध भारती के कार्यक्रम, दोपहर के 2 बजे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे अंग्रेजी में मिड डे न्यूज और 2 बजकर 15 मिनट पर हिंदी में दोपहर समाचार, 2:30 बजे का समय रहेगा विविध भारती के कार्यक्रम का, शाम के 4 बजे दिल्ली केंद्र से प्रसारित किए जाएंगे हिंदी में समाचार और 4 बजकर 5 मिनट पर सुने पुनः विविध भारती के कार्यक्रम। तो श्रोताओं, ये थे आज के पहली सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रम के रूपरेखा से जुड़े जानकारियां।

ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओ, समय हो चला है भक्ति गीतों का, आइए आनंद लेते हैं कुछ हिंदी भजनों का।

श्रोताओ, इसी गीत के साथ ही भक्ति गीतों कार्यक्रम यहीं समाप्त होती है। ये आकाशवाणी की हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओ, आइए अब सुनते हैं महिलाओं से संबंधित कार्यक्रम।

0: नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर। और मैं हूँ आपकी होस्ट तृष्णा चक्रवर्ती, और मैं लेकर हाजिर हूँ आपका पसंदीदा कार्यक्रम वुमेन प्रोग्राम, जो हर नारी के लिए है। नारी के संघर्ष, सपनों और समझौते से जुड़ी हर कहानी की है। इस कार्यक्रम में आप सुन पाते हैं एक मिनट का वुमेन टाइम। चलिए देरी ना करते हुए शुरू करते हैं ये कार्यक्रम वुमेन टाइम के साथ।
1: नमस्ते, मैं रूबी रानी दास हूँ। मैं यहाँ पे मेरा जन्म हुआ है। मैं हाफलंग में पली बड़ी हूँ और मैंने हाफलंग गवर्नमेंट कॉलेज से ग्रेजुएशन किया।

0: है और शादी भी मेरे यहाँ पे ही हुआ है, मतलब मायबंग में हुआ है, फिर भी मैं हाफलोंग में ही रहती हूँ इसलिए। और मैं यहाँ मतलब यहाँ पे ही बिजनेस करती हूँ, मैं एक बिजनेस वोमेन हूँ और सबको बोलना चाहती हूँ कि सभी कुछ ना कुछ करे, यही मैसेज देना चाहती हूँ।
1: थैंक यू, धन्यवाद।
2: दोस्तों, वुमेन टाइम के बाद आज हमारे वुमेन प्रोग्राम में हमारी अतिथि है अंजू राणा जी, जो एक फास्ट फूड का शॉप चलाती हैं। बहुत बहुत स्वागत करते हैं आपका।
3: नमस्ते, मुझे यहाँ बुलाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा नाम अंजू राणा है,
2: जी
3: मैं कानाबस्ती में रहती हूँ। मेरा फास्ट फूड का दुकान भी कानाबस्ती में ही
2: जी जैसे आपने बताया कि
3: है।
2: कानाबस्ती में ही आपका फास्ट फूड का
3: हाँ हाँ
2: दुकान है, आप कितने टाइम से आप फास्ट फूड का दुकान चला रही है?
3: शायद 2025 से स्टार्ट किया है, मैंने स्टार्ट किया है उस टाइम से।
2: जी, कैसे शुरू करने का आइडिया आया?
3: मैं घर में थोड़ा बहुत बनाती थी बच्चों लोग के लिए, क्योंकि
2: जी
3: टिफिन वगैरह के लिए, तो उसी से प्रेरणा मिला कि मैं भी कुछ करूँ। मतलब मोमो दुकान के लिए, फास्ट फूड के लिए ये स्टार्ट किया मैंने।
2: जी
3: हाँ,
2: पहले पहले स्टार्टिंग में क्या क्या चैलेंजेस आए?
3: पहले तो मैंने स्टार्ट किया था सेल रोटी, पकोड़ा, ये सब चाय, बस्ती जो हिसाब से चलता है उसी तरह से।
2: जी
3: तो बस्ती में हम लोग का अभी जो भी बस्ती में मतलब ये सब फास्ट फूड का, चाय, पकोड़ा, सेल रोटी, ये सब का लिए सब भी मतलब दुकान खुलते हैं ना, इसी तरह मैंने भी स्टार्ट किया। तो उसके बाद में मैंने सोचा कि नहीं, यहाँ पर तो कानाबस्ती में तो बहुत सारा स्टॉल है, टी स्टॉल।
2: जी
3: तो उसके बाद में मैंने सोचा कि नहीं, मोमोज वगैरह भी हम लोग अलग टाइप से स्टार्ट करने का सोच लिया मैंने,
2: जी
3: क्योंकि मुझे आता ही था पहले से। तो मैंने स्टार्ट किया मोमोज, चिकन मोमो, भैंस मोमो, चाउमीन, ये सब के लिए। थोड़ा बहुत तो तकलीफ तो हुआ मेरे ऊपर, क्योंकि घर चलाना पड़ता था, बच्चों भी, दो बच्चे थे मेरे पास। इसी तरह मेरे साथ एक भांजी थी हेल्प करने के लिए।
2: जी
3: हाँ, उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। हाँ, मेरे हस्बैंड भी, उनका ड्यूटी है, लेकिन सुबह जब टाइम मिलते थे, शाम में मिलते थे, उस टाइम में बहुत हेल्प किया था ना। तो इसी तरह से हम लोग स्टार्ट किया पहले मोमोज। शुरू करते करते सबको, सामने वाला जितना भी हम लोग गांववासी थे, सामने का जितना भी था, काना बस्ती, नौतुन बस्ती, रॉबिनला, जितना भी सामने सामने था, उन लोग आए, टेस्ट किया, बहुत अच्छा बना, बहुत खुशी मतलब महसूस हुआ। ऐसे कर करके ऐसे दिन बीतता गया। तो फिर मैंने सोचा कि और अच्छा तरह से बनाए,
2: जी
3: क्योंकि रेट कम करके, जैसे कि मोमोज, हमारे दुकान का मोमोज का रेट है, वेज मोमो 40 रुपीज़ करके प्लेट में 12 पीस मिलता है, और चिकन मोमो का 10 पीस 60 रुपीज़ करके हम लोग रख लिया। चिकन चाउमीन भी 40 वेज और 60 चिकन का। हम लोग का सामने तो जितना भी है गांव का है ना, इसीलिए उन लोग खाने के लिए, जैसे कि इतना ज़्यादा पैसा तो नहीं होता है,
2: जी
3: इसीलिए
2: जी
3: बच्चे लोग के लिए कम रेट में उन लोग को मिलने से खा पाते। हमने ये सोचा कि कम ही रेट में सबको खिलाया जाए।
2: जी
3: तो उसका बाद सोचा ऐसे कर करके कर करके 2-3 महीना बीत गया। तो आए यूथ लोग भी, आए सब, आए, आंटी आपका मोमो तो बहुत टेस्ट है, ऐसा कीजिए आप फेसबुक में डाल दीजिए, नहीं तो इंस्टा में डाल दीजिए, वो
2: जी
3: बोलने लगे। तो मुझे फेसबुक तो चलाना आता था, लेकिन इंस्टा के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे टाइम में तो ये सब नहीं था
2: बिल्कुल
3: पहले।
2: जी
3: हाँ, तो सोचा कि

0: यूथ लोग भी आए सब आए, आंटी आपका मोमो तो बहुत टेस्ट है, ऐसा कीजिए आप फेसबुक में डाल दीजिए नहीं तो इंस्टा में डाल दीजिए, वो
1: जी
0: बोलने लगे। तो मुझे फेसबुक तो चलाना आता था लेकिन इंस्टा के बारे में कुछ पता ही नहीं था, क्योंकि हमारे टाइम में तो ये सब नहीं था
1: बिल्कुल
0: पहले।
1: जी
0: हाँ तो सोचा कि

0: इंस्टाग्राम में भी कर रही है, सोशल मीडिया कितना हेल्प कर रहा है आपको?
1: सोशल मीडिया तो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल है, क्योंकि लोग कहते हैं सोशल मीडिया अच्छा नहीं है, ये नहीं है, लेकिन ये सब अपने ऊपर होता है। जैसे कि आप अच्छे काम के लिए यूज़ करते हैं तो अच्छा ही होता है, खराब काम के लिए यूज़ करते तो खराब ही हो जाता है।
0: बिल्कुल
1: मेरे लिए तो ये मतलब भगवान का आशीर्वाद का जैसे ही हो गया मेरा।
0: जी
1: हाँ हाँ
0: जी और एक बात, जैसे आपने बताया कि कितना समय लगा आपको ये सब स्टार्ट करने के लिए और फिर कितने चैलेंजेस वगैरह आए, आप पूरे दिन में कितना घंटा देती हैं?
1: मेरा तो सुबह से स्टार्टिंग 6 AM से स्टार्ट, मॉर्निंग स्टार्टिंग करते हैं हम लोग दुकान खोलने को। तो साफ़ सफाई बहुत ज़रूरी है एक दुकान खोलने में, रेस्टोरेंट के लिए या फास्ट फूड जो भी हो।
0: जी जी
1: तो हम लोग साफ़ सफाई करते हैं पहले, सब साफ सफाई करके वो बर्तन उर्तन भी अच्छा से, क्योंकि आगे दिन का जितना भी था वो उस रात में भी साफ़ करते, लेकिन फिर सुबह भी अच्छे से साफ़ सफाई करके वो करके हम लोग स्टार्ट करते हैं। उसके बाद साफ़ सफाई, दुकान साफ़ सफाई करना, बर्तन वगैरह धुलाना, जैसे कि मोमोज के लिए तो बहुत टाइम लग जाता है। तो वो सब करने के बाद हम पूजा देते हैं। पूजा देने के बाद, क्योंकि भगवान ही पहले स्थान, हम लोग का स्टार्टिंग जो दुकान स्टार्टिंग, पहले हम लोग भगवान को ही पूजा करके स्टार्ट करते हैं जो काम शुरुआत में।
0: जी
1: तो हम स्टार्ट करते हैं करके सुबह 9 बज जाता है। उसके बाद मेरा स्टाफ भी पहुँच जाते हैं वहाँ पर। स्टाफ पहुँचने के बाद में 3-4 स्टाफ हैं मेरे पास, उन लोग आने के बाद अपना अपना काम अपना अपना तरीका से, जो मैंने बताया था पहले उन लोग को बोल के रखा है, बोल के रखा कि ऐसा ऐसा करो बोल के, उन लोग आते आने के बाद अपना, क्योंकि अभी कैबेज भी इतना सफ़ा करके देना है, फिर प्याज वगैरह भी कितना गंदा होता है उसको
0: जी
1: धुला उला के। और ज़्यादातर हम लोग उधर मतलब सब कुछ जैसे कि होता है मोमो चॉपिंग कर, कैबेज चॉपिंग करना, प्याज का, ये सब सब हम लोग मिलजुल के करते हैं। और मेरा तो ज़्यादा ही उधर मतलब मेरा तो ज़्यादा ही वहाँ पर काम करना पड़ता है, लेकिन उन लोग भी बहुत अच्छी तरह से काम करते, क्योंकि उन लोग जितने भी सामने सामने बहन लोग है बेरोजगारी, जैसे कि इसी तो उनका हस्बैंड भी काम तो करते हैं जैसे सर्विस वगैरह भी है, लेकिन उन लोग ऐसे घर में बैठने के लिए इच्छा नहीं है, इसीलिए उन लोग भी आते हैं मेरे साथ। तो कुछ उन लोग का भी हाथ खर्चा के लिए हो जाता है, इसमें मेरा भी हेल्प हो जाता है उन लोगों
0: जी
1: के पास से। तो ऐसे करके हम लोग स्टार्ट करते हैं सुबह से।
0: जी जैसे आपने बताया कि कैसे आपको हेल्प करते हैं, आपने स्टाफ रखना कब से स्टार्ट किया?
1: मैंने तो पहले बहुत स्ट्रगल किया था पहले, जो मैं पहले जब दुकान खुली थी, खुलने का टाइम में जो चाय पकौड़ा सेल रोटी ये सब बिक्री करे, मेरे भांजी थे दीपा थापा,
0: जी
1: उन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया। एक आदमी से तो होगा ही नहीं, ये दोनों मिलके बहुत 4 महीना बहुत स्ट्रगल करते करते रहे करते रहे। उसके बाद जब मेरा भी इनकम सोर्स बढ़ने लगा
0: जी
1: तब एफोर्ट 2-3 जन को एफोर्ट कर पाऊंगी जैसे पैसा वगैरह देने के लिए, उस टाइम से मैंने और एक कर करके ऐसे कर करके बढ़ाते बढ़ाते, विंटर सीजन में तो मेरा कम से कम 7-8 जन होता था, उन लोग को सैलरी देते, महीने में सैलरी देने के लिए भी हो जाता था, अभी भी है मेरे पास।
0: जी जैसे आपने बताया विंटर सीजन के बारे में कि उस टाइम पे ज़्यादा स्टाफ लगते हैं आपको, दैट मीन्स कि विंटर सीजन में आपका फास्ट फूड का जो स्टॉल कहें या शॉप कहें वो काफ़ी अच्छे से चलता है?
1: हाँ हाँ विंटर सीजन में क्या होता है, ठंड होता है यहाँ पे हाफलोंग में, तो सूप वगैरह खाने के लिए थुप्पा थुप्पा का सूप ये सब मतलब हेल्थ के लिए भी, थोड़ा गर्मी के लिए वो खाने के आते हैं ना कि कस्टमर लोग,
0: जी जी
1: इसीलिए हम लोग का ज़्यादातर, क्योंकि गर्मी समर सीजन में क्या होता है गर्म ज़्यादा होता है, गर्मी की वजह से आदमी लोग मतलब पेट खराब हो जाता है, इसी वजह से कम करते, इसीलिए हम लोग का कम थोड़ा बिजनेस थोड़ा समर में थोड़ा कम ही होता है।
0: जी जी
1: हाँ हाँ
0: जी और जैसे आपने बताया कि आप सुबह के 6 बजे से आप शॉप में रहती हैं, तो आप घर शॉप कैसे मैनेज करती हैं?
1: सुबह सुबह से पहले तो मैंने बहुत तकलीफ किया, 4 बजे उठ के घर का काम साफ सफाई पूजा पाठ देना, हस्बैंड का खाना बना के देना, वो बहुत मुश्किल था उस टाइम में। जब मेरा मतलब बढ़ते गया कस्टमर्स भी, जैसे हाफलुंग वासियों ने मुझे बहुत प्यार दिया और यूथ लोग भी बहुत मेरे सपोर्ट में है, इसीलिए तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने भी बहुत तकलीफ किया बनाने में, लेकिन ज़्यादातर उन लोग आए खाए फेमस कर दिया, उन वजह से मेरा भी थोड़ा लाभ हुआ, मतलब बहुत ही लाभ हुआ है, इसीलिए मैंने भी अभी पहले तो बहुत स्ट्रगल का बात ही, मैंने करीबन 7-8 मंथ्स इसे मैंने ऐसे ही सुबह उठ के सुबह से ही घर में 4 बजे से उठ के पूजा पाठ करना, घर संभालना, फिर आके फिर दुकान संभालना, 10-11 बज जाता था
0: जी
1: उस टाइम में रात में, फिर सुबह उसी टाइम से फिर स्टार्टिंग सेम सेम चीज़ सेम करना, बहुत तकलीफ होता था। तो बाद में जाके भगवान से

0: शायद मेरा प्रार्थना भी सुन लिया होगा, और मेरे जितने भी हाफलुंगवासी हैं उनके तरफ से मुझे भी बहुत सपोर्ट मिला, और उन लोगों की तरफ से ही मैं आज यहाँ पे हूँ। और अभी मैंने भी घर में एक महिला को रखा है घर के लिए
1: जी।
0: हाँ हाँ, उनको भी मैं सैलरी देती हूँ, क्योंकि उनका भी बेरोजगारी था, उनको भी कुछ काम मिल गया करने के
1: जी,
0: लिए।
1: बिल्कुल।
0: हाँ हाँ
1: जी, जैसे आपने बताया कि कैसे आपको बहुत ज्यादा प्यार मिल रहा है, आपको कैसा लगता है, क्योंकि आप अभी काफी वायरल भी हो चुके हैं सोशल मीडिया में भी, और बहुत सारे लोग जब आकर के यहाँ पे खाते हैं, आप कैसा फील होता है?
0: मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि जब आंटी वो टेस्ट हुआ जब बोलते हैं ना, उस टाइम में मुझे बहुत मतलब दिन भर का जो सुबह से शाम तक करने वाला थकान इसे मतलब मिट जाता है कि बोल नहीं पाती हूँ मैं। तो ऐसा होता है मतलब अंदर से मुझे इतना मतलब खुशी होती है कि
1: जी
0: वो बता नहीं पाऊँगी, उस वजह से मेरा थकान पूरा मिट जाता है। क्योंकि मैं कोशिश करती हूँ कि मैं सबको अच्छा ही दूँ, एफोर्डेबल प्राइस में दूँ, और अजीना मटन थोड़ा कम करते उसका जगह में हम लोग प्याज देते हैं ज़्यादा,
1: जी
0: क्योंकि अभी 2 kg प्याज लगे तो 4 kg ये सब देते हैं हम लोग। हाँ, तो ये सब अपना मसाला अपना इंग्रेडिएंट जितना सकते हम लोग अपना से बनाए, हम खुद अपना बनाते हैं
1: जी
0: मसाला वगैरह। तो आंटी थुप्पा भी बहुत टेस्ट हुआ, मोमो भी बहुत टेस्ट है, आंटी आपका प्राइस भी बहुत अच्छा है ऐसे बोलते हैं, तो खाने में भी बहुत टेस्ट है ऐसे बोल के आते हैं ना। और दूर दूर से आते हैं, जैसे कि उस दिन भी माईबंग से भाड़ा करके आए, इतना तक दुख लगा, इतना दूर से आ गए,
1: जी जी
0: तो माहौर से भी काल आए थे दूर दूर, जैसे कि झटिंगा और मोलहोई सुम्पीजांग बहुत सारा जगह से,
1: जी
0: क्योंकि
1: जी
0: आपका रील्स देख के आए आंटी ऐसे बोल के आते हैं, तब मुझे बहुत मतलब बहुत अच्छा फील होता है।
1: जी बिल्कुल जी। और एक बात ये है कि आप पूरा दिन तो आप शॉप में रहती हैं, पर अगर उसके अलावा अगर हम बात करें तो आपकी हॉबी क्या है, आप फ्री टाइम में क्या करते हैं?
0: फ्री तो रहना मुश्किल है
1: जी
0: सुबह
1: जी
0: से शाम तक मेरा तो, क्योंकि स्टाफ रहने से भी हम एक मालिक है, उसके बावजूद भी हम अपना टाइम तो वहाँ पे देना चाहिए, क्योंकि जब कस्टमर आते हैं कैसे रेस्पेक्ट करना है, कैसे देना है, वो सब मेरे ऊपर कैसे बात करना है, किस तरह से उन लोगों को मेंटेन करना है, वो मैं ही देखना पड़ता है।
1: जी जी
0: इसीलिए
1: बिल्कुल
0: सुबह से शाम तक तो हम कैसे बनाया, उन लोग से स्टाफ होने से भी उन लोग जैसे चाउमीन बनाते कैसे बनाते हैं, थुप्पा का कैसे, फिर हम भी उधर जाते हैं, फिर इधर देखते हैं, इधर देख के कर करते हफ्ते में एक दिन हम लोग बंद रखते हैं, क्योंकि
1: जी
0: संडे तो नहीं है, संडे हम लोग का सबका छुट्टियाँ होता है, इसीलिए हम लोग संडे खुला रखा, क्योंकि फ्राइडे में हम लोग का क्लोज होता है। उस टाइम में मैं घर में फूल वगैरह लगाती हूँ।
1: जी
0: हाँ, उस और घर में साफ़ सफाई ये सब फूल लगाने का ये सब, मुझे केक बनाना बहुत पसंद आता है।
1: जी
0: हाँ, कभी कभार मैं ऑर्डर भी लेता
1: जी केक का भी आप ऑर्डर लेती हैं?
0: हाँ, अच्छा हाँ
1: जी, आपने जैसे बताया कि आपको केक बनाना भी पसंद है, क्या आप अलग अलग फ्लेवर के बनाते हैं या कोई एक पर्टिकुलर फ्लेवर के ही आप
0: अलग अलग
1: ज़्यादातर
0: फ्लेवर ही
1: बनाते हैं?
0: बनाते हैं,
1: जी,
0: वेनिला।
1: जैसे आपने बताया सपोर्ट के बारे में, वुमेन के लिए कोई भी काम हो, सपोर्ट कितना ज़रूरी रहता है?
0: एक महिला के लिए घर का सपोर्ट बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि कुछ करने जाने के लिए पहले घर का सपोर्ट मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जब घर का परिवार एक साथ जैसे हस्बैंड वाइफ दोनों मिलके मतलब
1: जी
0: बातचीत करके कुछ काम करने से बहुत अच्छा आगे बढ़ जाता है। इसीलिए मेरा हस्बैंड भी मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं आगे बढ़ने के लिए, हेल्पफुल रहता है, क्योंकि अभी हस्बैंड वाइफ का सपोर्ट नहीं होने से दोनों तरफ से फिर झगड़ा ये सब वगैरह निकल जाता है, कुछ
1: जी जी
0: बाताबाती हो जाता है। इसीलिए हम लोग जो भी काम करने से पहले घर का सपोर्ट या पूछना ये सब करना बहुत ज़रूरी है।
1: जी वुमेन के लिए फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना कितना ज़रूरी है?
0: आजकल के दिन में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग जैसे कि हाउस वाइफ लोग कमाने से परिवार का अपना हस्बैंड को बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट मिलता है,
1: जी
0: जैसे कि स्कूल कॉलेज का खर्चा, बीमार साथ में अपना मनपसंद का सामान खरीदना, जैसे होता है हम लोग का महिला का कितना सारा सामान चाहिए होता है ये सब खरीदना, क्योंकि आजकल के दिन में एक जन से कमाने से नहीं होता है, इसीलिए अगर टाइम हो तो कुछ करना चाहिए महिलाओं को, जैसे जो भी हो मतलब जिसका जो अपना रुचि उसी में आप लोग से कमा सकते हैं हम।
1: जी बिल्कुल
0: हाँ हाँ और इससे हम लोगों का घर परिवार में हस्बैंड को बहुत हेल्पफुल मिलता है।
1: जी, ये तो है,
0: हाँ
1: बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप खुद खरीदती हैं,
0: हाँ
1: आपको कैसा

0: फील होता है।
1: अपना पैसा से अपना खरीदने वाला तो बहुत खुशी महसूस होता है, क्योंकि आपका आस में कुछ नहीं है, तब आप एक सामान बिक्री करके 10 रुपया होने से भी मिल जाएगा, वो तो बहुत खुशी की बात है। वो उसे 10-10 करके मिलके 100 रुपीस होता है ना, 100 रुपीस करके 1000 होता है। इसी तरह से हम लोग कुछ सामान लेने में जाते हैं तो अपना चीज़ अपना मतलब दूसरों के पास डिपेंड नहीं करना, तो अपना खुद अपना खरीदना, क्योंकि हम लोग एक मतलब महिलाएं हैं, महिलाएं भी हम लोग आगे बढ़ना चाहिए।
0: जी बिल्कुल, बहुत सही कहा है आपने। और जैसे आप शॉप करती हैं, क्या आपका फ्यूचर प्लान्स हैं कि इसको और आगे बढ़ाया जाए?
1: हाँ, पहले जो किया था, जैसे छोटा था मेरा शॉप, तो उसे आगे बढ़ रहा है बढ़ रहा है बढ़ रहा है। मुझे बहुत खुशी है क्योंकि जितने भी मेरे हाफलोंग बासी हो, जितने भी है, उन लोग और सपोर्ट करने से मैं और आगे जाने के लिए सोच रही हूँ। क्योंकि जो इतना दूर से आप लोग आते हैं मेरे दुकान पे, काना बस्ती कहाँ है सब ढूंढ ढूंढ के आते थे। पहले काना बस्ती के बारे में कुछ पता ही नहीं था, अभी काना बस्ती बोलने से सबको पता चल गया। वही मतलब आप लोग ना आने के लिए हम होम डिलीवरी जो होता है ना, उसमें मतलब शायद आगे चल के वो करने का प्लान कर रही हूँ। क्योंकि आपको घर बैठ बैठ के, क्योंकि बारिश का दिन में आप लोगों को दिकदारी होता है, आने के लिए बहुत तकलीफ मिलता है, सोच रही हूँ। लेकिन अभी भगवान और आप लोग वासियों से कैसा प्यार मिलता है, उसके ही थ्रू से मेरा क्या होगा वो पता नहीं।
0: जी
1: कि मेरा फास्ट फूड का दुकान तो मैं बना के रख के तो कोई नहीं आने से तो कुछ इनकम ही नहीं होगा ना, इसीलिए जो मैं बनाती हूँ ज़्यादा, हम लोग ज़्यादा भी नहीं बनाते हैं उस टाइम, क्योंकि हम लोग थुप्पा मोमो सेल रोटी मेन हम लोग का चिकन मोमो वेज मोमो और थुपका का ही लिए फेमस है।
0: जी, आपने जैसे जो भी बातें कही हैं, और हम आशा भी करेंगे कि आपकी दुकान और भी आगे बढ़े। जी, अभी हमारे कार्यक्रम के हम अंत में ही आ चुके हैं। मैं चाहूँगी कि हमारे जितने भी श्रोता हैं जो आज आपको सुन रहे हैं, सबके लिए आपकी ओर से एक मैसेज दीजिए।
1: मेरे तरफ से यही मैसेज है कि अनएम्प्लॉयमेंट नारी साथ में यूथ के लिए यही मैसेज देना चाहती हूँ कि सबको आगे बढ़ना चाहिए, और कमाने के लिए सिर्फ सरकारी नौकरी जरूरी नहीं है। आजकल के ज़माने में गवर्नमेंट में तरह तरह बहुत सारा लोन मिलता है,
0: जी
1: तो उसी लोन को अप्लाई करके भी आप लोग कुछ कर सकते हैं। जैसे सोशल मीडिया है, यूट्यूब फेसबुक, ये सब में आप जब बिजनेस स्टार्ट करते हैं उसमें देखिए देखिए आप लोग थोड़ा बिजनेस का आइडिया ले लीजिए। घर में बैठ बैठ के, जैसे कि आप लोग ऐसे भी मोबाइल चलाते हैं घर में बैठ बैठ के, तो उसका थ्रू से भी आप आगे बढ़ सकते हैं।
0: जी
1: और यही नहीं कि फास्ट फूड ही खुलना है या बाहर जाके कुछ करना, ये भी नहीं है, क्योंकि घर बैठ के आप पिकल भी बना सकते हैं। जैसे कि बाज़ार में हल्दी मिलता है कच्चा हल्दी, वो लेके सुखा के भी आप पैकेट पैकेट करके भी आप दे सकते हैं सामने सामने, क्योंकि वो हम लोग का तो रोज़ का हल्दी तो हम लोग का रोज़ का खाने में
0: जी बिल्कुल,
1: हाँ लगता है। और दूसरा भी होता है पिकल मसाला, जैसे कि हम लोग का मसाला भी, जैसे चिकन मसाला मीट मसाला, ऐसे हम लोग का जीरा पाउडर, ये सब भी तो हम लोग किनते हैं बाजार से ना। जैसे कि आजकल का दिन में सब वो पैकेटिंग में क्या क्या मिक्स होता है वो तो पता नहीं है, इसीलिए अपना घर का हुआ सब भी लेते हैं उस टाइम में। तो ऐसे करके आप लोग थोड़ा पैसा से भी कुछ कर सकते हैं, कुछ करने के दिल हो लेकिन पैसा कम है वो नहीं सोचना है।
0: जी बिल्कुल,
1: हाँ नहीं सोचना है, क्योंकि एग्जाम्पल आप लोग जो भी कमाते हैं वो आप लोग का परिवार के लिए, अपना बच्चे के लिए, अपना हस्बैंड के लिए वो मतलब हेल्पफुल रहे। और जैसे कि और दूसरा भी है, जैसे कि गार्डनिंग का, जैसे कि बाजार से एक पौधा लेके आए आप सुंदर वाला, वहाँ से भी आप एक कटिंग करके एक पौधे से 10 पौधा बना के कटिंग करके चारा बना के भी वो आप बाजार में बिक्री कर सकते हैं। क्योंकि अभी तो फूल का भी सबका रुचि है घर में लगाने के लिए, तो एक पौधा 100 रुपीज में लेके आप फिर 10 पौधा बनाने से फिर आपको भी 50-50 करके बिक्री उससे भी आमदनी हो जाता है। तो लेकिन एक बात है, तो मेहनत तो करना पड़ता है, बिना मेहनत से कुछ नहीं होगा। छोटा से करने से बाद में बड़ा बिजनेस का मालिक भी बन सकते हैं।
0: बिल्कुल,
1: हाँ इसीलिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सबको कोशिश करना चाहिए और अपना हस्बैंड घर का लिए बच्चों के लिए भी हेल्प करना चाहिए।
0: जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत सारे सुझाव दिए, आइडियाज़ भी दिए, और आशा करती हूँ जितने भी लोग आज सुन रहे हैं वो आपकी इन बातों को यूज़ करें। जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे साथ जुड़ी रही, और आशा करते हैं आपका जो शॉप है, आपका जो बिज़नेस प्लान है वो आगे बढ़े, और आप जो भी बिज़नेस है वो बहुत सक्सेसफुल रहे। थैंक यू।
1: थैंक यू, थैंक यू।
0: जी आशा करते हैं आज का ये कार्यक्रम आप

बिल्कुल ज़रूर पसंद आया होगा। सुनते रहिए आकाशवाणी हाफ लॉन्ग FM 100.2 MHz पर, और देते रहिए हमें ढेर सारा प्यार। तब तक के लिए मुझे यानी तृष्णा चक्रवर्ती को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

श्रोताओ, अभी आप सुने महिला से संबंधित कार्यक्रम। कार्यक्रम को प्रस्तुत की थी तृष्णा चक्रवर्ती ने। आइए आनंद लेते हैं फिल्मी गीतों का।

0: दोस्तों, अभी आप फिल्मी गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार।
1: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
2: नीस में प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 120 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
1: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया। श्री मोदी ने उनके स्वागत को

0: अविस्मरणीय बताया। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के अध्यक्ष वी नारायणन ने बताया है कि परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर एक एडवांस आर्टिफिशियल हीटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। यह लूनर लैंडर को चंद्रमा के बहुत ठंडे मौसम से बचा सकता है। बेंगलुरु में श्री नारायणन ने बताया कि इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर ऐसा लूनर लैंडर विकसित करने का काम करेगा जो चंद्रमा पर 200 दिन तक काम कर सके। उन्होंने कहा कि इससे भविष्य के मिशनों में लंबे समय तक सहायता मिलेगी। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरर धर की शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। लेफ्टिनेंट जनरल धीरज सेठ नए थलसेना प्रमुख होंगे। वर्तमान में वे थलसेना उप प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं। लेफ्टिनेंट जनरल सेठ 30 जून को सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी के अवकाश ग्रहण करने के बाद कार्यभार संभालेंगे। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने की संभावना व्यक्त की है। इसके तुरंत बाद होर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी। यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाघेई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की संभावना नहीं है। उन्होंने कहा कि समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिन में ऐसा संभव हो। दक्षिण पश्चिम मानसून कर्नाटक, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में पहुंच गया है। इसके अगले 3-4 दिन में ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में पहुंचने की संभावना है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में अत्यधिक वर्षा का अनुमान है। अगले 3-4 दिन तक आंध्र प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, झारखंड, मध्य प्रदेश, कराईकाल, तेलंगाना, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में गरज चमक के साथ तेज हवा और बारिश की संभावना है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत ग्रुप ए में अपने अभियान की शुरुआत पाकिस्तान के साथ मैच से करेगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान के साथ हुए 16 में से 13 मुकाबले जीत चुका है। भारत ने कल रात हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में 3 एकदिवसीय मैचों की क्रिकेट श्रृंखला के पहले मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। लगातार वर्षा के कारण मैच की शुरुआत में देरी हुई और इसे 25-25 ओवर का कर दिया गया। भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था। श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। इसके साथ ही समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: श्रोताओ, अभी आप हिंदी में समाचार सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आज के दिन के तहत आइए सबसे पहले सुनते हैं पोएम ऑफ द डे।
2: दिस इज अ पोएम अबाउट फ्रेंड्स टू फैमिली। वी केम एज स्ट्रेंजर्स पाथ अननोन ऑन अ कैंपस फास्ट ऑल अलोन। वन डे वी मेट a quiet start, and soon we found a place in heart. We learned each other piece by piece, shared our joys and found our peace, shared our stories, hopes and pain, made each other laugh through the rain, in darkest hours a shoulder near, wiped away each hidden tear. Together strong, we faced the fight, sisters bound by shared light. From strangers once, now family near. In every moment, we feel so clear. Through every laugh, through every scar, we grew together just as we are. Thank you.

श्रोताओं, अभी आपने सुना पोएम ऑफ द डे प्रस्तुत की थी दीपमाला दास ने। आरंभ करते हैं आज के दिन। श्रोताओं, हमारे इतिहास में आज के दिन यानी कि 14 जून को बहुत सी महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक घटनाएं हुई जो भारत और विश्व के इतिहास में अहम स्थान रखती है। भारत और विश्व में 14 जून का अपना ही एक खास महत्व है क्योंकि इस दिन कई महत्वपूर्ण घटनाएं घटी जो इतिहास के पन्नों में हमेशा के लिए दर्ज हो गई है। इस घटनाओं में से कुछ ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं भी होगी जिन्होंने अपने वर्तमान समय और भविष्य को काफ़ी प्रभावित किया होगा। आइए जाने देश दुनिया के इतिहास में आज के दिन यानी कि 14 जून को क्या क्या खास घटनाएं हुई है। श्रोताओं, सबसे पहले जानकारी बांटते हैं कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से। 1901 में पहली बार गोल्फ प्रतियोगिता का आयोजन हुआ था। नॉर्वे में महिलाओं का मतदान करने का अधिकार 1907 में मिला था। 1948 में कांग्रेस कार्य समिति ने भारत विभाजन के लिए माउंटबेटन योजना के प्रस्ताव स्वीकृति को अखिल भारतीय कांग्रेस समिति के समक्ष रखा था। वर्ष 1958 को डॉक्टर सी वी रमन के क्रेमलिन के लेनिन शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। पंचशील सिद्धांत को 50वीं वर्षगांठ पर 2004 में बीजिंग में अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार हुआ था। 2008 को केंद्र सरकार अलग गोरखालैंड राज्य के निर्माण की संभावना को खारिज किया था। 2008 को ही राजस्थान के बांसवाड़ा जिले में 96 मेट्रिक टन सोने की खान का पता लगाया था। विशाखापत्तनम में वर्ष 2012 को भारतीय इस्पात संयंत्र विस्फोट से 11 लोग की मौत हो गई और 100 लोग घायल हो गए थे। तो इतने कुछ ऐतिहासिक घटनाओं से जुड़ी जानकारियां। आइए अब जानकारी बांटते हैं आज के दिन जन्मे तथा निधन हुए कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों के बारे में भी। सिखों के छठवें गुरु गुरु हरगोविंद सिंह का जन्म 1595 में हुआ था। 1880 को वैज्ञानिक सतीश चंद्र दासगुप्त का जन्म हुआ था। 1905 में प्रसिद्ध शास्त्रीय संगीतकार हिरभाई बदोडेकर का जन्म हुआ था। केरल के महान नेता ई एच एस नवुदीमुपाद का जन्म 1909 में हुआ था। 1920 को भारतीय अभिनेता भारत भूषण का जन्म हुआ था। 1922 को भारतीय फिल्म निर्देशक निर्माता तथा पटकथा लेखक के आसिफ का जन्म हुआ था। 1928 को क्यूबा की मुक्ति में अपनी अहम भूमिका निभाने वाले महान क्रांतिकारी चे गुएरा का जन्म हुआ था। टॉक्सो को लेकर फिल्मों में काम करने वाली किरण खेर का जन्म 1955 में हुआ था। 1960 में हिंदी फिल्म के अभिनेता एवं दूरदर्शन के कलाकार शेखर सुमन का जन्म हुआ था। आदित्य बिरला समूह के भारतीय उद्योगपति और अध्यक्ष कुमार मंगलम बिरला का जन्म 1967 में हुआ था। महाराष्ट्र नवनिर्माण की सेना के संस्था पर और अपने अध्यक्ष राज ठाकरे का जन्म 1908 में हुआ था। 1968 में ही पंजाबी गायक सर्वजीत चीमा का जन्म हुआ था। 22 ग्रैंड स्लैम जीतने वाले टेनिस स्टार स्टेफी ग्राफ का जन्म 1969 में हुआ था और 1977 में दक्षिण अफ्रीका के बल्लेबाज बोइटा डिपनर का जन्म हुआ था। 1920 को प्रसिद्ध जर्मन दार्शनिक एवं इतिहासकार मैक्स नेवर का निधन हुआ था। प्रसिद्ध भारतीय सैनिक भौतिक वैज्ञानिक कर्म मणिकम्मम शिवास कृष्णन का निधन 1961 को हुआ था। वर्ष 2007 को कुर्त वर्ल्ड हाइम का निधन हुआ था। संयुक्त राष्ट्र संघ के चौथे महासचिव थे। वर्ष 2010 को काल्पनिक और गैर कथा के भारतीय लेखक मनोहर मालगोकर

का निधन हुआ था। 2011 का रुद्र बिना वादक असद अली खां का निधन हुआ था और 2020 को सुशांत सिंह राजपूत भारतीय फिल्म अभिनेता थिएटर और टीवी कलाकार का निधन हुआ था। श्रोताओं, आज अंतर्राष्ट्रीय विश्व चाय दिवस है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार अंतर्राष्ट्रीय चाय दिवस प्रतिवर्ष 21 मई को मनाया जाता है। चीनी

श्रोताओं, आज विश्व रक्तदान दिवस है। विश्व रक्तदान दिवस हर वर्ष 14 जून को मनाया जाता है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा इस दिनों को रक्तदान दिवस के रूप में घोषित किया गया था। वर्ष 2004 में स्थापित इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वेच्छित रक्त उत्पादों की आवश्यकता के बारे में जागरूकता बढ़ाना और रक्तदाताओं को स्वेच्छित जीवन रक्षक रक्तदान करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए आरंभ व्यक्त किया था। दाता से रक्त प्राप्त करने के दो मुख्य तरीके हैं। अपरिवृत रक्त के रूप में सीधे शिरा से ज़्यादातर रक्त ले लिया जाता है। आमतौर पर इस रक्त को अलग भागों में ज़्यादातर लाल रक्त कोशिकाओं और प्लाज्मा में विभाजित किया जाता है, क्योंकि अधिक से अधिक प्राप्तकर्ताओं को केवल एक घटक विशेष की जरूरत होती है। अन्य तरीका दाता के रक्त लेने का है। इसमें एक अपकेंद्रित या एक फिल्टर का उपयोग करें। इसे अलग कर वंचित हिस्सों को संचित कर लिया जाता है और बाकी दाता को वापस दे दिया जाता है। यह प्रक्रिया ऑफरेसिस कहलाती है और अक्सर ये काम इसके लिए विशेष रूप से तैयार मशीन के जरिए किया जाता है। सीधे रक्त आधान के लिए शिरा का उपयोग किया जाता है, लेकिन बदले में रक्त धमनी से लिया जा सकता है। इस मामले में रक्त संचित नहीं किया जाता है, बल्कि दाता के सीधे प्राप्तकर्ता के पंप कर दिया जाता है। रक्त आधान का ये पुराना तरीका है और आज के समय में शायद ही कभी इसका इस्तेमाल किया जाता है। रसद और घायल सैनिकों को इलाज करके लौटे डॉक्टर जब नागरिक जीवन के लौट जाते हैं, तब संचित रक्त के लिए बैंक की स्थापना की समस्या के कारण द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान चरणबद्ध रूप से इसे बंद कर दिया था। तो श्रोताओं, ये थे आज के दिन से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां। आइए अब आनंद लेते हैं हिंदी फिल्मी गीतों का।

0: श्रोताओ, अभी आप फिल्मी गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलॉन्ग केंद्र है।
1: आपके गीत दोस्तों FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।

श्रोताओ, पशुते बच्चों से संबंधित कार्यक्रम। आज सबसे पहले बच्चों से संबंधित कार्यक्रम में बातें करेंगे। बच्चों की दुनिया में रसमई, मज़ेदार और अद्भुत बातें। श्रोताओ, बच्चों से जुड़ी दुनिया बहुत ही अद्भुत, रसमई और मज़ेदार होती है। उनके विकास, शारीरिक बनावट और आदतों में ऐसे कई चौंकाने वाले पहलू हैं जो किसी को भी हैरान कर सकते हैं। शारीरिक बनावट और क्षमताएं। बड़ों से अधिक हड्डियाँ। नवजात शीतों के शरीर में लगभग 300 हड्डियाँ होती है। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं, कई हड्डियाँ आपस में जुड़ जाती है और वयस्क होने तक केवल 206 हड्डियाँ ही रह जाती है। तेज आवाज़। 1-2 साल के बच्चों के रोने या चिल्लाने की आवाज़ भीड़ में मौजूद 200 वयस्कों की आवाज़ से भी ज़्यादा तेज होती है। नींद का पैटर्न। एक नवजात शिशु अपने जीवन में पहले साल में लगभग 67.4% समय सिर्फ सोने में ही बिता देते हैं। दिमाग का विकास और सीखने की कला। तीव्र गति। वयस्कों की तुलना में बच्चों के दिमाग बहुत तेजी से सीखता है। 5 साल की उम्र तक बच्चे का दिमाग सबसे तेजी से विकसित होता है। प्रश्न पूछने की आदत। एक औसत 4 साल का बच्चा एक दिन में लगभग 437 सवाल पूछता है। प्राकृतिक भाषाविद। बच्चे मौखिक भाषा सीखने से कहीं ज़्यादा तेजी से सांकेतिक भाषा सीख पाते हैं। आदतें और व्यवहार। अनोखा स्वाद। बच्चे जन्म के समय तीखे शब्द से डरते हैं। अगर उन्हें कोई भी चीज़ खानी सिखानी है तो औसतन 7 बार कोशिश करनी पड़ती है। आंसू नहीं आना। नवजात शिशु जब रोते हैं तो उसकी आंखों से आंसू नहीं निकलते, क्योंकि उसके आंसू वाली ग्रंथियां, टीयर डॉट्स, पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। झूठ बोलने का उम्र। 5 साल की उम्र से पहले बच्चों में नुकसान पहुंचाने की नीयत से झूठ बोलने की समझ नहीं होती है। अब बातें करते हैं कुछ मज़ेदार बातें बच्चों से संबंधित। अगर आप सफ़र कर रहा है तो आपका सफ़र को छोटा करना चाहते हैं तो इस तरह से सवाल बच्चों से कर सकते हैं। आपके साथ अब तक के सबसे मज़ेदार घटना कौन सी हुई है? इस तरह के सवाल आप पूछ सकते हैं। आपका सबसे अच्छा दोस्त कौन है और क्यों? हाल ही में आप किस बात पर हंसी आई थी? आप कौन सा कौशल या चीज़ सीखना चाहेंगे? आपका पसंदीदा खिलौना कौन सा है और क्यों? आप सबसे ज़्यादा पेंट पसंद है या और कुछ? आपको क्या लगता है कि जानवर एक दूसरे से समझते हैं? आपको परी कथाओं में या किताबों में पसंद है या कार्टून में? आपका पसंदीदा परी कथा पात्र कौन है? अगर आप अभी कुछ भी कर सकते हैं तो क्या करेंगे? आपका पसंदीदा और सबसे कम पसंदीदा खाना कौन सा है? अगर आपको अपनी पूरी ज़िंदगी सिर्फ एक ही प्रकार का भोजन खाना पड़े तो क्या होता है? अगर आप अपने खुद की पेस्ट्री दुकान या आइसक्रीम पार्लर खोलना चाहेंगे तो क्या करेंगे? अगर हाँ, तो आप यहाँ क्या बेचेंगे? क्या आप सुपरहीरो बनना चाहते हैं? इस तरह का मज़ेदार बातें करके आप अपना सफ़र की दूरी को भी कम कर सकते हैं। तो श्रोताओ, ये थे बच्चों से संबंधित कार्यक्रम से जुड़ी जानकारियाँ। आइए अब आनंद लेते हैं कुछ हिंदी फिल्मी गीतों का।

0: श्रोताओ, अभी आप फिल्मी गीत सुन रहे थे। ये आकाशवाणी की हाफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार प्रभात।
1: और अब लीजिए सुनते हैं हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू में समाचार।
2: घर खर्च के पैसे दो हस्बैंड जी,
3: ये राशन के 15,000, सब्जियों के 2,000
2: और लाइट बिल के।
3: अब 0 रुपए कैसे दूं?
2: ओहो, भूल ही गई थी, अब तो सोलर पैनल लग गए हैं ना, तो जो 4,000 बचे हैं उससे शॉपिंग हो जाए।
3: पक्का।
4: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, जुड़ने के लिए रजिस्टर करें pmsuryaghar.gov.in।
5: हर घर सूर्य घर।
6: नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं मुकेश कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे, इसके बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खोल दिया जाएगा। भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया और आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज शाम बर्मिंघम में भारत का मुकाबला पाकिस्तान से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा के पहले चरण में फ्रांस के नीस शहर पहुंच गए हैं। श्री मोदी G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेने के अलावा फ्रांस

0: के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि नीस पहुंचने पर प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया गया।
1: नीस में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री के स्वागत में फ्रांसीसी और इतालवी कलाकारों ने कथक, ओडिसी और भरतनाट्यम जैसे शास्त्रीय नृत्य प्रस्तुत किए। आज दोपहर प्रधानमंत्री मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों संयुक्त रूप से इनोवेशन और स्टार्टअप इकोसिस्टम को प्रदर्शित करने वाले प्लेटफॉर्म भारत इनोवेट्स लॉन्च करेंगे। भारत फ्रांस इनोवेशन वर्ष के दौरान आयोजित इस कार्यक्रम में 20 से ज्यादा भारतीय स्टार्टअप के साथ साथ वैश्विक निवेशक, सीईओ और टेक्नोलॉजी लीडर्स हिस्सा लेंगे। इसके अतिरिक्त दोनों नेता टेक्नोलॉजी, रक्षा, इनोवेशन और रणनीतिक मामलों जैसे क्षेत्रों में सहयोग के लिए द्विपक्षीय वार्ता भी करेंगे। नीस फ्रांस से शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से श्रीराम शर्मा।
0: प्रधानमंत्री मोदी ने नीस के प्रवासी भारतीयों का आभार व्यक्त किया है। श्री मोदी ने उनके स्वागत को अविस्मरणीय बताया। फ्रांस के बाद प्रधानमंत्री स्लोवाकिया जाएंगे और वहां के शीर्ष नेतृत्व के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी।
2: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो ये स्लोवाकिया के लिए यात्रा है, ये बहुत ही ऐतिहासिक यात्रा है, क्योंकि ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा होगी। तो इसलिए हम सभी लोग काफी उत्साहित हैं इस यात्रा को लेकर। हमें पूरी उम्मीद है कि इससे न केवल राजनीतिक संबंध प्रगाढ़ होंगे, बल्कि आर्थिक, रक्षा और पीपल टू पीपल रिलेशंस को भी बहुत अधिक बढ़ावा मिलेगा।
0: भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ मिलकर उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद तथा स्टार्टअप उद्यमिता सम्मेलन में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर ने चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। अब इसरो परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ ऐसा लैंडर तैयार कर रहा है जो चंद्रमा पर 200 दिन तक सक्रिय रहेगा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। श्री नारायण ने बताया कि इसरो और सीएसआईआर ने तकनीकी सहयोग के 40 क्षेत्रों की पहचान की है। इनमें से 17 को पहले चरण में कार्यान्वयन की स्वीकृति मिल चुकी है। ऐसी ही अनुसंधान साझेदारी विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ भी की जा रही है। केंद्रीय संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग अगले 2-3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी सोशल मीडिया हैंडल x@AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं।

0: मुक्त भारत अभियान।
1: निक्षय मित्र तो हम सबका साथ निभाते, टीबी रोगी व परिजन को पोषण, जांच, इलाज और आजीविका संबंधी सहायता पहुंचाते। जब मिल जाएगा सबको अपना निक्षय मित्र तैयार, तब पक्की हो जाएगी हमारी जी और टीबी की हार।
2: निक्षय मित्र, इस अभियान ने एक बड़े चैलेंज से निपटने में टीबी के मरीजों की बहुत मदद की है। आपको जानकर हैरानी होगी, हमारे देश में 10-12 साल के बच्चे भी निक्षय मित्र बनकर टीबी के खिलाफ लड़ाई को आगे बढ़ा रहे हैं।
1: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आयुष्मान आरोग्य मंदिर जाएं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों पर जानकारी देंगे।
4: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में

0: विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार, जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई कर व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय पर कोई आयकर नहीं देना होता है। कर प्रणाली में किए गए सुधारों की वजह से आयकर रिटर्न दाखिल करने वालों की संख्या वित्त वर्ष 2022 में 6.9 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में 9.2 करोड़ हो गई है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है। अप्रैल 2026 में जीएसटी संग्रह 2,42,000 करोड़ रुपए के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया, जो अब तक का सबसे अधिक है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
1: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है।
0: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। केवल 22 महीनों में 5G सेवाएं देश के लगभग सभी जिलों तक पहुंच चुकी है। इंटरनेट डेटा की कीमत में 97% से अधिक की कमी आई है। भारत नेट योजना के तहत 7,22,000 किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई जा चुकी है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
2: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
3: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
0: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होने का दावा किया है। उन्होंने कहा कि समझौता होने के तुरंत बाद हॉर्मुज जलडमरू मध्य सबके लिए खुल जाएगा। श्री ट्रंप ने आशा व्यक्त की कि वार्ता सफल रहेगी, यदि ऐसा नहीं होता है तो अंतिम विकल्प भी उपलब्ध है।
5: अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रस्तावित समझौते की तुलना 2015 की संयुक्त कार्य योजना से भी की। उन्होंने कहा कि उनके प्रस्तावित समझौते से ईरान के परमाणु हथियारों पर पूरी तरह अंकुश लगेगा। उन्होंने दावा किया कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम पर प्रभावी रोक लगाई गई है और शेष परमाणु सामग्री बाद में नष्ट कर दी जाएगी। उधर ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बागई ने कहा कि तुरंत किसी समझौते पर हस्ताक्षर की उम्मीद नहीं है। उन्होंने कहा कि यह समझौता आज नहीं होगा, हो सकता है कि अगले कुछ दिनों में ऐसा संभव हो। ईरान के लोक प्रसारक इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान ब्रॉडकास्टिंग के अनुसार श्री बागई ने दूसरे पक्ष की विसंगति के कारण जारी वार्ता प्रक्रिया से तुरंत कोई उम्मीद जाहिर नहीं की। समाचार कक्ष से कृष्णकांत।
4: ईरान ने दिवंगत सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह अली खमनेई के अंतिम संस्कार का कार्यक्रम घोषित कर दिया है। खमनेई के अंतिम संस्कार के विधि विधान 4 और 5 जुलाई को तेहरान की इमाम खुमैनी इबादत स्थल पर होंगे। इसके बाद 6 तारीख को तेहरान और 7 तारीख को पवित्र शहर कौम में विधि विधानों के बाद उन्हें 9 जुलाई को मशहद के इमाम रजा स्थल में दफनाया जाएगा। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में भारत ने अफगानिस्तान को 7 विकेट से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए अफगानिस्तान की टीम 24 ओवर और 5 गेंद में केवल 194 रन पर सिमट गई। जवाब में भारत ने 22 ओवर और 5 गेंद में ही 195 रन का लक्ष्य हासिल कर लिया। इससे पहले लगातार वर्षा के कारण मैच 25-25 ओवर का कर दिया गया। 3 मैचों की श्रृंखला का दूसरा मैच 17 जून को लखनऊ में खेला जाएगा। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत का सामना पाकिस्तान से होगा। मैच बर्मिंघम के एजबेस्टन में भारतीय समय के अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। भारत पाकिस्तान के साथ अब तक हुए 16 में से 13 मैच जीत चुका है। मौसम विभाग ने आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कराईकल के कुछ हिस्सों में तेज वर्षा का अनुमान व्यक्त किया है। विभाग के अनुसार अगले 2-3 दिन में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में पहुंचने की संभावना है। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध हैं।
6: माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक फ्लैगशिप इनिशिएटिव भारत इनोवेट्स 2026, जिसमें हेल्थ केयर और एआई से लेकर एग्रीकल्चर और सेमीकंडक्टर्स तक 13 सेक्टर्स के 120 स्टार्टअप्स 14 से 16 जून तक नीस फ्रांस में अपनी इनोवेशन और एंटरप्रेन्योरियल क्षमताओं का प्रदर्शन करेंगे। भारत इनोवेट्स 2026, भारत में निर्मित, विश्व के लिए तैयार।
4: और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के फ्रांस और स्लोवाकिया की यात्रा की खबर सभी अखबारों में प्रमुखता से है। जनसत्ता की सुर्खी है, फ्रांस पहुंचे मोदी, G7 में ट्रंप से भी मिलेंगे। पत्र के अनुसार वैश्विक दक्षिण की आकांक्षाओं को आवाज देगा भारत। लोकसत्ते ने प्रधानमंत्री के हवाले से लिखा है, युवा शक्ति भारत के भविष्य को दिशा दे रही, युवाओं की उपलब्धियां विकसित भारत के निर्माण में मजबूत नींव बन रही। नवभारत टाइम्स का शीर्षक है, पहली बार IIMA से पास आउट 9 महिला कैडेट। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा, इतिहास में मील का पत्थर, 5 महिला कैडेट्स वायुसेना में भी। दैनिक जागरण की सुर्खी है, अब ICBM मिसाइलों को भी मार गिराएगा भारत, बना 5वां देश। नेवल एंटीशिप मिसाइल का भी पहला सफल परीक्षण। पंजाब केसरी के अनुसार सीमावर्ती जिलों में डेमोग्राफी बदलाव पर सरकार सख्त, गृहमंत्री अमित शाह ने उच्च स्तरीय समिति को जनसांख्यिकी बदलावों का अध्ययन करने का निर्देश दिया। सियासी तूफान शीर्षक से दैनिक भास्कर ने लिखा है, रात 2 बजे अभिषेक बनर्जी के घर छापा, पुलिस बोली 4 घंटे खड़े रहे। पंजाब केसरी ने असले तृणमूल का सवाल देते हुए लिखा है, अपने आप ये अजूबा है कि 4 मई को विधानसभा चुनाव हारने के बाद तृणमूल कांग्रेस के 80 में से 60 विधायकों ने अलग गुट बना लिया और विधानसभा अध्यक्ष ने अलग गुट को मान्यता भी दे दी। देशबंधु की सुर्खी है, गंभीर आर्थिक और ऊर्जा संकट से जूझ रहा पाकिस्तान, असीम मुनीर की नीतियों से हो रहा नुकसान, इस्लामाबाद में यौन उत्पीड़न और अपहरण के मामले बढ़े।
4: और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज नीस में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से बातचीत करेंगे। दोनों नेता भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का उद्घाटन भी करेंगे। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने कहा, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन चंद्रमा पर 200 दिन तक काम करने में सक्षम लैंडर विकसित कर रहा है। मौसम विभाग ने कहा, दक्षिण पश्चिम मॉनसून के अगले 2-3 दिन में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ पहुंचने की संभावना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का दावा, ईरान के साथ युद्ध समाप्त होने के समझौते पर आज हस्ताक्षर होंगे। और भारत ने धर्मशाला में वर्षा से बाधित पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैच में अफगानिस्तान को 7 विकेट से हराया। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
7: श्रोताओ, अभी आप हिंदी में समाचार प्रभात सुन रहे थे। ये आकाशवाणी के हाफलोंग केंद्र है। आइए अब सुनते हैं कुछ देशभक्ति गीत।

0: राष्ट्रपति मैक्रों द्वारा आयोजित भोज के बाद प्रधानमंत्री मोदी अपनी यात्रा के अगले चरण में स्लोवाकिया रवाना होंगे। शैलेश मेनन की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से विशाल शर्मा।
1: हमारे संवाददाता ने बताया है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज शाम स्लोवाकिया की राजधानी ब्रातिस्लावा में पारंपरिक स्लोवाक शैली में स्वागत किया जाएगा।
2: ब्रातिस्लावा पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पारंपरिक तरीके से ब्रेड और नमक देकर स्वागत किया जाएगा। स्लोवाक संस्कृति के अनुसार मेहमानों और खास लोगों का स्वागत ब्रेड और नमक के साथ किया जाता है। ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एनसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। स्मृति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: स्लोवाकिया में भारत की राजदूत अपूर्वा श्रीवास्तव ने आकाशवाणी को बताया कि प्रधानमंत्री की यात्रा से दोनों देशों के संबंधों को नई दिशा मिलेगी। ये समाचार हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in और हमारे ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में पिछले एक दशक में देश के स्वास्थ्य क्षेत्र में व्यापक बदलाव आया है। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री गडकरी ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत करोड़ों लोगों को कैशलेस स्वास्थ्य सुविधा मिल रही है। इस योजना का दायरा अब वरिष्ठ नागरिकों तक भी बढ़ाया गया है। उन्होंने कहा कि जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दरों पर गुणवत्तापूर्ण दवाएं उपलब्ध कराई जा रही है। वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत आज दुनिया की कई सबसे बड़ी स्वास्थ्य योजनाओं का सफलतापूर्वक संचालन कर रहा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा है कि पिछले 12 वर्षों में देश की स्वास्थ्य सेवाओं में बड़ा सुधार हुआ है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में श्री नड्डा ने कहा कि आयुष्मान भारत योजना, आयुष्मान आरोग्य मंदिर और अन्य डिजिटल स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए अधिक लोगों तक इलाज की सुविधा पहुंच रही है। अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने एक दैनिक समाचार पत्र को दिए साक्षात्कार में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सबका साथ सबका विकास की भावना के साथ विकास का लाभ समाज के हर वर्ग तक पहुंचा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को भी खारिज किया है कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्री जीतन राम मांझी और बिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी कल बिहार के गयाजी जिले के खिजरसराय में नए प्रौद्योगिकी केंद्र की आधारशिला रखेंगे। ये केंद्र दक्षिण बिहार और मगध क्षेत्र में 170 करोड़ रुपए के निवेश से स्थापित किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि केंद्र सरकार का लक्ष्य प्रतिवर्ष 7,000 युवाओं को प्रशिक्षण देना और रोजगार सेवाओं के माध्यम से प्रतिवर्ष 1,000 से अधिक उद्यमियों को सहायता प्रदान करना है। सरकार ने जाने माने अर्थशास्त्री प्रोफेसर अलख एन शर्मा को श्रम सांख्यिकी पर बनी उच्च स्तरीय तकनीकी विशेषज्ञ समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। ये समिति देश में रोजगार और श्रम बाजार से जुड़े आंकड़ों की समीक्षा करके अधिक सटीक, विस्तृत तथा समय पर उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। समिति भारत के बदलते श्रम बाजार का भी अध्ययन करेगी। प्रोफेसर शर्मा वर्तमान में मानव विकास संस्थान के निदेशक हैं। पश्चिम बंगाल में अपराध जांच विभाग सीआईडी तृणमूल कांग्रेस विधायकों के हस्ताक्षर जालसाजी मामले में पार्टी सांसद अभिषेक बंदोपाध्याय से पूछताछ कर रही है। अभिषेक आज कोलकाता में सीआईडी मुख्यालय भवानी पहुंचे। कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर सीआईडी इस मामले की जांच कर रही है। आरोप है कि राज्य विधानसभा चुनाव के बाद विपक्ष के नेता के चयन के लिए अभिषेक बंदोपाध्याय ने तृणमूल कांग्रेस के नवनिर्वाचित विधायकों के हस्ताक्षरों में जालसाजी की। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है।

0: इनमें तीन महिलाएं और एक बच्चा शामिल है। पुलिस ने बताया है कि मृतकों में दो लोग रांची और दो गढ़वा जिले के हैं। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग की ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की। ये सेवा राज्य में मंडी जिले के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। मंडी प्रधान डाकघर से रेहरधर लगभग 12 किलोमीटर दूर है। ड्रोन सेवा से 2 घंटे से अधिक का समय घटकर मात्र 7 मिनट हो जाएगा। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन लूनर लैंडर को चंद्रमा पर कड़ाके की ठंड से बचाने के लिए परमाणु ऊर्जा विभाग के साथ उन्नत कृत्रिम तापन प्रणाली विकसित करेगा। इसरो प्रमुख वी नारायणन ने बेंगलुरु में कहा कि सौर ऊर्जा से संचालित चंद्रयान 3 का विक्रम लैंडर चंद्रमा पर केवल 14 दिन तक सक्रिय रहा। इस लैंडर में प्रतिकूल मौसम में काम करने वाले कृत्रिम हीटर लगे होंगे। आयुष मंत्रालय ने आज YouTube पर आयोजित एक लाइव योग सत्र के जरिए नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। इस ऑनलाइन योग कार्यक्रम में 4,35,000 से अधिक लोगों ने भाग लिया। आयुष मंत्री प्रताप राव जाधव ने कहा कि ये उपलब्धि दुनिया भर में योग की बढ़ती लोकप्रियता को दर्शाती है। उन्होंने लोगों से योग को अपनी दैनिक दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का मुख्य कार्यक्रम 21 जून को कोलकाता में आयोजित किया जाएगा। इस वर्ष योग दिवस की थीम है स्वस्थ आयु के लिए योग। श्रीलंका के कोलंबो में आज 5,000 से अधिक कलाकारों ने भरतनाट्यम की सामूहिक प्रस्तुति देकर ऐतिहासिक सांस्कृतिक उपलब्धि हासिल की है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: कोलंबो के गोल्फेस ग्रीन में आज इतिहास रचा गया। 5,000 से अधिक भरतनाट्यम कलाकारों ने एक साथ प्रस्तुति देकर दुनिया की सबसे बड़ी भरतनाट्यम नृत्य कक्षा का एक नया गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड स्थापित किया। रंग, लय और परंपरा के अद्भुत संगम ने पूरे वातावरण को सांस्कृतिक उत्सव में बदल दिया। महीनों की तैयारी के बाद साकार हुए इस ऐतिहासिक आयोजन ने भारतीय शास्त्रीय नृत्य की वैश्विक लोकप्रियता को नई ऊंचाई दी है। इस उपलब्धि के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड का प्रमाण पत्र भारतीय उच्चायोग संतोष झा ने कलाकारों और आयोजकों का प्रतिनिधित्व करते हुए प्राप्त किया। भारत और श्रीलंका के सांस्कृतिक संबंधों को और सशक्त बनाने वाला ये आयोजन कला और विरासत की एक अविस्मरणीय मिसाल बन गया है। अहमद मोइन फारूकी, आकाशवाणी समाचार, कोलंबो।
0: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के साथ जारी विवाद को समाप्त करने के लिए एक समझौते पर आज हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। उन्होंने कहा कि इसके बाद हॉर्मूज जल डमरू मध्य सभी देशों के लिए खुला रहेगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि यह समझौता दोनों देशों के संबंधों को बेहतर बनाने की दिशा में बड़ा कदम होगा। उन्होंने दावा किया है कि ईरान अब परमाणु हथियार नहीं चाहता। हालांकि ईरान ने आज समझौते पर हस्ताक्षर होने की खबरों की पुष्टि नहीं की है। ईरानी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बाकाई ने कहा है कि अगर कोई समझौता होता भी है तो वो आगे की बातचीत के लिए केवल प्रारंभिक ढांचा होगा। इस बीच ईरान के कई शहरों में लोगों ने अमेरिका के साथ प्रस्तावित शांति समझौते के विरोध में प्रदर्शन किया। ओडिशा में 3 दिवसीय फसल उत्सव राजा आज पाहली राजा उत्सव के साथ शुरू हुआ। ये महोत्सव मॉनसून और उड़िया महीने आषाढ़ के आगमन का प्रतीक है।
2: राज्य के सबसे पसंदीदा सांस्कृतिक त्योहार का नाम रजस्वला से आया है, जो इस मान्यता को दर्शाता है कि महिलाओं की तरह धरती भी आराम और नई ऊर्जा पाने के दौर से गुजरती है। उड़ीसा के हर घर में त्योहार के खास पकवाने जैसे पोड़ पीठा, अरीसा पीठा, चकुली पीठा और मसूर रजा पान की खुशबू फैली हुई है। रजा नारित्व और प्रकृति तथा जीवन को बनाए रखने वाली उसकी प्रक्रियाओं के प्रति उड़ीसा के गहरे सम्मान का एक अनोखा उत्सव है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर देशवासियों, विशेष रूप से ओडिशा वासियों को हार्दिक शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने कहा कि ये त्योहार प्रकृति और समाज के गहरे जुड़ाव को दर्शाता है।

0: मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिम मॉनसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। आज पूर्वोत्तर क्षेत्र, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरलम, माहे, ओडिशा, तमिलनाडु, पुदुचेरी और कारैक्काल के कुछ हिस्सों में भारी बारिश हो सकती है। मध्य प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिमी राजस्थान में कल तक तेज आंधी तूफान की संभावना है। महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों में आज लू चलने का अनुमान है। स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा ने विश्व रक्तदाता दिवस पर लोगों से स्वैच्छिक रक्तदान की अपील की है। श्री नड्डा ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि रक्तदान किसी व्यक्ति को नया जीवन देने का सर्वाधिक प्रभावी और पावन अवसर है। आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का ये मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समयानुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। और फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरनकुंडा और कॉनर मेटकॉफ ने 1-1 गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 वर्ष बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। इसी ग्रुप में 5 बार के चैंपियन ब्राजील और मोरक्को के बीच मैच 1-1 से बराबरी पर रहा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2 यूरोपीय देशों की यात्रा के पहले चरण की शुरुआत फ्रांस के नीस शहर से की। श्री मोदी अब से कुछ देर में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ भारत इनोवेट्स का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों के साथ द्विपक्षीय वार्ता में भारत फ्रांस विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी में हुई प्रगति की समीक्षा करेंगे। झारखंड में कल से बिजली गिरने की घटनाओं में 7 लोगों की मौत। दक्षिण पश्चिम मॉनसून अगले 2-3 दिनों में कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ हिस्सों में आगे बढ़ेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुने हिंदी में दोपहर समाचार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब हम आपको पुनः सुनवाते हैं विविध भारती के कार्यक्रम जो आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे।

लता मंगेशकर और तलत महमूद की आवाज़ों में जहां आरा फिल्म का ये गीत आपने सुना, राजेंद्र कृष्ण के बोल थे, मदन मोहन का संगीत था।

0: हो गजब घूंघट तो जरा ओढ़ो, अरे मानो कहा अब तुम हो जवा, मेरी जान धड़कपन छोड़ो।
1: तर्ज सचिन देव बर्मन की मजरू सुल्तानपुरी का लिखा गीत आपने सुना, किशोर कुमार आशा भोसले का गाया, फिल्म थी तीन देवियां।
2: अमर गीतों की रचयिता कवि प्रदीप की सुपुत्री मितुल प्रदीप साझा कर रही है अपने पिता कवि प्रदीप के जीवन से जुड़ी कुछ यादें।
3: जैसे उनके कपड़े बहुत ही सादे रहते थे, कभी भी सफेद के सिवा उन्होंने पहना नहीं, एकदम सीधे सादे व्यक्ति। लेकिन उन्होंने बच्चों के ऊपर कभी भी अपना सिद्धांत लादा नहीं, लेकिन वो सिद्धांत से चलते थे तो हम देखते थे उनको, तो वो चीजें हम में अपने आप से आ गई।
2: तो सुनना न भूले कार्यक्रम उजाले उनकी यादों के 14 जून शाम 4 बजे सिर्फ विविध भारती पर।
4: जो शहीद

0: शागिर्द फिल्म का गीत था, मोहम्मद रफी लता मंगेशकर का गाया, मजरू सुल्तानपुरी के बोल थे।
1: दिन की भागदौड़ के बाद सुकून का एक कोना,
2: मैं और मेरी तन्हाई,
1: सुनहरे गानों का बिछौना, यादों का मीठा राग, जज्बात की नरम छांव, प्यार की चुवन, अपनेपन का गांव, छाया गीत, रोज रात 10 बजे सिर्फ विविध भारती पर।

0: कजरा अखियां मलते मलते नैना मार गई रे।
1: राम और श्याम इस फिल्म का दो गाना था, मोहम्मद रफ़ी आशा भोसले का गाया, शकील बदायूनी के बोलों को सुरों में ढाला नौशाद ने, और यही थी सदाबहार नगमे कार्यक्रम की आखिरी पेशकश। सदाबहार नगमे कार्यक्रम अब संपन्न होता है।

नमस्कार। इस वक्त हमारे स्टूडियो की घड़ी में दिन के ठीक 3:01 हुए हैं और वक्त हो चला है कार्यक्रम मन चाहे गीत का। तो मन चाहे गीत कार्यक्रम में हम अपने सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आज के कार्यक्रम को बिल्कुल ध्यान से सुनिए श्रोताओं, कहीं आपकी पसंद के गीत इसमें शामिल तो नहीं। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का एक बार फिर सुनने वालों को। संगीता श्रीवास्तव का प्यार भरा नमस्कार।

ब्लैकमेल, इस फिल्म में आपने सुना किशोर कुमार की आवाज़ राजेंद्र कृष्ण के बोलते कल्याण जी आनंद जी की तर्ज थी, और इस गीत को पसंद किया शाहूनगर यवतमल से राहुल मनवर, सरला मनवर, विशाल और चेतन मनवर, यहीं से रोशनी और बेबी प्रियांशी ने।

कमाल अमरोही की रचना थी गुलाम मोहम्मद की तर्ज, लता मंगेशकर की आवाज़ में पाकीज़ा फिल्म का ये गीत आपने सुना। इस गीत को पसंद किया अनिल इंदौर से, अनिल बामनिया, प्रमिला बामनिया, नंदनी मुस्कान, नीलम सावन, कृष्ण कुमार, ऋतिक, कुणाल, केतन और इनके परिवार के सभी सदस्यों ने।

फिल्म मेला का ये गीत था मोहम्मद जफी और लता मंगेशकर का गाया, आर डी बर्मन की तर्ज थी, मजरूह सुल्तानपुरी के बोल थे। जिला अहिल्यानगर महाराष्ट्र से नंद कुमार अद्वंत, उर्मिला अद्वंत, नीलेश मयूरी, कल्पेश और संगीता अद्वंत की ये फरमाइश थी और इसी गीत को पसंद किया। बेरखेड़ा उज्जैन से विनोद मुड़त, नेहा जैन, दीपक मयंक मुड़त और चेतन नाहटा ने।

घंटाघर चौक खंडवा से संजय पंचोलिया, प्रियंका पंचोलिया, गुनगुन, संप्रीत, हेमेंद्र और पंचोलिया परिवार के सभी सदस्यों की ये फरमाइश।

आप सुन रहे थे मौसम फिल्म का गीत, लता मंगेशकर और भूपेंद्र का गाया, गुलजार के बोलते मदन मोहन का संगीत था। इस गीत को पसंद किया जसपुर उत्तराखंड से रियासत हुसैन, नजमा रियाज, शमरीन परवीन और मोहम्मद रेहान, और इसी गीत को सुनना चाहते थे जबलपुर से जिनेन्द्र जैन। और इस गीत के पहले श्रोताओं आपने कच्चे धागे फिल्म का गीत सुना था, आनंद बख्शी का लिखा, लक्ष्मीकांत प्यारेलाल की तर्ज थी, लता मंगेशकर की आवाज़ थी। इस गीत के साथ ही आवाज का मनचाहे गीत कार्यक्रम संपन्न करने की संगीता श्रीवास्तव को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।

0: आप सुन रहे हैं विविध भारती।
1: नाट्य तरंग आज के इस कार्यक्रम में सुनिए नाटक अभिशप्त गांधार का दूसरा और अंतिम भाग। इसके लेखक हैं डॉक्टर शंकर शेष, निर्देशक सुदर्शन कुमार। तो आइए सुनते हैं नाटक अभिशप्त गांधार दूसरा और अंतिम भाग।

0: पांडव पांच गांव ही तो मांग रहे हैं महाराज, दुर्योधन से कहिए दे दे।
1: कह चुका हूं।
0: तब?
1: नहीं मानता।
0: क्या कहता है?
1: उसका तर्क है, पांडवों ने अपनी धन संपदा राज सब कुछ द्यूत में हार दिया है। दासत्व से मुक्त होने के लिए पांडवों के लिए 12 वर्ष के वनवास और 1 वर्ष के अज्ञातवास की शर्त रखी गई थी। ये अवधि पूरी होने पर पांडव दासत्व से मुक्त होकर स्वतंत्र हो गए हैं। उन्हें उनका राज्य वापस लौटाया जाएगा ऐसी कोई शर्त नहीं थी। ऐसी स्थिति में उन्हें 5 गांव देने की बात कहां से उत्पन्न हो गई?
0: उसका तर्क अनुचित है क्या?
1: तर्क तो केवल तर्क ही है गांधारी, किंतु सत्य ये है कि कौरव और पांडव दोनों हैं तो एक ही वंश के, उनके बीच ईर्ष्या द्वेष वैमनस्य शोभा नहीं देते। यदि युद्ध हुआ तो जय पराजय किसी की भी हो, विनाश तो वंश का ही होगा।
0: तो फिर आप पांडवों को समझाइए कि वे भूमि के लिए हठ न करें।
1: कोई लाभ नहीं होगा।
0: क्यों?
1: उनकी ओर से समस्त निर्णय श्री कृष्ण लेते हैं।
0: वो क्या कहते हैं?
1: वो ही तो सारे विवाद के मूल में है। कहते हैं द्यूत में रखे गए पड़ों की कोई मान्यता नहीं, वो सब शकुनी का छल था।
0: छल? युधिष्ठिर ने स्वेच्छा से द्यूत क्रीड़ा में भाग लिया था। शकुनी की निपुणता और अपने दुर्भाग्य के कारण युधिष्ठिर पराजित हुआ, इसमें छल कहाँ है?
1: इस विवाद से कोई लाभ नहीं गांधारी, सर्वनाश से बचने का केवल एक उपाय है।
0: क्या?
1: दुर्योधन को समझा दो कि पांडवों को 5 गांव देकर उनसे मैत्री कर ली।
0: उस पर मेरा वश नहीं है, वो मेरी सुनता कहाँ है?
1: और इसके लिए कौन उत्तरदायी है? क्यों छुप क्यों हो गई? कुंती की क्यों सुनी जाती है? क्यों उसका प्रत्येक पुत्र उसके आदेश को वेदवाक्य मानता है?
0: फिर वही तुलना।
1: तुलना के अभिशाप से तुम बच नहीं सकती गांधारी। कुंती ने अपनी कटुता से मुक्ति पा ली, किंतु तुम
0: कुंती के साथ मेरी तरह कोई छल नहीं।
1: क्यों?

0: हुआ था। कुंती जानती थी कि उसका होने वाला पति रोगी है। क्या उसके स्वप्न तुम्हारी तरह चूर चूर नहीं हुए? किंतु वे टूटी नहीं। उसने अपने दुख को जड़ता और संज्ञाहीनता का पर्याय नहीं बनने दिया। निराशा के मध्य भी उसने जीवन की एक सार्थक व्याख्या ढूंढी। जीवन को तुम्हारी तरह नकार नहीं दिया।
1: महाराज,
0: गंधारी, कुंती के बच्चे स्नेह और मातृत्व के प्रतीक है। तुम्हारे बच्चे घृणा और तिरस्कार की उपज हैं। यदि ये बच्चे द्रौपदी का वस्त्र नहीं खींचेंगे तो और कौन खींचेगा?
1: अभी कुछ नहीं बिगड़ा है महाराज। किसी प्रकार दुर्योधन को समझाइए। पांडव 5 गांव मांग रहे हैं, दे दे उन्हें।
0: दुर्योधन सुई की नोक बराबर भूमि भी पांडवों को नहीं देगा गंधारी।
1: इसका अभिप्राय ये हुआ कि युद्ध अवश्यंभावी है और युद्ध का अर्थ है विनाश, संपूर्ण विनाश।
0: यही विधि का विधान है तो इसे कौन रोक सकता है?
1: ईश्वर कल्याण।

0: युद्ध का प्रथम दिन है गंधारी, भयानक विनाशकारी युद्ध। संजय कहता है इस युद्ध में रक्त की नदियां बह जाएंगी, धरती वंध्या हो जाएगी।
1: विनाश को आमंत्रित करने का निर्णय हमारा तो नहीं,
0: किंतु हम इसके प्रभाव से अछूते भी नहीं रह सकते। जानता हूं यह निर्णय आत्मघाती है, परंतु विवश हूं गांधारी, कुछ कर नहीं सकता। लगता है संजय आ रहा है, युद्ध का समाचार होगा।
2: महाराज की जय हो।
0: क्या समाचार लाए हो संजय?
1: कोई आहत हुआ?
2: नहीं महारानी, आप चिंता क्यों करती हैं? कौरवों के साथ पितामह भीष्म, द्रोण, कृपाचार्य जैसे महारथी हैं। उनकी सैन्य शक्ति भी पांडवों से अधिक है। आज तो युद्ध का पहला दिन था, दोनों दल बराबर रहे। सत्य तो यह है महारानी कि पांडव सेना आज पीछे हटी।
1: मेरे सब पुत्र तो सुरक्षित है ना संजय?
2: हाँ महारानी। राजन,
0: कहो संजय।
2: आज आपके 9 पुत्र मारे गए।
0: 9 पुत्र?
2: हाँ महाराज। जलसंध, सुषेण, उग्र, वीरबाहु, भीमरथ, सुलोचन।

चित्रसेन उपचित्र सुचारू चित्राक्ष नंद और उपेंद्र मारे गए।

दुर्मुख, दुर्जय, दुष्कर्ण, शत्रुंजय, बिंद। गांधारी, आपके पुत्रों की संख्या घटते घटते केवल दो रह गई।

0: संजय, मेरा दुर्योधन कहाँ है? जिससे पूछती हूँ वही चुप। कहाँ चला गया है मेरा बेटा?
1: जिस भीम ने आपके दूसरे पुत्रों का वध किया, उसने ही महाराज दुर्योधन का भी।
0: असंभव। दुर्योधन नहीं मारा जा सकता। मैंने उसे वज्र की देह दी है। संसार में ऐसे पुरुष का जन्म नहीं हुआ है जो दुर्योधन को मार सके। तुम असत्य बोल रहे हो संजय। कहो कि तुम असत्य बोल रहे हो।
1: नहीं महारानी, मैं सत्य बोल रहा हूं। भीम नहीं, महाराज दुर्योधन की जंघा पर गदा से प्रहार करके उनके प्राण लिए।
2: क्या?
0: जंघा पर प्रहार, नाभि के नीचे वार। संजय, यह अन्याय है, अधर्म है, पाप है।
2: निसंदेह ये विश्वासघात है, ये मर्यादा का उल्लंघन है।
0: संजय, सच सच बताना, सच बताने की तुमने प्रतिज्ञा की है। क्या मेरे पुत्र का वध षड्यंत्र के कारण नहीं हुआ? किसने किया ये षड्यंत्र?
1: देवी, महाराज दुर्योधन युद्ध से थक कर एक सरोवर में विश्राम कर रहे थे। युधिष्ठिर और उनके भाई उन्हें खोजते हुए सरोवर तक पहुंचे। युधिष्ठिर ने उन्हें युद्ध के लिए ललकारा, कहा तुम पांचों पांडवों में से किसी एक को युद्ध के लिए चुन लो, यदि तुम विजयी हो गए तो तुम सारे राज्य के स्वामी हो जाओगे।
0: हाँ दुर्योधन, तूने भीम ही को क्यों चुना?
1: देवी, महाराज दुर्योधन ने अपने गदा कौशल से भीम को लगभग परास्त ही कर दिया था, परंतु
2: परंतु क्या?
1: परंतु कृष्ण ने अर्जुन को सांकेतिक भाषा में समझाया कि यदि भीम महाराज दुर्योधन की जंघा पर प्रहार करे तो विजयी हो जाएगा।
2: ये घोर नीति।
1: भीम ने कृष्ण का यह संकेत तुरंत भांप लिया और सिंह की भांति झपटकर जंघा पर प्रहार किया। महाराज दुर्योधन कटे वृक्ष के भांति भूमि पर गिर
0: पड़े। बस बस संजय, अब आगे कुछ मत कहो, एक शब्द भी नहीं। आज 100 पुत्रों की माता निसंतान हो गई, सब वेदनाएं सो गई, दुख की पराकाष्ठा ने मन को आवेगों से मुक्त कर दिया है।
2: फिर भी हमें जीवन का अभिशाप भोगना है गांधारी, एक अर्थहीन जीवन का अभिशाप। 100 पुत्रों की मृत्यु का आघात सहकर भी हमें अपने अस्तित्व का शव अपने कंधों पर धोना है। अपने ही पुत्रों के वधिकों को हमें

0: चिरी और यशस्वी होने का आशीर्वाद देना है। आंसू पोछो का अंधारे, आंसुओं से भीगी पट्टी तुम्हें अधिक कष्ट देगी। उठो उठो।
1: मैं वासुदेव कृष्ण माता गांधारी को प्रणाम करता हूँ।
2: वासुदेव कृष्ण, क्यों आए हो यहाँ? अब मेरा एक भी पुत्र नहीं बचा, किसे मारोगे?
1: शांत हो राजमाता।
2: राजमाता, श्री कृष्ण उपहास क्यों करते हो? तुमने कितनी माताओं से उनका मातृत्व छीन लिया, कितनी स्त्रियों से उनका पति छीन लिया। मैंने अपने इन कानों से सहसरों स्त्रियों का आर्तनाद सुना है। अच्छा हुआ मैं कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में पड़े शवों को नहीं देख सकी। पट्टी बांधने का उपयोग पहली बार समझ में आया।
1: देवी गांधारी, क्या मैंने युद्ध रोकने का प्रयत्न नहीं किया था? क्या मैं दूत बनकर आपकी राजसभा में नहीं आया था? किंतु आपके पुत्र ने सुनी ही कहां। राज्य लोभ द्वेष से पीड़ित उसकी आत्मा।
2: नहीं कृष्ण, नहीं, तुमने युद्ध रोकने का वास्तविक प्रयत्न किया ही नहीं। तुम चाहते तो ये युद्ध हो ही नहीं सकता था। तुम्हारा पराक्रम, तुम्हारी नीति और तुम्हारी हल्की सी धमकी इस युद्ध की महाज्वाला को रोक सकती थी।
1: देवी गांधारी,
2: कृष्ण मैं तुम्हारा दर्शन समझती हूँ। तुमने देख लिया था कि वस्तु स्थिति सुधार से परे है। फटे आकाश को सीकर ठीक नहीं किया जा सकता। नए जीवन की भूमिका रचने के लिए विगत को क्रूर विदाई देनी ही पड़ती है। किंतु कृष्ण, जो बचे हैं उनके विषय में कभी सोचा तुमने? हम अब क्या करेंगे, किसका मुंह देख कर जिएंगे, बताओ।
1: मुझे क्षमा करो माता।
2: दुर्योधन बुरा होगा, दुष्टासन ने नारकीय कृत्य किए होंगे, पर मेरे 100 के 100 बेटे तो इतने बुरे नहीं थे। तुम चाहते तो उनमें से एक जीवित रह सकता था, एक। हम अंधों की लाठी तो नहीं छिनती।
1: माता, जो अवश्यंभावी है उसे कोई नहीं रोक सकता, न मैं और न आप।
2: नहीं, तुम रोक सकते थे कृष्ण, तुम रोक सकते थे, किंतु तुमने प्रयत्न नहीं किया। छल और प्रवंचना तुम्हारी सबसे बड़ी नीति रही है। वासुदेव, शापित जीवन की ज्वाला में झुलसी ये गांधारी तुम्हें शाप देती है। तुम्हारा समस्त वंश भी इसी प्रकार आपसी कलह में नष्ट हो जाए। जिस प्रकार छलकर तुमने मेरे पुत्रों को मारा है, उसी प्रकार किसी के भ्रम के कारण ही तुम्हारे भी प्राण निकले। जाओ जाओ, मुझे किसी की सहानुभूति की आवश्यकता नहीं है। मेरी जड़ी भूत आत्मा उस संवेदना से परे है।

0: मन करता है अब हस्तिनापुर से दूर कहीं अरण्य में चले।
1: क्या किसी ने कुछ कह दिया? कुंती ने, द्रौपदी ने?
0: नहीं, उनका व्यवहार इतना अच्छा है कि अपने पराश्रित होने की अनुभूति और गहरी हो जाती है। इससे मुझे अपने बच्चे अधिक याद आते हैं।
1: मैं समझ गया। ठीक है गांधारी, वंश परंपरा के अनुसार हमें वल्कल धारण कर वन में जाना चाहिए।

0: अब निश्वास लेने से क्या लाभ गांधारी। हम लोगों की गृहस्थी जैसे चलनी थी चली, अब उसका स्मरण करके दुखी होने से क्या लाभ।
1: महाराज, मैं अपने दुखों के लिए उसास नहीं भर रही हूँ। यहाँ की खुली सुगंधित वाशु, पांव तले की असम धरती, उस पर वृक्षों की सूखी पत्तियों का स्पर्श, पास के वन से आ रही जंगली फूलों की गंध, कहीं पास ही कोई पहाड़ी झरना है, उसकी कल कल ध्वनि, न जाने क्यों सहसा गांधार की याद मन में उभर आई।
0: सत्य ही तो, एक ज्योतिहीन के गले बंधने की यातना तुमने पूरे जीवन भर सही। कविता ही खो गई तुम्हारे मन की। मायके की याद आना कितना स्वाभाविक है।
1: मायके की याद, उसे तो मैं उसी दिन भूल गई थी जिस दिन गांधार की सीमा का त्याग किया था। मुझे तो स्मरण हो रहा है गांधार प्रदेश, उस भूमि का स्पर्श कितना सौम्य है।
0: गांधारी, हमने और तुम्हारे पितृ कुल ने तुम्हारे साथ कितनी बड़ी प्रवंचना की। विवाह से पहले मेरे अंधत्व की जानकारी तक नहीं थी तुम्हें। हमारे कुल ने तुम्हारे प्रति अक्षम्य अपराध किया।
1: महाराज, अब पुरानी बातों को दोहराने से क्या लाभ।
0: अब हमारे जीवन में मृत्यु के अतिरिक्त कोई नई बात तो होने से रही। पुरानी बातों की गश्ती को उलट पुलट कर ही समय के दबाव को कम किया जा सकता है। एक बात कहूं गांधारी, तुमने भी कम प्रतिशोध नहीं लिया। क्या आज भी पुरानी बातों को क्षमा नहीं करोगी?
1: महाराज,
0: सचमुच बहुत बड़ा दंड दिया तुमने। विवाह की पहली रात मुझे आज भी याद है। ओह, कितनी भयानक रात थी। मैंने तुमसे पट्टी हटाने के लिए कहा था और उत्तर में तुमने स्त्री धर्म, पातिव्रत्य, न जाने कितनी बड़ी बड़ी बातें कही थी। कही थी ना?
1: हाँ, कही थी।
0: और उस समय मेरे मन में क्रोध उमड़ पड़ा था। इच्छा तो हुई थी कि उसी समय
1: आपने मेरी आंखों की पट्टी निकाल कर फेंक क्यों नहीं दी। आप केवल एक बार कह देते कि ये पति की आज्ञा है तो क्या मैं टाल सकती थी।
0: मैंने सोचा तुम धीरे धीरे मान जाओगी। जब दुर्योधन तुम्हारे सामने लाया गया, मुझे आशा थी कि तुम स्वयं पट्टी उतार फेंकोगी, किंतु तुमने अपना हठ नहीं छोड़ा।
1: आपने कभी कहा नहीं, आप राजा थे, उस अधिकार से ही।
0: तब तक बात सीमाएं पार कर चुकी थी। तुम महासती के रूप में विख्यात हो चुकी थी। तुम अपने ही बंधनों का दंड भोग रही थी।
1: महाराज, ये आप क्या कह रहे हैं?
0: जो सत्य है वही कह रहा हूं। अब तो सब कुछ समाप्त हो चुका है। सुनो, एक प्रश्न का उत्तर बहुत प्रामाणिकता से देना। तुमने कभी मुझसे प्रेम किया? शरीर से परे एक अनिवार्य आवश्यकता के रूप में कभी तुमने मुझसे प्रेम किया? यदि शरीर धर्म का परिणाम ये बच्चे न होते तो क्या हम निकट आते?
1: महाराज, इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं दे पाऊंगी।
0: तुम्हारे उत्तर न देने में ही मुझे उत्तर मिल गया है गांधारी। जानती हो हम लोग कब सच्चे अर्थों में निकट आए? युद्ध में अपने पुत्रों के मारे जाने के बाद उस व्यथा ने हमें एक दूसरे के निकट पहुंचाया, एक दूसरे के अस्तित्व के लिए अनिवार्य बना दिया, और इसीलिए आज उस अनिवार्यता के बोध से
1: स्त्री मन की इतनी गहरी समझ रखते हुए भी आपने
0: कुरु वंश के पुरुषों ने स्त्रियों पर असंख्य अत्याचार किए हैं गांधारी, और उसका प्रायश्चित भी उन्होंने भोगा है। अंबा के शाप में भीष्म चलते रहे, तुम्हारे शाप में मैं जला, मेरी संतति चली। कुंती का विवाह भी एक पंगु से हुआ था, किंतु वो दूसरों से भिन्न थी। उसने अपना दुख निगल कर अपना प्रेम बच्चों पर उड़ेल दिया। इसीलिए गांधारी, कुंती के पांच ही बेटे विश्व विजयी हुए। ओ, प्यार की संतान है, मां का अमृत उन पर अहर्निश बरसता रहा, और हमारे बच्चे केवल शरीर की उपज थे, केवल संख्या के पर्याय। इसीलिए वो सौ होकर भी नष्ट हो गए।
1: हमारे बच्चे संख्या के शिशु थे, उन्हें किसने प्यार दिया, किसने संस्कार दिए, किसने दिशा दी? हाँ, अपराधी भी नहीं हम है महाराज, हम है।
0: गांधारी, देखो, मैं आज मैं ये सब इसलिए नहीं कह रहा हूं कि तुम्हारा मन व्यथित हो, किंतु जिस हट धर्मी को लेकर तुम अपने आप से लड़ती रही हो, वो युद्ध संबंध हो। अपने से उठकर तुम सत्य का साक्षात्कार कर सको, मुझे नहीं तो कम से कम अपने आप को क्षमा कर सको, और कम से कम इस निष्कर्ष पर पहुंच सको कि एक अन्याय का प्रतिकार दूसरे अन्याय से नहीं होता।
1: महाराज, मेरे जीवन का प्रारंभ किसी राग के कोमल गांधार की तरह हुआ था, किंतु उसके वादी संवादी स्वरों का तालमेल कभी नहीं बैठा। पूरा राग बिखर गया और उनका स्थान ले लिया दिशाओं को बहरा करने वाले कोलाहल ने। किंतु महाराज, अब मन शांत है। आज मैं अपने सतीत्व को साक्षी रखकर कह सकती हूँ, मैं आपसे प्रेम करती हूँ।
0: गांधारी, लगता है पास का वन जल रहा है, उसमें आग लग गई है।
1: आपको कैसे ज्ञात हुआ?
0: धुएं की गंध वायु के पंखों पर यहां तक आ रही है, मैं उसी ओर जा रहा हूं।
1: महाराज,
0: हाँ गांधारी, अभी तुमने अपने प्रेम की आत्म स्वीकृति थी, मन के सारे अभाव दूर हो गए। अब मन कैसा तृप्त है, इसी तृप्ति के साथ इस जीवन का भी अंत हो जाना चाहिए, एक तृप्तिमय अंत।
1: रुकी रुकी, मैं भी साथ चलूंगी।
0: तुम भी?
1: गांधार के स्वर भले विकृत हो गए, पर अब मन में नए राग के स्वर उभर रहे हैं। चलिए, इसी के सुर में, ताल लय में अपने जीवन को विसर्जित करते हैं।
0: चलो, तावानल बढ़ रहा है,
2: आज प्रकृति ने ही हमारे लिए इतनी उदारता से चिता रचती है। जीने योग्य आदर्श स्थिति इस जीवन में कभी नहीं मिली। आज मृत्यु के योग्य आदर्श स्थिति मिली है तो उसका परित्याग क्यों किया जाए। चलो गंधारी, थामो मेरा हाथ। इसी तरह चलो।
1: चलिए महाराज, इस ज्वाला में संकेत है परिवर्तन का, एक नए अध्याय के प्रारंभ का। समय हमारा बोझ उतार कर

0: अभी आपने सुना डॉक्टर शंकर शेष के लिखे नाटक।
1: श्रोताओं, अभी आपने सुने विविध भारती के कार्यक्रम फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब से कुछ क्षणों में आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से हिंदी में समाचार रिले किए जाएंगे।

0: नवाचार स्टार्टअप और उद्यम पूंजीदाता शामिल हुए। इनमें उन्नत कंप्यूटिंग, सेमीकंडक्टर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम, अंतरिक्ष, स्वच्छ ऊर्जा तथा जैव प्रौद्योगिकी समेत 13 प्रमुख क्षेत्रों में नवाचार प्रदर्शित किए गए। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने भारत और फ्रांस के मजबूत संबंधों का उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि जहां कई राष्ट्र व्यापार और रणनीतिक सहयोग में संलग्न हैं, वहीं कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों द्वारा निर्देशित होते हैं। उन्होंने भारत फ्रांस साझेदारी को एक ऐसा स्थायी संबंध बताया जो आपसी विश्वास, साझा मूल्यों और भविष्य के लिए एक समान दृष्टिकोण पर आधारित है।
1: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू

0: ब्रेड को खुशहाली जबकि नमक को अहमियत, दोस्ती और सुरक्षा का प्रतीक माना जाता है। स्लोवाकिया के बच्चों का एक मशहूर लोक कला समूह प्रधानमंत्री के स्वागत में पारंपरिक स्लोवाक नृत्य प्रस्तुत करेगा। लुचनिका एंसेम्बल द्वारा वंदे मातरम की प्रस्तुति स्वागत समारोह का मुख्य आकर्षण होगी। समिति की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से अर्जुन शर्मा।
1: वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने कहा है कि कर्नाटक को यूपीए सरकार के समय की तुलना में केंद्रीय करों के हिस्से के रूप में 5 गुना अधिक धनराशि मिली है। बेंगलुरु में विकसित भारत संकल्प समावेश कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कर्नाटक को केंद्र से लगभग 4 लाख करोड़ रुपए कर हिस्सेदारी के रूप में मिले हैं। उन्होंने राज्य सरकार के इस आरोप को खारिज किया कि कर्नाटक को केंद्र से पर्याप्त सहायता नहीं मिल रही है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि राज्य को राष्ट्रीय राजमार्गों के निर्माण, रेलवे परियोजनाओं और बेंगलुरु चेन्नई औद्योगिक गलियारा परियोजना के लिए भी बड़ी राशि दी गई है। उन्होंने बताया कि नवीकरणीय ऊर्जा परियोजनाओं के लिए भी धन उपलब्ध कराया गया है। संचार मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने हिमाचल प्रदेश में डाक विभाग द्वारा ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की घोषणा की है। ये सेवा राज्य में मंडी के प्रधान डाकघर और रेहरधर शाखा के बीच शुरू की गई है। संचार मंत्रालय ने बताया कि विभाग ने अगले 2 से 3 महीने में हिमाचल प्रदेश और असम में लगभग 150 स्थानों पर ड्रोन आधारित डाक सेवा शुरू करने की योजना बनाई है। झारखंड में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने की अलग अलग घटनाओं में 7 लोगों की मौत हो गई है। पुलिस ने बताया कि मृतकों में 2 लोग रांची और 2 गढ़वा जिले के हैं। आईसीसी महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में आज भारत अपने पहले मैच में पाकिस्तान के साथ खेलेगा। ग्रुप ए का यह मैच बर्मिंघम के एस्बेस्टन में भारतीय समय अनुसार शाम 7 बजे से शुरू होगा। महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों में भारत अब तक पाकिस्तान को 16 में से 13 मुकाबलों में हरा चुका है। फीफा विश्व कप के ग्रुप डी के अपने पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया ने तुर्की को 2-0 से हरा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के नेस्टोरी इरंकुडा और कॉनर मैटकॉफ ने एक गोल दागा। अमेरिका के न्यूजर्सी में ग्रुप सी के मैच में आज स्कॉटलैंड ने 28 साल बाद हैती को 1-0 से हरा दिया है। मौसम विभाग ने अगले 2 से 3 दिनों में दक्षिण पश्चिमी मानसून के कर्नाटक, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और दक्षिण छत्तीसगढ़ के कुछ और हिस्सों में आगे बढ़ने का अनुमान व्यक्त किया है। और इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
2: श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे समाचार जो आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से रिले किए गए। ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। अब पुनः आपको सुनवाते ही विविध भारती के कार्यक्रम जो आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए जाएंगे।

0: मितुल जी, कभी पिता के साथ बैठकर बात करने का मौका मिला?
1: घर में तो हम लोग साथ में ही रहते थे ना, तो उसमें बातचीत तो रोज ही होती थी, और रोज बातचीत होने में जनरली मजाक भी बहुत करते थे।
0: अच्छा।
1: हाँ, उनको आप अगर देखें तो उनका जो स्वभाव था, खुलकर हंसते थे। हंसना उनका इतना खुलकर था, जो एक बच्चों की तरह हृदय जो साफ रहता है ना, वैसे ही इंसान ऐसे हंस सकता है। तो बैठ के बातचीत का तो बहुत मौका मिलता था, लेकिन जनरली बातचीत होती थी तो माँ के खिलाफ होती थी।
0: अच्छा।
1: आज तुम्हारी माँ ने जो दाल में हींग अच्छी नहीं डाली।
0: अच्छा। हाँ जी।
1: और माँ वहां पर खड़े होके सुनते हैं, तो बेटा आज का जो खाना था वो थोड़ा सा हींग ठीक नहीं थी, फिर मजाक में हर एक बात में, तो वो चीज माँ को बहुत मन में खटका देती थी।
0: अच्छा।
1: हाँ ठीक है, मतलब
0: हाँ।
1: वो भी मजाक में, लेकिन वो बोलते ठीक है, आज हींग ठीक नहीं हुई ना, ठीक है, तो अब तुम ना आप एक काम करिए कि आप मालवा से ही हींग मंगा लो। तो वैसी बातचीत बैठ बैठ के हंसी मजाक चलती थी। और काफी कुछ बातचीत तो काफी होती थी, जैसे घर में परिवार में होती है।
0: कभी प्रदीप जी ने आप बच्चों से पूछा हो भी पढ़ाई कैसी चल रही है, पढ़ने में कैसे हो, कुछ लिखते हो पढ़ते हो? मेरी तरह कुछ कविताएं लिखने की आदत है तुम लोगों में, क्या कभी ऐसा भी कहा उन्होंने?
1: नहीं, उन्होंने कहा कभी लिखना नहीं, जो जो करना हो दूसरा कुछ करो, लिखना और फिल्म इंडस्ट्री के बारे में मत सोचना, और लिखना कभी तो कभी नहीं बनना, ऐसा उन्होंने कहा कि भाई आपको ठीक है, मैं बहुत हो गया, अगर पैसे कमाने हैं तो इसमें मत पड़ा, कुछ और काम करना। तो फिर मैंने और कुछ काम किया, और तब भी उनको थोड़ा सा बुरा लगा था जब मैंने अपना काम शुरू किया, पेंटिंग करना, लोगों को सिखाना, ड्राइंग सिखाना।
0: तो उन्हें बुरा क्यों लगा?
1: हाँ, तो यही बात है कि उनको बुरा क्यों लगा। बोलते कवि प्रदीप की बेटी है और वो बाहर जाके पैसे कमाएगी।
0: अच्छा।
1: हाँ, तो वो उनको जैसे तब एक ट्रेडिशनल पिता उनके मन में जागृत हुआ
0: जी,
1: कि भाई ये काम आप क्यों करेंगी।
0: लेकिन तब तक आप भी बड़ी हो गई थी,
1: मैं
0: आपकी
1: तो
0: भी
1: बड़ी
0: अपनी
1: हो
0: एक
1: गई थी।
0: दुनिया बन चुकी थी, आपके भी अपने सपने थे, अपने शौक थे।
1: हाँ, तो तब माँ ने कहा कि नहीं, हमें तो उसको अपने पैरों पे खड़ा करना है, उसको अगर ये अच्छा लगता है और वो उसमें आगे बढ़ना चाहती है तो क्या हुआ। तो ये कोई थोड़ी कहेगा कि ये प्रदीप जी की बेटी है तो क्यों पैसे बाहर जाके कमाएगी। जाएगी बाहर जाके, मैं बहुत सारी डेमोन्स्ट्रेशंस देती थी कॉलेजेस में, स्कूल्स में। उसके बाद में उनको लगा कि नहीं नहीं ये तो अच्छा कर रही है, तो फिर कोई भी आएगा उनके पास तो उनको लेके आएंगे कि देखो मेरी बेटी का ड्राइंग, देखो देखो मेरी बेटी ने आज ये पेंटिंग बनाया,
0: भीतर
1: वो फिर
0: होता है,
1: गर्व
0: वो
1: महसूस करने
0: महसूस
1: लगे।
0: किया। मितुल जी, कहते हैं कि महाकवि निराला भी उनकी कविताओं और उनकी आवाज की प्रशंसक थे, क्या ये बात सच है?
1: बहुत सच है, क्योंकि निराला जी ने उनमें एक स्पार्क देखा, मतलब एक ऐसा कवि देखा जो बहुत सालों के बाद एक ऐसी भाषा यूज कर रहा था, और छायावाद वगैरह जो है, तो निराला जी ने वो सुना उनकी कविता और उन्होंने उनके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा कि ये नवीन कवि प्रदीप जो आगे चल के बहुत आगे बढ़ेगा, ऐसा।
0: जी। तो जैसा कि हम कह रहे हैं कि उन्होंने देशभक्ति गीतों को बहुत लिखा, बहुत बड़ी तादाद में उनके भजन हम देखते हैं, क्या कभी उन्होंने रोमांटिक गीत भी लिखे प्रदीप जी
1: हाँ,
0: ने?
1: रोमांटिक गीत भी अच्छे अच्छे लिखे हैं, और वो भी इतनी अच्छी भाषा में लिखे हैं
0: हाँ
1: कि कोई भी कहीं पर भी ऐसा नहीं लगता है कि ये कोई वल्गर बात आई। प्रेम की बात भी उन्होंने कितनी अच्छी की है
0: खूबसूरती
1: कि
0: के
1: मेरे
0: साथ,
1: जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, बोलो
0: बोलो
1: तुम
0: तुम
1: कौन
0: कौन
1: हो,
0: हो?
1: बोलो तुम
0: आहा,
1: कौन हो।
0: क्या बात है,
1: हाँ,
0: क्या बात
1: तो
0: है
1: मेरे जीवन में किरण बन के बिखरने वाले, कितना
0: जी।
1: सुंदर से उन्होंने संबोधन किया है प्रेमी को। या फिर दूसरा है कि ना जाने कहाँ हम थे, ना जाने कहाँ
0: तुम
1: तुम।
0: थे।
1: हाँ, तो ये भी बहुत सुंदर सुंदर है, और एक हल्का फुल्का

0: गाना भी है जो जगदीप के ऊपर फिल्माया गया था, ओ दिलदार बोलो एक बार
1: क्या मेरा
0: क्या
1: प्यार
0: मेरा
1: पसंद है
0: प्यार
1: तुम्हें
0: पसंद है। तो ये भी कितना सुंदर सुंदर से
1: बहुत
0: गीत है,
1: बहुत स्वीट।
0: और कभी भी कोई भी इसको गा सकता है,
1: हर पल के गीत है ये,
0: हर
1: हर
0: पल के। तो
1: मौके
0: ये
1: के गीत है।
0: रोमांटिक गाने भी उन्होंने
1: जी
0: लिखे,
1: जी
0: और ज्यादातर युगल गीत थे ये।

0: आपको एक बात बताना चाहती हूँ कि हम अभी रोमांटिक गाने उनके सुने भी सही और बात भी की हमने।
1: जी जी बिल्कुल।
0: उन्होंने कविता शुरू की थी रोमांटिक कविताओं से, और उसके बाद में जो है उनको देशभक्ति की कविता लिखने का मौका मिला और फिर उन्होंने उसी लाइन पे अपनी कविताएं लिखी। तो एक रोमांटिक उनकी कविता बहुत शुरू शुरू में थी और वो है, मेरे छंदों के बंद बंद में तुम हो प्रिय, तुम हो इन बरन बरन के बिहंगों का कल कूजन, क्यों बरबस हर लेता है जन जन का मन, मैं खोज रहा था इस मिठास का कारण, हंस दिए तभी तुम, हुआ रहस्योद्घाटन।
1: क्या बात है।
0: और तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम हो, मेरे छंदों के बंद बंद में प्रिय तुम
1: हो। क्या बात है।
0: तो ये
1: रुमानियत, रुमानियत गहरी गहरी
0: कितनी गहरी। तो मतलब ये है कि तुम मेरे काव्य स्वस्तिकों के कुमकुम, मतलब काव्य का जो स्वस्तिक है
1: उसके
0: कुमकुम हो।
1: बहुत सुंदर, जिस तरह से उपाधियां दी हैं वो बहुत ही खूबसूरत तरीके से प्रदीप जी ने।
0: ये भी उनकी एक कविता है जो रोमांस पे है
1: जी। और ये खासियत है कि इतना बड़ा कवि, जो कि जन जागृति जिन्होंने पैदा कर दी, जिन्होंने देश प्रेम लोगों के दिलों में पैदा कर दिया, वो कभी रोमानियत के उस माहौल में भी थे जहाँ रोमानी कविता उनकी कलम से निकली, रोमानी गीत निकले इतने शानदार तरीके से, जिन्हें हम आज भी गुनगुनाते हैं। तो हम बात करते हैं 1997 की, बहुत ही महत्वपूर्ण वर्ष था कवि प्रदीप जी के लिए, बताइए कैसे।
0: उनको 1998 में दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला, जो 1997 का दादा साहेब फाल्के गिना जाएगा
1: जी,
0: लेकिन जब मिला तो वो इसमें मिला 98 में
1: जी।
0: दादा साहेब फाल्के अवार्ड बहुत इम्पोर्टेंट है फिल्म इंडस्ट्री के लिए, लेकिन तब भी वहां के जो आयोजक थे वो थोड़े चिंतित थे।
1: किस बात पे?
0: क्योंकि प्रदीप जी ने बीच में ये बोल दिया था कि मैं कोई अवार्ड नहीं लूंगा
1: जी।
0: तो उन्होंने कहा कि हमको चिंता है कि हम तो आपको दे रहे हैं, लेकिन आप आएंगे कि नहीं आएंगे
1: जी।
0: फिर हम परिवार वालों ने उनसे बहुत विनती की कि नहीं बापू, आपके लिए नहीं, हमारे लिए आप ले लीजिए, क्योंकि ये हमारा भी गौरव बढ़ाएगा और आपको मिलेगा तो ये हमें अच्छा लगेगा। तब उनकी तबीयत ठीक नहीं थी
1: जी।
0: और उनको लगता था कि मैं उतने दिल्ली तक नहीं जा पाऊंगा। तो हम सब ने कहा कोशिश करेंगे, आपको अच्छे से ले जाएंगे, व्हील चेयर में ले जाएंगे। तो ये पहली बार हुआ कि स्टेज के ऊपर व्हील चेयर में लेकर के दादा साहेब फाल्के अवार्ड लेने के लिए कोई व्यक्ति को लेके गए, और आगे चल के प्रेसिडेंट आए। प्रेसिडेंट कभी भी आगे नहीं चलते हैं, वो वहीं खड़े रहते हैं।
1: बिल्कुल।
0: लेकिन जैसे ही उनकी व्हीलचेयर लेके हम अंदर गए तो आगे चल के प्रेसिडेंट आए देश के, और उन्होंने उनको सम्मानित किया। और पहली बार हुआ कि जब स्टेज पे वो गए तो दूर हटो ये दुनिया वालों, हिंदुस्तान हमारा है, पूरे उसमें गूंजा।
1: क्या बात है।
0: विज्ञान भवन में कार्यक्रम था, और वो कभी भी ऐसा नहीं होता है कि तब गाना बजाया जाता है, तो वो नियम को तोड़ा गया। उस स्टेज पे हम लेके गए उनको और वो गाना बजा, और आप नहीं मानेंगे उस वक्त भी खड़े खड़े खड़े लोग रोए हैं
1: जी।
0: और ये मुझे शत्रुघ्न सिन्हा जी ने भी बताया कि हम रोए। यश चोपड़ा जी वहाँ खड़े थे, वो बाद में दौड़ के आए कि प्रदीप जी आज आपने हमको भी रुला दिया
1: जी।
0: वो भी ऑडियंस में थे
1: जी। और कवि प्रदीप जी के चेहरे पर कहीं सुख और संतोष के चिन्ह नजर आए ना, कि वो संतुष्ट थे।
0: वो संतुष्ट थे और उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ तुम लोगों ने मुझे कहा, नहीं तो मैं इसको भी मना कर देता, लेकिन ये मेरी आखिरी जीवन की पड़ाव में ये मिलना मेरे लिए बहुत मेरा भाग्य है
1: जी। बिल्कुल। तो बताइए कौन सा गीत सुनना पसंद करेंगी आप?
0: जो भी आपके पास हो, अगर मेरे जीवन में किरण है तो वो करवा दीजिए।
1: चलिए सुनते हैं ये बेहद खूबसूरत,
0: बहुत सुंदर गीत है।

0: मितुल जी, जब बात चल रही है कवि प्रदीप जी की, तो कविता और लेखन तो खैर उनका मुख्य काम था जिसमें वो बह रहे थे, और कहें कि उन्होंने अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया, लेकिन इसके अलावा जब वो कविता नहीं लिखते थे, लेखन नहीं करते थे, तो क्या करते थे? उनके और क्या क्या शौक थे जो आपको समझ आए?
1: उनको गार्डनिंग का बहुत शौक था।
0: हाँ,
1: तो हमारे ऊपर टेरेस है, तो उस पे वो चले जाते थे और कई चीजें, जैसे उनको लगा कि ये पत्ते ठीक नहीं है, वो काटते थे। दो दो तीन तीन घंटे तक ऊपर गार्डन में अपना बिताते थे, और नीचे भी हमारे पास जितने भी आज बड़े बड़े ट्रीज हैं, वृक्ष हैं, आम के चार हैं, दो नारियल के हैं, जाम्बू, जाम्बू समझते हैं आप, सफेद वाले, जिसको आप क्या बोलते हैं पता नहीं, सफेद जाम्बून, हाँ, काले नहीं, सफेद
0: सफेद, हाँ हाँ,
1: खैर एनीवे, वाटर एप्पल ऐसे कुछ बोलते हैं, जो भी होगा, उसके जितने भी हमारे गार्डन में आज जो हमारे वृक्ष हैं, वो सब मेरे पिता ने लगाए हुए हैं।
0: क्या बात है।
1: जब हमारा घर बना, तब पूरा आसपास में ये बड़े बड़े वृक्ष आज खड़े हैं। तो गार्डनिंग का शौक, और वो जो देखते थे कि कहीं आम के पेड़ में कहीं कीड़े तो नहीं लग गए,
0: अच्छा,
1: तो वो उसको दवाई देना, ये करना, चाहे वो खुद ना दे, माली के पास करवाना। तो आज जो वृक्ष खड़े हैं वो मेरे पिता के कारण खड़े हैं।
0: क्या बात है।
1: और एक कड़ी पत्ता, उसका एक छोटा सा लाए थे वो प्लांट, और आज बहुत बड़ा हो गया है, और वो आज भी है उनका लगाया हुआ।
0: जी, उनकी याद दिलाता होगा।
1: हाँ, तो सभी मतलब वृक्ष जो है उनकी याद दिलाता है।
0: हाँ, तो जब हम आपसे बात कर रहे थे, आपने कहा कि आपका घर ऐतिहासिक है, और कवि प्रदीप जी ने बहुत ही शौक के साथ उस घर को बनाया, बहुत रुचि के साथ। तो बताइए ये क्या है, किस तरह से उन्होंने अपने मकान को बनाया, क्या किया?
1: मकान को उन्होंने खड़े होकर के एक एक ईंट को देख के, उनको जैसे लगवा रहे थे तो वह खड़े रहते थे, ये नहीं कि उनको उन्होंने दे दिया कि आर्किटेक्ट को कि आप बना लो, नहीं, रोज सवेरे से शाम खड़े रहते थे कि ये यहाँ गलत हो रहा है, ये गलत है, ऐसे करो, ये मजबूत चाहिए, सीमेंट। आज भी हमारी जितनी भी दीवारें हैं उसमें कील भी नहीं ठोक सकते आप।
0: अच्छा,
1: इतनी मजबूत है।
0: क्या बात है,
1: इतने सालों के बाद। तो उनका मतलब ये है, हमारे लिए तो ये बहुत बड़ा मंदिर है, घर नहीं है, मंदिर है।
0: मंदिर है जी, जो उन्होंने बहुत ही आत्मीयता के साथ
1: जी
0: उसको खड़ा किया।
1: हाँ
0: जी, मितुल जी, आज हमने इस कार्यक्रम में आपके पिता पर एक लंबी बातचीत की है। अब हम आपकी जिंदगी पर भी आते हैं। आपने ये तो बताया कि आपने लेखन को क्यों नहीं अपनाया, आपने कविता को क्यों नहीं अपनाया, लेकिन हम ये जानते हैं कि आप एक जानी मानी चित्रकार हैं, और चित्रों के प्रति एक आपकी जो रुचि है उसका भी उदाहरण देखने को मिलता है। तो ये रुचि आपके मन में कैसे आई, ये रुचि कैसे पैदा हुई, और किस तरह की आर्ट आप बनाती हैं, हमारे श्रोता ये जानना भी चाहेंगे। जैसा आपने कहा कि आप घर से निकली थी, पिता ने एक बार विरोध भी किया था, लेकिन जब उन्हें पता चला कि आप बहुत अच्छी कलाकार हैं, तो उन्हें आप पर गर्व भी महसूस हुआ।
1: ऐसा है कि मैं करीब 44 साल से पेंटिंग सिखाती हूँ।
0: जी
1: जी, और मेरा आर्ट सेंटर है तुलिका आर्ट सेंटर, जिसमें बहुत सारे लोग सीखने के लिए अभी भी आते हैं, और जब मैंने शुरू किया 1982 में, तब भी लोग बहुत सारे आते थे, आज तक आते हैं। कैसे शुरू हुआ?
0: जी,
1: मैं जब छोटी थी, 2-3 साल की या 4 साल की रही होंगी, मेरी माँ ने मेरे हाथ में कलम थमा दी कि ये लो, इस पे तुम स्वस्तिक ड्रॉ करो। एक कागज दिया और एक पेंसिल दी और कहा कि स्वस्तिक निकालो। तो वो पहली बार था कि जो छोटे बच्चे ने लाइन कर कर के स्वस्तिक ड्रॉ किया।
0: जी,
1: मेरी माँ खुद बहुत अच्छी कलाकार थी, बहुत बढ़िया, मतलब मैं कुछ भी नहीं हूँ उनके सामने, इतना ब्यूटीफुल उनका आर्ट था, इतना अच्छे अच्छे से वो ड्राइंग्स बनाती थी। उनमें से मुझ में आया
0: जी,
1: तो पिता का लिखना या गाना नहीं आया, लेकिन माँ का जो, माँ की कला है वो मुझ में आई, तो वो जीन्स में आया। तो वहाँ से शुरू हुआ। फिर हर रंगोली निकालना, हर एक दिवाली के दिन या कोई भी अच्छा शुभ दिन हो तो लो बेटा ये लो, हाथ में पाउडर दे दिया, अब मोर करो, ओम लिखो, श्री लिखो, माता के पैर बनाओ, माता की जो होते हैं ना, लक्ष्मी के,
0: नवरात्रा में मनाते हैं, दीपावली में,
1: दीपावली में, तो वो सबसे शुरुआत हुई मेरी। लेकिन जब मैं स्कूल में पढ़ती थी या कॉलेज में पढ़ती थी, तब मुझे उतना इंटरेस्ट नहीं रहा, मुझे कुछ और करना था। मुझे
0: ये तो आपने बचपन की बात बताई, जब माँ आपको ऐसा कहा करती थी।
1: लेकिन बीच में मेरा वो बिल्कुल चला गया कि मुझे कुछ करना है, ड्राइंग नहीं नहीं मुझे वो मज़ा नहीं आता है, मुझे लॉयर बनना है, मुझे ये बनना है, मुझे कुछ और कुछ करना है. तो पढ़ाई चलती रही, लेकिन उस बीच में मुझे ऐसा हुआ कि एक बहुत बड़ी कंपनी है जो कलर्स बनाती है, उनकी मालकिन मिली
0: जी.
1: बोलती आपका ड्राइंग तो बहुत अच्छा है, सुना है. मैंने बोला हाँ वो तो है. तो कहा कि क्यों नहीं आप सिखाते हो, हमारे 40 महिलाएं हैं उनको हम चाहते हैं कि आप थोड़ा सिखाइए, हमारी टीचर नहीं है. मैंने बोला मैं सिखा तो नहीं सकती हूँ. बोलती नहीं सिखा पाओगे, कोशिश तो करिए. और वो तब की बात है जब पिताजी ने विरोध किया, उन्होंने कहा 40 महिलाएं हैं आप देखिए कोशिश करिए सिखाइए. मैं बोला ठीक है कोशिश करते हैं. क्या करना था, कपड़े पे फैब्रिक पेंटिंग करना था, कपड़े के ऊपर पेंटिंग करना था. उन्होंने कहा ये रहा हमारे पास कलर्स हैं, हमारे पास तुलिका है, मतलब ब्रशेस हैं, आप आइए सिखाइए. कैसे सिखाना, हमने कोशिश की, सब खुश हो गए. मैं सक्सेसफुल हो गई सिखाने में.
0: जी, जी.
1: तो वो भी मेरे अनायास हुआ है, जैसे कहते हैं ना कि जो एक लिखा हुआ होता है आपके क्या कर्म है आपके कर्मों में, मतलब जो लिखा हुआ है डेस्टिनी में वही हुआ. जब मैं पैदा हुई थी तो ज्योतिष ने कहा था कि ये टीचर बनेगी.
0: अच्छा.
1: तो वो टीचर तो नहीं बनी स्कूल की, लेकिन मैं दूसरी टीचर बन
0: जी,
1: गई
0: जी.
1: तो वो पहली बार था, वो 40 महिलाएं खुश हो गई, वो जो कलर बनाने वाली कंपनी के वो लोग थे वो खुश हो गए, बहुत बढ़िया आपने बहुत अच्छा सिखाया. और हमारे पास लोग हैं उनको भी सिखाइए, हमारे वहां डेमोन्स्ट्रेशन दीजिए आप पेंटिंग के. तो ये ऐसे शुरू हो गया. तो मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मैंने लॉ भी कंप्लीट किया, मैंने ग्रेजुएशन भी किया, लेकिन साथ साथ में ये भी चलता रहा. तो उसमें से मुझे मेरी एक पूरी जिंदगी का पूरा ट्रेंड बदल गया,
0: मकसद मिल गया.
1: और सिखाने में जो आनंद है वो समझ में आया कि जब स्टूडेंट आपके साथ में खड़े होके खुश होके जाते हैं वो बात ही अलग है.
0: बिल्कुल.
1: तो जब गुरु बनते हैं ना तो गुरु की और शिष्य की जो परंपरा है वो एक आपको अलग ही माहौल में ले जाती है और आपका जीवन बदल जाता है.
0: सुख

0: तो कभी था।
1: मिथुल जी, तो हम ये समझ सकते हैं कि आपने अपनी जो आरंभिक शिक्षा थी वो अपनी माँ से ही ली, आपकी माँ ही आपकी गुरु रही।
2: जी जी, एकदम से माँ ही गुरु रही। मैं बताऊं कि जब तक थी तब तक हमको लगता था कि नहीं, वो हमसे ज्यादा ही अच्छा करती है। क्योंकि उनकी भी एक आखिरी बात बता दूं कि वो जब मेरे पिता चले गए 98 में, उसके बाद में उन्होंने जितना जीवन जिया, वो एक तो रेडियो सुनती थी और दूसरा उनका काम था ड्राइंग करना। जैसे ही वो फ्री हो जाती, हाथ में कलम और हाथ में कोई भी, जैसे पेपर आ गया कोई भी सफ़ेद रंग का, कोई भी हाथ में कलम लेके उसमें ड्राइंग करना शुरू कर दें। तो आज हमारे पास उनके हजारों ड्राइंग्स हैं।
1: अच्छा,
2: मेरे पिता के चले जाने के बाद और उनके चले जाने के बीच के उतने सारे उन्होंने ड्राइंग बनाए, पूरी रात दिन जब भी उनको समय मिला, कोई भी दूसरा सोचना नहीं, कुछ गलत सोचना नहीं, कोई दिमाग में टेंशन नहीं लेना, ड्राइंग करते।
1: तो आपके लिए एक बहुमूल्य चीज है वो, तो
2: बहुत बहुमूल्य चीज है, मेरे पास आज खजाना है।
1: बिल्कुल, आपने उस विधा को प्राप्त कर लिया जो हम कहीं सीख कर भी नहीं सीख पाते, है ना? वो गुरु ज्ञान उतनी शिद्दत और बारीकी से नहीं दे पाता कोई, जो आपने अपनी माँ से सीख लिया है। तो आज जब आप अपने बच्चे तैयार कर रही हैं, आपके यहाँ शिष्य आते हैं, आप उन्हें सिखा रही हैं, उनका भविष्य सुधार रही हैं, किस तरह की पेंटिंग सिखाती हैं बच्चों को आप?
2: वैसे मैं सभी कुछ सिखाती हूँ, क्योंकि ड्राइंग पेंटिंग में मंदाकिनी जी ऐसा है कि उसमें आकाश ही जिसका मतलब अंत है, उतना सारा
1: अनंत है,
2: अनंत है। आप क्या सिखाएं, जिसमें आप ड्राइंग सिखाएं, आप कलर सिखाएं, आप चारकोल सिखाएं, आप हाथ से मिट्टी के आप सामान सिखाइए, आप स्कल्पचर सिखाइए, वो सब हम सिखाते हैं और वो मैं सिखाती हूँ खुद भी और मेरे साथ मेरे दूसरे टीचर्स भी हैं। तो सिखाने का तो बहुत सारा है, लेकिन मैं खुद क्या अच्छा लगता है मुझे, तो मुझे ऑयल कलर्स अच्छे लगते हैं।
1: ऑयल पेंटिंग
2: जो ऑयल पेंटिंग का एक अलग सा रहता है और वाटर कलर अलग रहता है। तो पहले ऑयल पेंटिंग, दूसरा वाटर कलर। तो उसमें आपको बहुत स्वतंत्रता मिलती है, आप जो करना चाहो, तो वो स्वतंत्र जो होता है ना, वो अच्छा लगता है, कहीं पर आप बंधते नहीं हो। अगर आप स्कल्पचर बनाते हैं तो आप वहाँ बंध जाते हैं।
1: जी।
2: लेकिन कैनवास के ऊपर आप बंधते नहीं हो।
1: क्या गढ़ते हैं, क्या पेंट करते हैं, आपका अपनी कल्पना शक्ति पर,
2: वही तो वो कल्पना शक्ति उसमें बहुत ज्यादा स्वतंत्र है।
1: तो आपकी तो आर्ट गैलरी भी लगती है, कहाँ कहाँ आप जाती हैं अपनी पेंटिंग्स को लेकर, और अभी तक कितने सारी जो है आपने आर्ट?
2: आपको एक बात ये बताऊं कि मैं बहुत ज्यादा कमर्शियल काम नहीं करती हूँ।
1: अच्छा जी।
2: अगर मैं अपना एग्जीबिशन लगाती हूँ तो वो मैं बेचने के लिए नहीं लगाती हूँ, मैं सिर्फ डिस्प्ले के लिए लगाती हूँ, क्योंकि मुझे ये लगता है कि मैं खुद ही इसका मैं मूल्यांकन नहीं कर सकती हूँ कि मेरी पेंटिंग का मूल्य क्या होगा।
1: जी जी जी।
2: तो ज्यादातर मेरे जो भी जितने भी मेरे कला है मेरी वो है, तो मैं अपने लिए रखती हूँ, लोगों को डिस्प्ले के लिए मैं बनाते जाती हूँ, लेकिन मैं बेचती नहीं हूँ। तो जब भी मेरा एग्जीबिशन लगता है, कई जगह पे लगा, और हमारी खुद की आर्ट गैलरी बड़ी है जहाँ पर हम क्लासेस चलाते हैं, तो वहाँ पर भी हमारा बहुत अच्छा डिस्प्ले वगैरह रहता है, तो लोग आते हैं देखते हैं। अगर कोई ऑर्डर देना चाहे कि भाई आपका ये बहुत अच्छा है, तो हम स्टूडेंट्स के ऊपर उसको छोड़ते हैं कि जो स्टूडेंट्स बना के उनको देते हैं।
1: बहुत बड़ी बात, आपने अपनी कला

0: मतलब कमर्शियल रूप में नहीं देखा है,
1: नहीं,
0: अपनी कला को एक कलाकृति रहने दिया है।
1: क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं अपना मूल्य लगाऊंगी ना, तो हो सकता है कि मेरा काम थोड़ा कम हो जाएगा, मतलब मेरा जो व्याप
0: जो
1: है वो
0: हुनर
1: कम हो
0: है,
1: जाएगा,
0: हाँ
1: तो इसके लिए मैं उसका मूल्य नहीं करती
0: जी
1: हूँ,
0: जी
1: वो
0: जी
1: वैसे ही रहता है वहाँ पर।
0: जी
1: आप मेरे कभी आर्ट गैलरी में आएंगे देखने के
0: जी
1: लिए,
0: बिल्कुल
1: तो बहुत बड़े बड़े पेंटिंग्स लगे हुए होते हैं।
0: जी। तो पहले बताइए कौन सा गीत सुनना चाहेंगी आप?
1: सबसे अच्छा रहेगा ऊपर गगन विशाल नीचे गहरा पाताल, क्योंकि हम अभी व्याप की बात कर रहे हैं
0: जी
1: और
0: जी
1: आसमान की बात कर
0: बात
1: रहे
0: कर रहे
1: हैं।
0: हैं, तो चलिए सुनते हैं आपकी पसंद का ये बेहद ही खूबसूरत गीत।
1: जी।

0: वाह मितुल जी, गीत को सुनने के बाद तो क्या कहें, मतलब अचानक एक अलग सी फीलिंग्स आई है। बहुत ही शानदार गीत, बहुत ही गहरा गीत। तो मितुल जी, जब बात चल रही है आपकी पेंटिंग्स की, आपकी कलाकृति के बारे में, तो किस तरह की है ये कलाकृति, किस तरह की कला आप बच्चों को सिखा रही हैं या आप खुद कैनवास पर उतारती हैं इन कलाओं को?
1: मेरे पास जैसे अलग अलग विधा हैं, अलग अलग टाइप के मैं पेंटिंग सिखाती हूँ, लेकिन जैसे समय बदलता है तो उस हिसाब से हम एब्स्ट्रैक्ट आजकल बहुत चला है
0: जी।
1: लोगों के पास, जैसे मैंने कहा बहुत स्ट्रेसफुल लोगों की जीवन है, तो कहते हैं हमको 2 दिन में खत्म करना है तो क्या कर सकते हैं। तो एब्स्ट्रैक्ट एक ऐसी है कि जिसमें आप 2 दिन में अपना मन का जो पेंटिंग है वो पूरा कर सकते हैं।
0: अच्छा,
1: अगर आपके पास समय है तो आप अच्छा सा पोर्ट्रेट करिए। पोर्ट्रेट करने में समय लगता है, अगर समय लगेगा तो आपको उतना कंसंट्रेशन करना है, ये दिमाग के लिए बहुत जरूरी है और बच्चों को सिखाना जरूरी है कि आप कंसंट्रेट करिए, मन को शांत रखिए। तो उसके लिए पोर्ट्रेट है, चारकोल है, चारकोल एक ऐसा माध्यम है जो पाउडर है, वो पाउडर से आप पूरी कला को आप कैनवास पे उतारिए
0: जी।
1: तो ये एक है। और देवी देवताओं के जो पेंटिंग्स आजकल लोग बनाते हैं तो उसमें अलग अलग हीरे जवाहरात, मतलब आर्टिफिशियल, वो लगा के करते हैं तो उसको मिक्स मीडिया बोलते हैं।
0: ठीक है,
1: तो मिक्स मीडिया पेंटिंग भी मैं कराती हूँ, है ना। तो ये अलग अलग चीज़ें अलग अलग समय पे और अलग अलग, जैसे छोटे बच्चे हैं तो उनको अलग तरीके का करवाया, थोड़े बड़े हैं तो उनको अलग करवाया। बहुत बड़ी उम्र के लोग मेरे पास आते हैं, 80-80 साल की महिलाएं आती हैं सीखने के लिए।
0: अच्छा जी,
1: तो
0: वो
1: उन,
0: क्या सीखना पसंद करती हैं?
1: वो कैनवस पे पेंटिंग करना सीखना उनको बहुत अच्छा लगता है, कपड़े पे पेंटिंग करना। तो अभी मेरे पास 2 हैं वैसी जो 80 साल के ऊपर की हैं, तो वो लोग दोनों कपड़े पे स्कार्फ बनाती हैं और अपने बच्चों को, बच्चे को, बच्चों को, सबको गिफ्ट देती हैं। तो अपना बनाया हुआ किसी को देना तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बात है।
0: बिल्कुल,
1: ऐसा बहुत सारा जो अलग तरीके का, अलग टाइप के लोग हैं उनके लिए हम स्पेशली उनको समझाते हैं कि आप ये करिए।
0: मॉडर्न आर्ट है,
1: मॉडर्न आर्ट है,
0: इस तरह का, सभी तरह के। आप
1: मॉडर्न आर्ट भी बहुत चलता है, जैसे एब्स्ट्रैक्ट है वैसे मॉडर्न आर्ट। और बड़े बड़े कलाकारों की, जैसे बहुत बड़े मास्टर्स हो गए ना पुराने, वैन गॉग है या वैसे, उनके मास्टर्स की पेंटिंग हम सिखाते हैं कि देखिए उनका कैसा था और उनके ऊपर से आप इसको, आप अपना पेंटिंग बनाइए।
0: तो मितुल जी, हमारे देश में कहें या पूरे संसार में बड़े बड़े कलाकार हुए हैं, पेंटर हुए हैं, आप किनसे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं?
1: मेरी माँ से उनका जैसा कोई नहीं
0: बहुत सुंदर।

0: मितुल जी, आपने बताया कि आप इतने प्रकार की कलाएं जो हैं बच्चों को सिखाती हैं, जब इनसे आप फ्री होती हैं, अपनी पेंटिंग की दुनिया से आप अलग होती हैं, कला की दुनिया से अलग होती हैं, तो क्या करती हैं? इसके अलावा आपके और क्या क्या शौक हैं? हमारे श्रोता ये भी जानना चाहेंगे।
1: मेरे शौक में मैंने भी गार्डनिंग को अपना शौक बनाया, लेकिन सबसे बड़ा तो आपको आश्चर्य ये होगा कि मेरे पास बहुत सारी बिल्लियां, कुत्ते और खुले में रहने वाले बहुत सारे पंछी हैं।
0: अच्छा,
1: जो खुले में रहने वाले मतलब मेरे घर में बंद नहीं है,
0: हाँ हाँ,
1: लेकिन वो मेरे अपने हैं। जो कौवे हैं, पैरट्स हैं, तोते हैं, छोटी छोटी गिलहरियां हैं,
0: वो आपके घर के आजू बाजू रहती हैं
1: और रोज खाने के लिए आती हैं। तो बिल्लियां और कुत्ते तो घर में रहते हैं और ये सब पूरा माहौल जो है पूरा जैसे एक जंगल जैसा माहौल है। और मेरे पिता ने एक गीत लिखा था, बापू ने, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली। तो तेरे द्वार खड़ा भगवान में कोई छोटा अगर बच्चा भी आ गया बिल्ली का, तो ये तो नहीं पता हमको कि ये भगवान है कि नहीं है। हो सकता है छोटा रूप लेके आए हैं, हो सकता है कि वो एक कौवा बैठा हुआ है, वो भी एक भगवान का स्वरूप है, तो वो आपके पास पानी या खाना मांगने आया है। तो कभी भी किसी को निकालो मत घर से, भूखा मत भेजो। तो ये है तेरे द्वार खड़ा भगवान। तो ये सब भगवान है हमारे लिए।
0: तो कितनी बिल्लियां पाली हैं आपने और कितने कुत्ते पाल रखे हैं?
1: अभी तो 4 कुत्ते हैं और 40 बिल्लियां हैं।
0: क्या कह रही हैं?
1: हाँ जी,
0: 4 कुत्ते और 40 बिल्लियां, और कुत्ते बिल्ली साथ रहते हैं?
1: साथ रहते हैं और कुत्ते बिल्लियों से डरते हैं।
0: ये तो आप मजाक कर रही हैं।
1: नहीं नहीं नहीं, बहुत सही कह रही हूँ। हमारी बिल्लियाँ बहुत ही तेज है, तगड़ी है बड़ी, और कुत्तों को डराती हैं।
0: तो 40 बिल्लियों को आप कैसे पालती हैं?
1: बस वो हो जाता है, जैसे मैंने कहा कि सब भगवान के आशीर्वाद हैं, तो हो जाता है सब।
0: जी जी, जी। तो बहुत बहुत मतलब एक अद्भुत बात आप कह रहे हैं, और इतना आश्चर्य हो रहा है कि 40 बिल्लियां आपने पाल रखी है, वो आपके परिवार की सदस्य हो गई।
1: वो परिवार है और सबके नाम है।
0: जी, जैसे
1: जैसे जिंजर है, जैसे कालू है।
0: अच्छा,
1: है ना। जैसे ब्राउनी है,
0: हाँ,
1: ब्लैकी है,
0: उनको पता ही उनके नाम है।
1: हाँ, सिम्बा है, बहुत सारे हैं। अजीब अजीब नाम भी है, जैसे टिनटिन है तो दूसरा है चिनचिन। जैसे चुन चुन भी है। सो किटकैट भी है।
0: अच्छा, so, ये सभी बिल्ली आपका कहना मानती है?
1: हाँ, हाँ, मानती भी है और सामने गुस्सा भी करती है। क्या बहुत हो गया
0: जी। कभी ऐसा हुआ कि इन बिल्लियों ने गुस्से में आकर आपकी ही पेंटिंग को फाड़ दिया हो, खुरच दिया हो अपने नाखूनों से, और आपको बहुत गुस्सा आया हो इन पर?
1: ऐसा हाँ करते हैं कभी कभी, लेकिन गुस्सा नहीं करती हूँ मैं, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे बच्चे हैं।
0: क्या बात है, बहुत सुंदर। तो यानी कि आपके घर में एक भरा पूरा जंगल है?
1: पूरा पूरा जंगल है। और बहुत मेहरबानी है कि कभी कभी मैं चेयर पे बैठ सकती हूँ।
0: तो मितुल जी, आप कहें तो ये गीत हम आपको सुनवा दें, तेरे द्वार खड़ा भगवान।
1: जरूर सुनवाइए, जरूर।

0: अब हम बस चलते चलाते आपसे ये जानना चाहते हैं कि हमारे महान कवि प्रदीप जी की सुपुत्री मितुल जी और एक बहुत बड़ी कलाकार पेंटर मितुल वो
1: जी
0: क्या कहना चाहती है अपने श्रोताओं को अपने पिता के बारे में और अपने बारे में।
1: पिता के बारे में तो यही है कि बस उनके जो संदेश हैं उसको आप मन से सुनिए, आत्मसात कीजिए और देश को सबसे आगे रखिए। ऊंच नीच या कौन क्या है वो मत सोचिए और प्रेम से जिंदा रहिए एक दूसरे के साथ।
0: जी
1: और मैं ये कहना चाहूँगी कि कला एक ऐसा माध्यम है जो मैंने देखा है बहुत करीब से, उसको अगर आप अपने जीवन में लाएंगे तो जीवन की कई मुश्किलें, कई स्ट्रेस बहुत कम हो जाएंगे। तो कला को अपनाइए,
0: जी
1: चाहे कोई भी कला हो उसको अपनाइए।
0: जी बहुत खूब बहुत शानदार। मितुल जी आप स्टूडियो में आई हैं और आपने आज उजाले उनकी यादों के इस कार्यक्रम में अपने पिता कवि और गीतकार प्रदीप जी को याद किया, हमारे साथ उनके जिंदगी को साझा किया, उनकी बातों को उनके लेखन को साझा किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना अमूल्य वक्त विविध भारती के लिए निकाला, आपको हम तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं।
1: मैं आभारी हूँ विविध भारती। मैंने जैसे पहले ही कहा कि हमारी रग रग में बसा है
0: जी
1: और आपके साथ बात करके यहाँ सबसे मिलके बहुत खुशी हुई।
0: जी बहुत बहुत शुक्रिया एक बार फिर से विविध भारती में आने के लिए। और दोस्तों उजाले उनकी यादों की इस कार्यक्रम में आज हम बात कर रहे हैं।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।
1: तेरा जवाब नहीं,
0: छिड़ता है मोहब्बत का राग,
1: प्यार का राग सुनो रे।
0: बजता है छाया गीत विविध भारती से।
1: सदा रही है, सदा रहेगी।
0: तो सुनिए रोज रात 10 बजे छाया गीत सिर्फ विविध भारती पर।

श्रोताओं, अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के मुंबई केंद्र से रिले किए गए विविध भारती के कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102 मेगाहर्ट्ज पर ये आकाशवाणी का हाफलंग केंद्र है। स्टूडियो की घड़ी के अनुसार इस समय शाम के 5:02 हुए हैं। इसके साथ ही हम समाप्त करते हैं हमारे आज की पहली सभा को। दूसरी सभा में शाम के 6:00 आपसे पुनः भेंट होगी। तब तक के लिए मैं आपसे आज्ञा चाहती हूँ। नमस्कार।

0: जब नींद कहीं दूर भाग जाती है तब विविध भारती बन जाती है एकाकीपन की साथी।
1: एक तेरा साथ हमको दो जहां से प्यारा है।
0: विविध भारती से गूंजते हैं कुछ अनमोल नगमे।

नमस्कार। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में शाम के 6 बज चुके हैं। मैं हूं आपका दोस्त इमरान और मैं आप सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत करते हुए आरंभ करता हूं आज की दूसरी सभा। श्रोताओं, आइए अब आपको देते हैं जानकारी आज की दूसरी सभा के कार्यक्रमों के बारे में।

आरंभ करेंगे हम स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के साथ, जिसमें सबसे पहले हम आनंद लेंगे मार कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के तहत आज हम सुनेंगे कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार रहेंगे लालरेंग पुदाइते और उनके साथी, और इसका समय रहेगा 6:05। 6:25 पर हम आनंद लेंगे जेमी कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आज हम सुनेंगे कुछ लोकगीत हेली हुंगले कुआ में और उनके साथियों की आवाज़ों में। 6:45 का समय रहेगा संध्यार आंचलिक बातोरी का, जो रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से।

हम दे रहे थे जानकारी आपको आज के दूसरी सभा के कार्यक्रम के बारे में। आगे बढ़ते हैं, 7 बजे हम स्थानीय भाषाओं को जारी रखते हुए आरंभ करेंगे डिमासा कार्यक्रम। इस कार्यक्रम के तहत आप सुनेंगे कुछ आधुनिक गीत। गायक कलाकार रहेंगे प्रसन्नता हकचार और उनके साथी। 7 बजे आप आनंद लेंगे एक विशेष द्विभाषी कार्यक्रम श्रृंखला का, जिसका विषय रहेगा सशक्त भारत। 7:45 का समय रहेगा कुकी कार्यक्रम का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुनेंगे कुछ आधुनिक गीत जोलहुई चोंगलोई और उनके साथियों की आवाज़ों में। सुरो की रंगोली कार्यक्रम का आनंद आप लेंगे रात के 8 बजे। 8:30 पर आप सुनेंगे स्पोर्ट्स राउंड आउट का रिपीट ब्रॉडकास्ट। 8:45 पर समय रहेगा समाचार संध्या का, जो कि रिले किए जाएंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से। रात के 9 बजे आप आनंद लेंगे आपका पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम हेलो हाफलोंग, जिसे प्रस्तुत करेंगे दीप्ति भट्टाचार्य जी। और आज के हमारे दूसरी सभा के आखिरी कार्यक्रम का समय रहेगा 9:30 पर, जिस पर आप सुन पाएंगे चित्रगीत कार्यक्रम। श्रोताओं, ये थी जानकारी आज की हमारी दूसरी सभा में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों के बारे में। आइए अब हम आनंद लेते हैं स्थानीय भाषाओं के कार्यक्रमों के अंतर्गत मार कार्यक्रम का और सुनते हैं कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार है लालरेंग पुदाइते और उनके साथी।

इन्हीं गीतों के साथ हम यहीं पे समाप्त करते हैं मार गीतों का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत अभी आपने सुना कुछ भक्ति गीत। गायक कलाकार थे लालरियंग पुदाइते और उनके साथी। ये आकाशवाणी का हाफलोंग केंद्र है। श्रोताओं, चलिए अब हम आनंद लेते हैं जेमी कार्यक्रम का और सुनते हैं कुछ लोकगीत। गायक कलाकार रहेंगे हेली होंगले जेमी और उनके साथी।

इन्हीं गीतों के साथ यहीं पे समाप्त होता है जेमी लोकगीत का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे थे कुछ लोकगीत। गायक कलाकार थे हेली हुंगले कुआ में और उनके साथी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 102.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हाफ लॉन्ग केंद्र। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के गुवाहाटी केंद्र से संध्यार आंचलिक बातोरी।

इन्हीं गीतों के साथ यहीं पे समाप्त होता है डिमासा गीतों का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत अभी आपने सुना कुछ आधुनिक गीत। गायक कलाकार थे प्रसन्नता हकजार और उनके साथी। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है।

0: इसी प्रकार हम ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में हम नंबर ऑलमोस्ट 90-80 थे, अभी हम के 38 आ गए। पेटेंट्स में हम नंबर 6 है दुनिया में, जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, और उसमें से 55% ऐसे हैं जो रिजाइडिंग इंडियन है, ना बाहर जाके शोध करते थे। ये बच्चे वो हैं जिन्होंने यहीं शोध किया, यहीं पले बले और यहीं से उन्होंने पेटेंट फाइल किए, और यही कारण है कि आज विश्व हमें निगाह उठाकर देखता है, बड़ी तवक्को के साथ देखता है। अब वो नहीं रहा कि वी आर नॉट देयर टू बी लेड, द वर्ल्ड लुक्स अप टू अस टू लीड। तो ये एक बहुत बड़ा हमारा भी माइंडसेट बदला है और दुनिया का नजरिया बदला हमारे प्रति।
1: भारत टेक्नोलॉजी क्योंकि क्रिएटर बन रहा है, ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का आप कितना बड़ा योगदान मानते हैं, और तमाम क्षेत्र, चाहे हम क्वांटम की बात करें वो भी, और इसके अलावा रक्षा की हम बात कर रहे हैं वहां पर भी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में किस तरह से जो नई गति है वो देते हुए नजर आ रही है, अगर साइंस एंड टेक्नोलॉजी की बात करें तो?
0: नहीं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तो एक ऐसा टूल है
1: जी,
0: जो अभी इट्स नो लॉन्गर एन ऑप्शन, इट्स अ नेसेसिटी। ये तो इस्तेमाल में होगा ही, चाहे कोई भी क्षेत्र होगा, हेल्थ होगा, कम्युनिकेशन होगा, रिसर्च होगा, लेकिन वन हैज टू बी इंटेलिजेंट इनफ टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और हमने वो कई ऐसे प्रयोग किए हैं जहाँ हाइब्रिड मॉडल बड़े कामयाब साबित हुए, यानी जैसे हमारा सीपी ग्राम्स है, ग्रीवेंस रिट्रेसल, उसमें हम एआई के द्वारा चैटबॉट भी रखा है, एआई के द्वारा डिस्पोजल भी होता है, लेकिन डिस्पोजल के बाद शिकायतकर्ता से बातचीत वार्तालाप एक व्यक्ति करता है, उससे उसको थोड़ा सा सेटिस्फेक्शन लेवल होता है। इसी तरह से हमने टेलीमेडिसिन में भी कुछ प्रयोग किए हैं जहाँ हम एक फिजिकल डॉक्टर बिठाते हैं साथ में एआई डॉक्टर। एआई का लाभ ये है कि अगर आप चिकित्सा जगत को ले लें, या जीन्स की बात कर रहे थे, तो इतने सारे जीन्स को स्क्रीन करने में हमें कई दशक लग जाएंगे, यहाँ मिनटों में बात हो जाती है। ईज ऑफ वर्किंग बहुत ज्यादा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, और जो लैंग्वेज मॉडल्स हैं, चाहे लार्ज लैंग्वेज मॉडल, स्मॉल लैंग्वेज, उसका हमने इस्तेमाल किया है, एग्रीकल्चर के लिए अलग बनाए हैं, मौसम विभाग के लिए अलग मॉडल्स बनाए हैं, वो भी चूंकि मौसम विभाग भी मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उसमें हमने अब नव कास्ट का रखा है। नव कास्ट यानी आप घड़ी देख के 3 घंटे का प्लानिंग कर सकते हैं, अगर आपने कहीं मीटिंग पे जाना कि छतरी लेके जाएं कि ना जाएं, और हमने शुरू उसको किया जो ज्यादा रेन प्रोन एरियाज थे, जैसे मुंबई है, चेन्नई है। इसी प्रकार अब नव कास्ट के ही तर्ज पर स्काई कास्ट शुरू किया, जो फॉग डिटेक्शन कर सकता है, जो एयरक्राफ्ट है।

0: के लिए। तो हर क्षेत्र में इस तरह से टारगेट्स रखे गए कि हम दुनिया के दूसरे देशों की बराबरी कर सके। और इस वक्त अगर दुनिया में हिंदुस्तान की साख बड़ी है तो उसमें बहुत बड़ा योगदान भारत की टेक्नोलॉजी इनोवेशंस में तरक्की का है।
1: सर, ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से किस तरह से आप इसको देखते हैं और ग्रीन हाइड्रोजन की तरफ से क्या कदम उसकी ओर बढ़ाए जा रहे हैं?
0: ग्रीन हाइड्रोजन में भी हमारा मिशन है। इस सरकार ने 2023 में हमने नेशनल क्वांटम मिशन शुरू किया, 2024 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन, उसमें भी हमारे चार अलग अलग हैं, AI कंप्यूटिंग, AI डेटा, AI इनोवेशन सेंटर्स, AI फ्यूचर स्किलिंग, और इसी तरह से ग्रीन हाइड्रोजन भी लगभग उसी समय में लॉन्च हुआ है। ग्रीन हाइड्रोजन में हम धीरे धीरे तरक्की कर रहे हैं। हमने बजट में भी जो घोषणा की गई थी कि हमारे 5 स्मॉल रिएक्टर्स होंगे
1: जी,
0: तो स्मॉल और स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स टिल 2033, उनमें से हमारे 3 पर काम शुरू हो चुका है। 3 में से 1 है जो हाइड्रोजन के साथ जुड़ा है। हाइड्रोजन में हमें थोड़ी सी दिक्कत यह है कि उसको स्केल अप करने में, अगर फ्रैंकली स्पीकिंग, इलेक्ट्रोलाइजर्स वगैरह जो हमारे हैं उनका शायद अभी कैपेसिटी कम है, लेकिन धीरे धीरे जैसे हम स्केल अप करेंगे तो उसकी कीमत भी घटेगी और उसकी मात्रा भी बढ़ेगी, और ये सारा एक पूल बनेगा, हाइड्रोजन सोर्स, न्यूक्लियर सोर्स, रिन्यूएबल। और रिन्यूएबल में भी विंड सोर्स, सोलर सोर्स के हम नए नए एरियाज तलाश कर रहे हैं। जैसे हमने ओशन, क्योंकि डीप ओशन मिशन भी इसी सरकार ने शुरू किया, वहां पर एक और कंपोनेंट हमने ओशन एनर्जी का रखा है, यानी समुद्र के पानी के ऊपर, समुद्र के तट के ऊपर आप अगर सोलर शीट्स बिछा दे तो आपको रिन्यूएबल एनर्जी, समुद्र में चलती हुई तेज हवाओं का आप इस्तेमाल करें तो उसमें भी एनर्जी, समुद्र में जब नदी जाकर के तेज रफ्तार से जुड़ती है तो उसके बीच जो फ्रिक्शन पैदा होती है उससे भी एनर्जी, समुद्र में जब टाइड आता है खतरे का बायस तो ही है, लेकिन साथ में जैसे कहते हैं कि एवरी एडवर्सिटी इज अकंपनीड विद अ वर्चू, उससे भी बिजली याद होती है। तो समुन्दर से भी अलग अलग रिन्यूएबल एनर्जीज, और मुझे लगता है कि सन 2047 जो हमने कहा, वहाँ 100 गीगावाट तो न्यूक्लियर एनर्जी होगी जो लगभग 10-15% पूरे हमारी जरूरत का हिस्सा बनेगी, लगभग 60-70% हमारा न्यूक्लियर एनर्जी होगी।
1: बिल्कुल सर, हमें कोई फाइनल मैसेज 12 साल और उसके बाद जो लगातार साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काम हुआ है उसको लेकर दर्शकों तक?
0: मुझे लगता है कि 12 साल और इसके आगे हम कैसे जाएंगे, 2047 का हम लक्ष्य कैसे प्राप्त करेंगे, अक्सर चर्चा की जाती है लेकिन इसको साइंटिफिक ढंग से नहीं सोचा जाता
1: जी।
0: वो उन सेक्टर से जो पहले ना तलाशेंगे ना तराशेंगे, इधर अनएक्सप्लोर्ड और अंडर एक्सप्लोर्ड, जैसे हमारा ओशन है। भारत एक ऐसा देश है जिसका 11-12 हजार लंबा समुद्री तट है, 12-13 प्रदेश इसके तट पर बसते हैं, उसके अंदर संपत्ति ही संपत्ति है, माइंस, मिनरल, किसी ने नहीं देखा, अगर हम उसको तराश सके। हमारा दूसरा सरमाया हिमालयास, आज वहां से लेवेंडर निकल रहा है, पर्पल रेवोल्यूशन आया है, फ्लोरिकल्चर जो प्राण प्रतिष्ठा जब अयोध्या में हुआ तो उसमें जो ऑफरिंग की गई थी उसमें ट्यूलिप हमारे पालमपुर के इंस्टीट्यूट से आया, तो फ्लोरिकल्चर। तो ये जो सेक्टर्स थे जो पहले पूरी तरह स्पेस सेक्टर, जिनको पूरी तरह से एक्सप्लॉयट नहीं किया गया था, अगर हम इनको पूरी तरह से एक्सप्लोर करने में कामयाब हो गए तो मुझे लगता है हम 2047 से पहले ही उस स्तर पर पहुंच जाएंगे कि हम बड़े कॉन्फिडेंस के साथ 2047 का शताब्दी वर्ष मना सकें।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर, आप हमारे साथ यहाँ पर जुड़े इसमें और तमाम बातचीत हमसे यहाँ पर की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को लेकर। तो ये टेक्नोलॉजी को लेकर और जो नई नई तकनीकी जो चीजें निकल कर सामने आ रही हैं, बात चाहे क्वांटम एनर्जी को लेकर हो, टेक्नोलॉजी को लेकर हो, इसके अलावा जो हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में देख रहे हैं उसमें हो, तो ये सब कुछ दिखा रहा है कि किस तरह से भारत और ज्यादा प्रगति की ओर आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, और यही वो तस्वीर है जो भारत को और ज्यादा सशक्त करती हुई नजर आ रही है। नमस्कार।
2: 12 साल विश्वास के, विकास के, जन कल्याण के विशेष श्रृंखला के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के साथ विशेष साक्षात्कार। साक्षात्कार कर रहे थे गौरव श्रीवास्तव। ये कार्यक्रम हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन EIR और यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन EIR ऑफिशियल पर भी उपलब्ध है।
3: We now bring you an interview with Ashish Dhawan, founder and CEO of Convergence Foundation. The interviewer is Anil Padmanabhan, journalist.
4: On 26th May 2014, the National Democratic Alliance, led by Prime Minister Narendra Modi, took the oath of office. It marked the beginning of a new political chapter in India. What followed over the next 12 years was not just a change in government, but an attempt to reshape the Indian state, economy and society at a staggering scale. Bharat Reloaded, a special series to mark the 12th anniversary of the NDA, will look back at these momentous years through conversations with policymakers, economists, entrepreneurs and investors. It will take stock of a decade that sought to reimagine India. I am your host, Anil Padmanabhan.

इन्हीं गीतों के साथ यहीं पे समाप्त होता है कुकी गीतों का कार्यक्रम, जिसके अंतर्गत आप सुन रहे थे कुछ आधुनिक गीत। गायक कलाकार थे जोलहोई चोंगलोई और उनके साथी। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। आइए अब हम आरंभ करते हैं सुरों की रंगोली कार्यक्रम और आनंद लेते हैं हरिहरन के कुछ बेहतरीन गानों की।

इसी गीत के साथ यहीं पर समाप्त होता है सुरों की रंगोली कार्यक्रम। आज इस कार्यक्रम के अंतर्गत आप सुन रहे थे हरिहरन के कुछ बेहतरीन गाने। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम सुनते हैं स्पोर्ट्स राउंडअप की रिपीट ब्रॉडकास्ट।

0: नमस्कार दोस्तों, आकाशवाणी हाफलॉन्ग सुनने वाले सभी श्रोताओं को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी दोस्त जदित। श्रोताओं, हाल ही में हुए क्रिकेट टूर्नामेंट के चलते आज हम स्पोर्ट्स राउंडअप में इस टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग बोर्ड मेंबर से हुई बातचीत आपके लिए लेकर आए हैं। श्रोताओं, मैं आज आई हूँ दिमाहासाओ के एक बहुत खूबसूरत गांव मोलहोई में, और इस वक्त मैं मोलहोई के फील्ड में पहुंच गई हूँ कुछ यूथ से बातें करने के लिए। और यहाँ पे क्रिकेट टूर्नामेंट हो रहा है, तो चलिए इस क्रिकेट टूर्नामेंट के ऑर्गेनाइजिंग कमिटी मेंबर से ही बात कर लेते हैं। नमस्कार सर।
1: नमस्कार।
0: सबसे पहले आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए।
1: मैं भी ये हाफलॉन्ग का ही एक वासी हूँ, रजिस्टर्ड मोलहोई का ही हूँ मैं भी, लेकिन घर मेरा जो है वो हाफलॉन्ग टाउन पे रहता हूँ मैं। मेरा नाम डॉन लंगथसा है और मैं यहाँ का यूथ का एक मेंबर ही हूँ, इसलिए ऑर्गेनाइजिंग बोर्ड पे मैं भी काफ़ी पुराना खिलाड़ी हूँ, इसलिए मुझे भी बोर्ड पे रखा है इन लोगों ने, क्योंकि रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत होता है खेल में। हाँ, और जानने वाले को ही ऑर्गेनाइजिंग बोर्ड में रखना जरूरी होता
0: जी,
1: है।
0: जी जी जी। और आपका ऑर्गेनाइजेशन का नाम क्या है?
1: ये जो है हम लोग का चर्च का यूथ PYF बोल के है, प्रेसबिटेरियन यूथ फेलोशिप, उसकी तरफ से हमने फंडराइजिंग के लिए ही ऑर्गेनाइज किया है ये क्रिकेट टूर्नामेंट। सिर्फ फंडराइजिंग के लिए नहीं है, यहाँ के यूथ बहुत सारा है जो फुटबॉल की तरफ में बहुत रुचि रखता है, लेकिन क्रिकेट प्रेमी भी बहुत है, इसलिए क्रिकेट हमारे यहाँ पे टूर्नामेंट पहले तो बहुत ज़्यादा होता था, बीच में कम हो गया, इसलिए फिर से ये क्रिकेट टूर्नामेंट हमने शुरू किया है ताकि क्रिकेट लवर्स जो है उनको भी यहाँ रहने वाले जो भी है एक मौका मिलना चाहिए खेलने के लिए। क्यों, खेल के बहुत सारे लोग होता है जो यूथ भी हो जो गलत रास्ता में नहीं भटकता है, खेल की तरफ में अगर वो लोग ध्यान देता है तो दूसरी तरफ में वो लोग का माइंड डाइवर्ट नहीं होता है और फिजिकली उनके लिए भी बहुत ही अच्छा होता है।
0: और आप जो खेल रहे हैं इस टूर्नामेंट में, आप जो फील्ड में है, ये कौन से टीम के बीच है?
1: फिलहाल तो दिन में हम लोग 5-6 मैच होता है, लेकिन आज के लिए ये आखिरी मैच है। दो टीम, एक है हमारा मोलोई या कनान ऑटो एसोसिएशन की तरफ से, वो लोग ऑटो ड्राइवर्स जो है वो लोगों ने भी टीम दिया है, और एक है हमारा विल्सन क्रू बोल के है, वो PYF हाफलॉन्ग की तरफ से, उनका एक दोस्त था विल्सन बोल के, उसके याद में वो लोगों ने एक टीम ज्वाइन किया है वो लोग।
0: ओके, तो कितने टीम्स ने इस टूर्नामेंट में पार्टिसिपेट किया?
1: पार्टिसिपेंट्स तो बहुत ही था, ज़्यादा कम से कम हमारे यहाँ पे 40-50 टीम हमारे यहाँ ज्वाइन करने वाला था, लेकिन दिन हमारे इतना ज़्यादा नहीं था क्योंकि हमें भी कुछ लिमिटेशन होता है, उस तारीख के अंदर ही हमारे टूर्नामेंट को ख़त्म करना होता है, क्योंकि प्रोग्राम्स यूथ में भी बोलो या फील्ड भी हमारे यहाँ पे ज़्यादा नहीं है। तो क्रिकेट के बाद यहाँ पे हमने सुना है कि फुटसल कुछ ऑर्गेनाइजर्स वो लोग शायद ऑर्गेनाइज करेंगे, इसलिए हम शायद आने वाले 25-26 तारीख तक के ही हमको वो लोग फील्ड का परमिशन दिया है, लेकिन उन टीम बहुत सारा टीमों को हमने वापस भेज दिया है, अभी तो लगभग सिर्फ 36 टीम ही है हमारे यहाँ पे।
0: ओके, तो आप लोगों ने ये कब से ऑर्गेनाइज किया है?
1: ऑर्गेनाइजिंग तो हम लोग 16 तारीख से शुरू किया है यहाँ पे।
0: और कब तक चलेगा ये?
1: वही अभी हमारे यहाँ पे तो देखिए वेदर का भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल है। अगर बारिश हो जाता है तो खेल रोकना पड़ता है, तो अगर हम कहेंगे कि 25 तारीख तक हम अगर टूर्नामेंट करेंगे तो बारिश अगर बीच में हो गया तो उससे भी थोड़ा दूर जा सकता है, लेकिन अब तक का जिस तरह से मौसम है हमारे हिसाब से तो 25-26 तारीख तक को ख़त्म हो जाना चाहिए।
0: जी, बहुत अच्छा। और ये टूर्नामेंट हर साल किया जाता है?
1: अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन होता है करने वाला, जैसे कि हमारे PYF के अंदर ही है, 6 ग्रुप है, 6 ग्रुप के अंदर ही कोई ग्रुप होता है जो अपना फंडराइजिंग के लिए भी ये टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज करता है, या हमारे जो पड़ोसी है जो अलग कलेशिया है, डिनोमिनेशन अलग वाला लोग भी ऑर्गेनाइज करता है। इस बीच में हमारे हिसाब से अभी तक भी 3 टूर्नामेंट शायद हो चुका है इसको लेकर, आगे भी होने की संभावना है।
0: जी, जी।
1: क्रिकेट प्रेमी को देखकर हमको लगता है कि आगे भी
0: होना चाहिए,
1: ऑर्गेनाइज हो सकता है।
0: जी, तो आप सिर्फ ये क्रिकेट टूर्नामेंट ही ऑर्गेनाइज करते हैं या फिर दूसरा स्पोर्ट्स में भी?
1: नहीं, हम लोग अलग अलग स्पोर्ट्स में हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, फुटबॉल टूर्नामेंट भी करते हैं, बीच में हमारे यूथ के बीच में ही हम लोग बैडमिंटन भी ऑर्गेनाइज करता है, लेकिन हमारे यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत कम होने के कारण बैडमिंटन जो है वो स्पेशली इंदौर में खेला जाता है, लेकिन यहाँ पे तो हमारे पास कोई इंदौर स्टेडियम तो है नहीं है, और DSM एक इंदौर है वहाँ पे जाकर ऑर्गेनाइज करने के लिए कि फीस बहुत ही ज़्यादा हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे ओपनली हम लोग ऑर्गेनाइज करता है बैडमिंटन भी।
0: जी जी, तो आप लोगों ने ये ऑर्गेनाइज करने का कैसा सोचा, आइडिया कहाँ से आया?
1: आइडिया तो हमारे पास बहुत ही आगे से था ऑर्गेनाइज करने के लिए, क्योंकि देखो हमारे यूथ के अंदर भी हमें एक टारगेट फुलफिल करना होता है, तो उसी टारगेट को फुलफिल करने के लिए कोई गड्ढा खोदता है, कोई साफ सफाई करता है, कोई वेट मशीन लेके मार्केट में खड़ा हो जाता है, इसी तरह से हर तरह के काम हम लोग करता है। तो हमने बीच में सोचा कि क्यों ना हम लोग फंड राइजिंग भी हो जाए और यूथ जितना भी क्रिकेट प्रेमी हो उनके लिए भी एक प्लेटफॉर्म बन जाए टूर्नामेंट। उसी सोच के लेकर हमने यहाँ पे PYF के थ्रू से हमने ये क्रिकेट टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया है।
0: जी, आप लोगों ने बहुत ही अच्छा काम किया। और शुरुआत में कोई प्रॉब्लम हुई थी ऑर्गेनाइज करने में?
1: प्रॉब्लम एज इन हमारे यहाँ जो मैदान है, मैदान इतना अच्छा नहीं है, बारिश होने से क्या हो जाता है, मिट्टी ढल जाता है, तो उसी की वजह से हम लोग फील्ड को थोड़ा सा बड़ा करने के लिए कोशिश किया, JCB लाया, उसमें भी थोड़ा सा खर्चा हुआ, मतलब हमारे बस्ती के अंदर ही है, छोटा सा अगर फील्ड को हम लोग थोड़ा सा अच्छा कर देते थे तो हमारे जगह के लिए भी बहुत ही फायदेमंद होता है। उसी तरह हम अनुरोध करता है कि जितना भी यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज करते हैं या हम लोग को छोड़ के और कोई ऑर्गेनाइजेशन भी ऑर्गेनाइज करेंगे, वो लोग भी मैदान की तरफ में थोड़ा ध्यान देकर कुछ कुछ ठीक करने के लिए कोशिश करते रहने से तो शायद हमारे यहाँ पे अच्छा मैदान बन सकता है।
0: जी, बहुत अच्छा। और ये जो पार्टिसिपेंट्स है ये सिर्फ मोलहोई का ही है या फिर बाहर के भी आते हैं?
1: नहीं नहीं नहीं, हमारे हाफलोंग के अंदर से बहुत ही टीम है और माहूर साइड से भी आए हैं टीम। हमारे लास्ट टूर्नामेंट जो हुआ था उसमें हमारे असम पुलिस के भाई लोग और असम पुलिस बटालियन के थ्रू से भी उन लोगों ने ज्वाइन किया है लोअर हाफलोंग साइड से। इन एंड अराउंड हाफलोंग सर माहूर उस तरफ से बहुत ही टीम ज्वाइन किया है इस बार।
0: जी जी, बहुत अच्छा। तो यूथ का स्पोर्ट्स खेलना क्यों ज़रूरी है आपके हिसाब से?
1: देखो, यूथ का स्पोर्ट्स में क्यों रुचि रखना चाहिए, क्योंकि इससे शरीर के लिए भी बहुत ही अच्छा है, एक फिजिकल एक्सरसाइज भी हो जाता है और मेंटली आप लोग ऐसा क्यों कि बहुत सारा लोग आजकल देखो डिप्रेशन की वजह से कोई सुसाइड कर लेता है और कुछ फैमिली के प्रॉब्लम की वजह से कोई सुसाइड कर लेता है, ऐसा बहुत ही ज़्यादा हो चुका है सुसाइड केस हमारे हाफलोंग के अंदर में भी। इसी तरह अगर खेल में अगर रुचि रख के अगर खेल में अगर वो लोग कॉन्सेंट्रेट करेंगे तो क्या होगा कि माइंड भी डाइवर्ट करते रहेंगे और सोच विचार में भी बहुत ही मन हल्का हो जाता है खेल के बाद, और फिजिकली हमेशा एक्टिव रहता है आदमी, और बीमारी की तरफ में भी आप देखिए जितना जो लोग ज़्यादा खेलता है बीमार भी बहुत ही कम होता है, इसीलिए खेल को तरफ में ज़्यादा ध्यान देने से बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा दिमाग से, जितने यूथ लोग को रिक्वेस्ट करता है।
0: हाँ जी, ठीक है, बहुत ही अच्छा। और आप आखिरी सवाल हम पूछना चाहेंगे कि जो हमारे श्रोता है जो स्पोर्ट्स प्लेयर्स है उन लोगों के लिए कुछ एडवाइस देना चाहेंगे आप?
1: एडवाइस देखो, हम भी दिमाग साहब के नाम से बहुत बार खेल चुका है, अंडर 16 से लेके हम सीनियर क्रिकेट फुटबॉल तक भी खेला है और क्रिकेट फुटबॉल दोनों तरफ में हम ही एक ही बंदा है जो आज तक हमारे जो अभी प्रिंसिपल सेक्रेटरी है TT डेवलोकाफू उसका रिकॉर्ड ब्रेक कर सका। वो दिमाग साहब का अंडर 16 का फुटबॉल और क्रिकेट कैप्टन सिर्फ हम दोनों ही हैं आज तक के लिए। तो जितना भी हम स्पोर्ट्स लवर है दिमाग साहब का, हम उन लोगों को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि देखो स्पोर्ट्स बहुत ही बड़ा और अच्छा प्लेटफॉर्म है। आजकल पढ़ाई करने से आदमी शायद अच्छा नौकरी भी मिल सकता है, लेकिन पढ़ा सिर्फ लिखा होने से कुछ नहीं होता है। आप अगर स्पोर्ट्स में रुचि रखोगे, अगर स्पोर्ट्स के थ्रू से आप बहुत बड़ा बड़ा टूर्नामेंट अगर खेल लिया तो देखो बहुत ही ज़्यादा नौकरी है जो आसाम के अंदर में हम लोग अभी तक स्पोर्ट्स क्वाटा फुलफिल नहीं कर सकता है। बाहर से कोई दूसरा स्टेट से भी आके वो लोग स्पोर्ट्स क्वाटा के थ्रू से नौकरी मिलके चला जाता है, तो वो सब अपॉर्चुनिटी को हम लोग मिस नहीं करना चाहिए। ये ग्रासरूट लेवल से छोटा छोटा से अगर टूर्नामेंट आप ज्वाइन करेगा तो बड़ा बड़ा प्लेटफॉर्म वाला कोई टीम्स या कोई क्लब आपको देखेगा, तो आप उससे अगर उन लोग की नज़र पे आ गया तो वो टीम मिलेंगे आपको। अगर वहाँ से अच्छा खेल लिया डिस्ट्रिक्ट के थ्रू से तो क्रिकेट या फुटबॉल या हर प्लेटफॉर्म में आपको स्टेट्स की तरफ से कोई टूर्नामेंट होगा तो आपको ज्वाइन करने का मौका मिलेगा। वो सब सर्टिफिकेट्स के थ्रू से ही नौकरी मिलना बहुत ही आसान हो जाता है। जैसे कि मेरा छोटा भाई थॉम्सन लंगटसा, वो भी फुटबॉल खेल के अभी AG में नौकरी कर रहा है। वो जो नौकरी अभी जो फिलहाल जो नौकरी कर रहा है, अगर पढ़ाई करके ही अगर वो नौकरी अगर उसको मिलना होता तो शायद यूपीएससी लेवल का बहुत ही बड़ा एग्ज़ाम उसको क्रैक करना पड़ेगा। लेकिन स्पोर्ट्स के थ्रू से आप देखो इतना अच्छा पोस्ट स्पोर्ट्स खेल के आपको नौकरी मिल गया है, और यहाँ पे रिसेंटली जो मिंगलू बोल के बोरोमोल कोई में भी है वो भी देखो खेल के, वो भी सीएम हमारा सीएम श्री देवलाल गोडलसा जी के नज़र में आया, उसकी टीम में खेला, अच्छा खेलता है। तो खिलाड़ी को कोई जात पात नहीं होता है, आप अगर अच्छा खेलोगे तो किसी सबके नज़र में आओगे तो अच्छा टीम को हमें मौका मिलेगा और नौकरी भी आपको अच्छा मिल जाएगा। उसी तरह हमारे दिमाग के अंदर में स्पोर्ट्स के थ्रू से नौकरी मिलने वाला बहुत ही ज़्यादा है। तो जितने भी हमारा जितना भी सुनने वाला है उनको भी रिक्वेस्ट करता है कि फैमिली के थ्रू से भी आप सपोर्ट कीजिए अपने लड़कों को स्पोर्ट्स में खेलने के लिए, आप रुचि रखिए। अगर वो लोग स्पोर्ट्स के थ्रू से अगर कुछ नहीं होता उनसे भी फिजिकली आपके लिए एक्सरसाइज अच्छा हो जाता है, माइंड अच्छा रहेगा, हेल्थ अच्छा होगा तो हर तरफ से आप कमाई कर सकता है।
0: इसका मतलब है कि पढ़ाई के साथ साथ अपने टैलेंट्स को भी परख के उसके साथ,
1: हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल,
0: उसके साथ शोल्डर टू शोल्डर
1: चल सकता है।
0: बहुत बहुत शुक्रिया आपने अपना समय दिया।
1: थैंक यू।
0: तो आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर फ्यूचर।
1: थैंक यू वेरी मच।
0: इसके लिए तो श्रोताओं आज के लिए हमें यहाँ पे समेटना पड़ेगा। मिलते हैं अगली कड़ी में, सुनते रहिए आकाशवाणी हाफलॉन्ग। तो श्रोताओं आशा करते हैं कि आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। यूं ही देते रहे हमें ढेर सारा प्यार। फिर मिलते हैं स्पोर्ट्स राउंडअप के साथ। अब दीजिए मुझे इजाजत। नमस्कार।

0: श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे कुछ फिल्मी गीत। ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। अभी आप सुनेंगे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।
1: आकाशवाणी से समाचार संध्या के साथ मैं मुनीश शर्मा। मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलॉस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खास तौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले दशक में 9 अरब डॉलर से बढ़कर 45 अरब डॉलर होने की संभावना। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के इंजन में खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने फ्रांस के नीस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों पक्षों के बीच रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार के क्षेत्र में विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी बढ़ाने पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री मोदी के साथ राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिश्री और अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। राष्ट्रपति मैक्रों के साथ फ्रांस के यूरोप और विदेश मामलों के मंत्री जॉन नोएल बैरोट और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। दोनों नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों फ्रांस के नीस में इस समय शिष्टमंडल स्तर की वार्ता कर रहे हैं। दोनों पक्षों के बीच विशेष वैश्विक सामरिक भागीदारी को बढ़ाने पर खास तौर से चर्चा जारी है, जिसमें रक्षा, प्रौद्योगिकी और व्यापार शामिल हैं। दोनों ही नेताओं ने आज वॉक एंड टॉक सत्र के दौरान भी चर्चा की है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने आज नीस में भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। इसमें भारत में तेजी से बढ़ते नवाचार और स्टार्टअप परितंत्र को दर्शाया गया है। 3 दिन के इस आयोजन में भारतीय डीप टेक स्टार्टअप, नव प्रवर्तक, अनुसंधानकर्ता और वैश्विक निवेशक भी शामिल होंगे। इनमें 120 असाधारण स्टार्टअप, 20 से ज्यादा उत्कृष्टता केंद्र और 13 महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकी स्तंभ शामिल हैं। इसके अतिरिक्त इसमें दुनिया भर के 350 से ज्यादा निवेशक और पूंजीपति भी शामिल हो रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत इनोवेट्स भारतीय प्रतिभा और यूरोपीय पूंजी के बीच एक सेतु के रूप में उभर रहा है, जिससे युवा नव प्रवर्तनकारियों के लिए वैश्विक विशेषज्ञता से जुड़ने के नए अवसर पैदा हो रहे हैं।
2: आज भारत में एक स्टार्टअप रिवॉल्यूशन हो रहा है। इस रिवॉल्यूशन में भारत का नौजवान एक नए माइंडसेट के साथ मानवता के हित में समस्याओं के समाधान ढूंढ रहा है और हमारे नौजवानों के वर्ल्ड क्लास सॉल्यूशंस को ग्लोबल स्टेज पर लाने का माध्यम ही है भारत इनोवेट्स।
1: भारत और फ्रांस के संबंधों की मजबूती का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि व्यापार और रणनीतिक सहयोग कई देशों के बीच होता है, लेकिन कुछ ही संबंध साझा दृष्टिकोण और समान हितों से संचालित होते हैं। उन्होंने कहा कि नवाचार, प्रौद्योगिकी और भारत के युवाओं की आकांक्षाएं देश के विकास को गति दे रही हैं और भविष्य को भी आकार दे रही हैं।
2: भारत और फ्रांस का रिश्ता, इस रिश्ते में कनेक्शन भी है, कन्विक्शन भी है, इनोवेशन भी है, इंस्पिरेशन भी है, शेयर्ड वैल्यूज है, शेयर्ड विजन भी है। और इसी रिश्ते की नींव पर बीते वर्षों में हमने साथ मिलकर नई पहले शुरू की है और वैश्विक चुनौतियों के समाधान खोजने का भरसक प्रयास किया है।
1: इस अवसर पर फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नवाचार के वैश्विक केंद्र के रूप में भारत के उभरने की प्रशंसा की।
3: 140 करोड़ लोगों की शक्ति, प्रतिभा और ज्ञान का भंडार भारत हर वर्ष 10 लाख से अधिक अभियंता तैयार करता है। अनुसंधान, नवाचार और नई प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भारत आज विश्व को नई दिशा दे रहा है।
1: श्री मैक्रों ने भारत में बड़ी संख्या में इंजीनियरों की मौजूदगी की प्रशंसा की और चंद्रयान मिशन सहित भारत की अन्य असाधारण तकनीकी उपलब्धियों की भी प्रशंसा की। उन्होंने सबसे लंबे समय तक भारत का प्रधानमंत्री रहने के लिए श्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी। श्री पीयूष गोयल ने कहा कि वैश्विक भू राजनीतिक और तकनीकी परिवर्तन के दौर में भारत एक विश्वसनीय भागीदार के रूप में उभर रहा है।
4: The world seeks trusted and reliable partners.
5: भारत दुनिया के लिए एक भरोसेमंद साझेदार है। हमारे पास युवा शक्ति, उत्कृष्ट प्रतिभा और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा करने की अद्वितीय क्षमता है।
4: And a scale that few can match.
1: विदेश मंत्रालय इस समय संवाददाताओं को द्विपक्षीय बैठक में फैसले पर जानकारी दे रहा है।
6: जो भारत का परिप्रेक्ष्य है वो ये है कि ज्यादा से ज्यादा आगे जाते हुए, मेक इन इंडिया के कॉन्सेप्ट को आगे ले जाते हुए, हम को डेवलपमेंट, को डिजाइन, को प्रोडक्शन और को मैन्युफैक्चरिंग की दिशा में जाना चाहते हैं। और इसके चलते जितना जितना ज्यादा प्रोडक्शन, जितना ज्यादा डिजाइन, जितनी ज्यादा मैन्युफैक्चरिंग भारत में हो सके उतना अच्छा है और वो हमारी प्रेफरेंस रहेगी। तो आज की बातचीत में भी रफाल को छोड़ के और भी विषयों पे बातचीत हुई, लेकिन मैं कहूँगा एक तरह से जो अंडरलाइंग थीम था वो यही था कि जिस भी डिफेंस प्लेटफॉर्म की हम बात करें, इस एक बात को हमें बेसिस लेके आगे बढ़ना होगा कि
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। ये किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। दो दिन की इस यात्रा के दौरान श्री मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी से मुलाकात करेंगे और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीत्सो से ब्रातिस्लावा में वार्ता करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
7: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फ्रांस यात्रा के बाद आज रात स्लोवाकिया पहुंच रहे हैं। कल सुबह उनका औपचारिक स्वागत किया जाएगा। यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्लोवाकिया के राष्ट्रपति पीटर पेलेग्रिनी और प्रधानमंत्री रॉबर्ट फीको से मुलाकात करेंगे। स्लोवाक गणराज्य में भारतीय समुदाय भी प्रधानमंत्री की इस यात्रा को लेकर उत्साहित है। ये किसी भारतीय प्रधानमंत्री की स्लोवाकिया की पहली यात्रा है। स्लोवाकिया से एम पुलुरुथी की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं आकर्षिता सिंह।
1: ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं।

0: सुरक्षा स्कीम के टेलीलॉ न्याय बंधु कानूनी साक्षरता एवं जागरूकता कार्यक्रम से जुड़े कानूनी सहायता टेलीलॉ के टोल फ्री नंबर 144454 और वेबसाइट www.tele-law.in से प्राप्त की जा सकती है।
1: समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि भारत की अंतरिक्ष अर्थव्यवस्था अगले 10 सालों में 40 से 45 अरब डॉलर तक पहुंच सकती है। नई दिल्ली में संवाददाताओं से उन्होंने कहा कि यह वृद्धि नीतिगत सुधारों, बढ़ती निजी भागीदारी और तेजी से बढ़ रहे नवाचार परितंत्र को दर्शाती है। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
2: श्री जितेंद्र सिंह ने कहा है कि लोगों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की बढ़ती भागीदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शी सोच का परिणाम है, जिसके अंतर्गत विज्ञान आधारित पहलों को राष्ट्रीय विकास की मुख्य धारा से जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि स्वच्छ भारत, डिजिटल इंडिया, डिजिटल स्वास्थ्य, गहन समुद्र मिशन और गगनयान जैसी योजनाओं ने विज्ञान तथा नवाचार को भारत की विकास यात्रा के केंद्र में ला दिया है। चंद्रयान 3 जैसे अभियान ने अंतरिक्ष विज्ञान को जन जन की रुचि का बना दिया है। श्री सिंह ने कहा कि इन उपलब्धियों से स्वदेशी प्रौद्योगिकियों पर भरोसा बढ़ा है और भारत एक विश्वसनीय प्रौद्योगिकी साझेदार के रूप में उभरा है। सुपर्णा सैकिया की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से जया भारती।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 12 वर्ष में सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के सिद्धांत से देश में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। आकाशवाणी समाचार इस अवसर पर एक विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम नागरिकों के जीवन में सुगमता लाने के सरकार के कार्यों की जानकारी आपको देंगे।
3: पिछले 12 वर्षों में किए गए सुधारों ने देश में विश्वास की नई नींव रखी है। चाहे वह सुधार जीएसटी, फेसलेस टैक्स व्यवस्था या डिजिटल इंडिया से जुड़ा हो, हर पहल ने नागरिकों को यह एहसास कराया है कि वे भी राष्ट्र निर्माण में भागीदार हैं। केंद्रीय बजट 2025-26 में आयकर स्लैब और कर दरों में किए गए व्यापक बदलाव से सभी करदाताओं को लाभ मिला है। नई पीढ़ी के जीएसटी ने कर व्यवस्था को सरल बनाया है और लोगों का जीवन आसान किया है। कर ढांचा अब मुख्य रूप से 5% और 18% की दरों पर आधारित है, जिससे करदाताओं का दायरा और बढ़ा है। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में फिल्म निर्माता और वितरक समीर दीक्षित ने कहा कि जीएसटी नरेंद्र मोदी सरकार के सबसे बड़े नीतिगत फैसलों में से एक है।
4: जीएसटी को हमारे देश में लागू हुए अब 10 साल के आसपास हो गए हैं और हमने एक बहुत बड़ा इस दिशा में प्रगति की है। पहले 17 से ज्यादा टैक्स थे, एंट्री टैक्स, सर्विस टैक्स, वैट और उन सबको मिला के फिर अभी एक मेन जीएसटी बनाया है सरकार ने।
3: नरेंद्र मोदी सरकार ने शासन और नीतियों में तकनीक का व्यापक उपयोग किया है। भारत 6G तकनीक के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व की ओर तेजी से बढ़ रहा है। लक्ष्य है कि 6G से जुड़े वैश्विक पेटेंट में भारत की हिस्सेदारी लगभग 10% हो। आकाशवाणी समाचार से बातचीत में महेंद्र तिवारी ने कहा कि डिजिटल इंडिया दूर दराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों और समाज के अंतिम पायदान पर खड़े नागरिकों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला रहा है।
5: डिजिटल इंडिया इज नो मोर अ कॉन्सेप्ट।
6: डिजिटल इंडिया अब सिर्फ एक सोच नहीं रह गया है, बल्कि ये एक यात्रा है। हम हर दिन आगे बढ़ रहे हैं और दुनिया को ये साबित कर रहे हैं कि भारत को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। डिजिटल हाईवे किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होते हैं, खासकर हमारे जैसे देशों के लिए।
3: पिछले 12 वर्षों में नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के विकास के सपनों को बड़े पैमाने पर साकार करने का प्रयास किया है और लोक कल्याणकारी योजनाओं का लाभ हर व्यक्ति तक पहुंचाने पर जोर दिया है। ईज ऑफ लिविंग अब केवल एक नारा नहीं बल्कि सरकार के कामकाज का मूल मंत्र बन चुका है। सुपर्णा सैकिया के साथ आनंद कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
1: महाराष्ट्र के सोलापुर जिले में आज दोपहर एक पिकअप वाहन दुर्घटना में बच्चों सहित 8 श्रद्धालुओं की मौत हो गई। यह हादसा मालचिरस तालुका में महासवाड़ा पंढरपुर मार्ग पर तालुवांडी के पास हुआ। श्रद्धालु सिद्धनाथ मंदिर में पूजा अर्चना कर लौट रहे थे, इस दौरान चालक के नियंत्रण खोने से वाहन कुएं में गिर गया। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मृतकों के परिवारों को 5-5 लाख रूपये की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है। ओमान स्थित भारतीय दूतावास ने बताया है कि ओमान के तट के पास भारतीय ध्वज वाली नौका विराट 1 का इंजन खराब होने से वो डूब गई। इस पर 14 भारतीय सवार थे, जिनमें से 11 भारतीयों को बचा लिया गया है, जबकि 3 अन्य को बचाने के प्रयास जारी हैं। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने मेडिकल के स्नातक पाठ्यक्रम में दाखिले के लिए दोबारा हो रही परीक्षा के प्रवेश पत्र जारी कर दिए हैं। इन्हें एनटीए की वेबसाइट neet.nta.nic.in से डाउनलोड किया जा सकता है। ये परीक्षा 21 जून को दोपहर 2 बजे से होगी। ब्रिटेन के बर्मिंघम में महिला T20 क्रिकेट विश्व कप में भारत ने पाकिस्तान को 171 रन का लक्ष्य दिया है। स्मृति मंधाना ने 68 रन की पारी खेली। कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 36 और ऋचा घोष ने बनाए 34 रन। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग कल रात 9:30 बजे पब्लिक स्पीक कार्यक्रम में रोगों से बचाव और स्वस्थ जीवन के लिए योग के लाभ विषय पर एक परिचर्चा प्रसारित करेगा। योग विशेषज्ञ अनीता कौशिक और कमल किशोर परिचर्चा में भाग लेंगे। और अंत में सुनिए इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने नीस के ऐतिहासिक विला कैरिलोस में शिष्टमंडल स्तर की वार्ता की। दोनों देशों के बीच प्रमुख क्षेत्रों में विशेष वैश्विक रणनीतिक साझेदारी के विस्तार पर खासतौर से चर्चा। दोनों नेताओं ने भारत इनोवेट्स कार्यक्रम का संयुक्त रूप से उद्घाटन किया। महाराष्ट्र के सोलापुर में एक वाहन के कुएं में गिरने से 8 श्रद्धालुओं की मौत। ओमान तट के पास एक जहाज के

0: जिनमें खराबी आने के बाद भारतीय चालक दल के सभी 14 सदस्यों को बचाया गया और भारत ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में आईसीसी महिला टी20 क्रिकेट विश्व कप के ग्रुप मैच में पाकिस्तान को दिया 171 रन का लक्ष्य। इसके साथ ही समाचार संध्या का अंक समाप्त हुआ। नमस्कार,
1: गुड इवनिंग। दिस
2: अभी आप सुन रहे थे आकाशवाणी के दिल्ली केंद्र से समाचार संध्या।
3: आपके गीत दोस्तों, FM 100.2 MHz पर आकाशवाणी हाफलॉन्ग आपके लिए पेश करता है आपका प्यारा प्रोग्राम आपके गीत, हर मंगलवार रात के 9 बजे यानी कि एवरी ट्यूसडे एट 9 PM। इस प्रोग्राम में हम आपको सुनवाते हैं आप ही के रिक्वेस्ट सॉन्ग। दोस्तों, आप अपनी पसंद का कोई भी हिंदी फिल्म सॉन्ग सुनना चाहें तो हमें SMS या फिर WhatsApp के जरिए अपना रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। SMS या फिर WhatsApp करने के लिए उठाइए अपना मोबाइल फोन, टाइप कीजिए गाने के बोल, फिल्म का नाम, साथ ही अपना और अपने दोस्तों का नाम और मैसेज को भेज दें इस नंबर पर 9435700596। अपना पता जरूर लिखें, हमें आपके रिक्वेस्ट का रहेगा बेसब्री से इंतजार।
2: फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 MHz पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। आइए अब हम आनंद लेते हैं आपका पसंदीदा फोन इन कार्यक्रम का, जो है हेलो हाफलॉन्ग, जिसके प्रस्तुत करता है दीप्ति भट्टाचार्य जी।

0: दोस्तों आज दिन है रविवार और रात के 9 बज चुके हैं, यानी कि आप सभी का मनपसंद फरमाइशी फिल्मी गीतों का फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलंग सुनने का वक्त हो रहा है। और आज का इस कार्यक्रम को लेकर हाजिर हुई हूँ मैं दीप्ति। तो चलिए बिना वक्त गवाते हुए लेते हैं आज का पहला कॉल। हेलो हाफलोंग।
1: हाँ दत्ता जी नमस्ते।
0: नमस्ते,
1: बहुत समय में लगा रहा हूँ फोन, अभी लगा हूँ मुश्किल से।
0: जी जी जी, कैसे हैं आप?
1: सब बढ़िया जी, आप लोग हाफलोंग रेडियो आरजे मान लोग आरजे भैया लोग कैसे हैं सब?
0: हमारे यहाँ भी सब ठीक है। आज आप कौन से गीत चुने हैं सुनने के लिए?
1: सुहास फिल्म का मैं तो बेघर हूँ अपने घर ले चलो। दीदी मैं तीर्थ यात्रा काम करता हूँ, ये 3 तारीख से आया हूँ चारों धाम से, तो उसके बाद फिर प्रोग्राम बना रहा हूँ। सितंबर में गया मथुरा वृंदावन के साथ में, उसके बाद बद्रीनाथ जी बनाया साथ में, और हो सकेगा देखो जुलाई के बाद शिवर बागेश्वर फिर प्रोग्राम बनाऊंगा।
0: जी अपना यात्रा आपका हमेशा शुभ रहे, आप हमेशा सेफ रहे, इस शुभकामना के साथ आपको हम जरूर सुनवाएंगे। आपका पसंद का ये गीत जरूर सुनिए।

0: हेलो हाफलोंग।
1: हाँ जी नमस्ते
0: नमस्ते
1: जी। योगेश जांगड़े पे मैं तरह छत्तीसगढ़ से।
0: जी, बताइए कैसे हैं आप?
1: बढ़िया है, अच्छे हैं।
0: कौन सा गाना सुनवाए आपको?
1: दिल तो पागल है, कब तक चुप बैठे, अब तो कुछ है बोलना।
0: जरूर सुनिए आपका पसंद का ये गीत।

0: हेलो हाफलोंग।
1: जी नमस्कार
0: नमस्कार
1: जी, मैं राजू कुमार मुजफ्फरपुर से बोल रहा हूँ। मैं यहाँ
0: जी। तो मुजफ्फरपुर में अब मौसम कैसा है?
1: तो गर्मी अभी करीब ज्यादा ही है, 4 डिग्री तापमान अभी है और धूप खिली हुई है, एकदम गुमसुम मौसम बना हुआ है।
0: जी।
1: आज की फिल्म है लहू के दो रंग, उसमें तो कोई भी गीत मैडम सुनवा दीजिएगा, क्या सभी गाने अच्छे हैं?
0: तो जरूर सुनिए, आपका पसंद का ये गीत हम आपको जरूर सुनवाएंगे। आपने कॉल किया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: हेलो हाफलोंग,
1: हाँ जी, नमस्कार मैडम।
0: नमस्कार।
1: मैडम जी, लोकेंद्र वर्मा बोल रहा हूँ, नानाखेड़ा बस स्टैंड, उज्जैन, मध्य प्रदेश से।
0: जी बताइए।
1: बस मैडम जी, मस्त रहते हैं, स्वस्थ रहते हैं, आपके आकाशवाणी हेलो हाफलोंग को मोबाइल ऐप के माध्यम से सुनते हैं।
0: जी, स्वस्थ और मस्त रहना जिंदगी में बहुत जरूरी है, और आप ये दोनों ही रहते हैं, इससे ज्यादा खुशखबरी और क्या हो सकता है? बताइए, आज आप कौन सी गाना सुनना पसंद करेंगे?
1: हाँ मैडम जी, थोड़ा पुराना फीलिंग का सुनता हूँ मैं तो, क्योंकि पुराना गीत अच्छा रहता है,
0: जी बताइए।
1: इसका संगीत भी बहुत अच्छा रहता है। ऐसा पुराना गीत है, फिल्म का नाम है रखवाला। इसमें एक गाना है, मेरे दिल ने जो मांगा मिल गया, मैंने जो कुछ भी चाहा मिल गया।
0: जी आप जरूर सुनिए आपका पसंद का ये गीत।

0: हेलो हाफलोंग,
1: नमस्कार मैम,
0: नमस्कार।
1: मैं रमेश प्रजापति, ग्राम माया, तहसील रहती, जिला सीहोर, एमपी से बोल रहा हूँ मैम। मेरे को कुछ गाना सुनना था। ये
0: जी बताइए, कौन सा गाना पसंद कर रहे हैं?
1: प्रेम कहानी है, फिल्म का नाम
0: जी।
1: प्रेम।

0: हेलो हाफलोंग,
1: हेलो आप लोग।
0: नमस्कार
1: नमस्कार जी, मैं गणेश सोसाइटी खंभात से गुजरात से बात कर रहा हूँ।
0: जी। बताइए कैसे हैं आप और आपके आसपास के हलचल कैसे हैं।
1: अभी तो यहाँ पर गर्मी पड़ रही है और बारिश की राह देख रहे हैं अभी हम जी। अभी हमारा एक रेडियो श्रोता मित्र का ग्रुप है, उसमें आपका नंबर मिला। जो हमारे वरिष्ठ श्रोता मित्र है धीरज भाई रबारी की ओर से हमको जानकारी मिलती रहती है
0: जी
1: जी, उन्होंने हमारे नंबर भेजा तो हमने ट्राई किया और फोन लग गया हमारा कार्यक्रम
0: जी
1: में। हाँ
0: तो बताइए आप कौन
1: जी,
0: से फरमाइश लेकर आए हैं आज।
1: फिल्म कयामत से कयामत तक का गीत सुनेंगे। गीत के शब्द है, ए मेरे हम सफर एक जरा इंतजार। सुनाएंगे तो बहुत ही खुशी होगी हमको।
0: सुनिए आपका पसंद का ये गीत। आपने कल किया, आपको धन्यवाद।

0: हेलो हाफलोंग
1: जी नमस्ते। मैं चौधरी सुनाई से ढाकन मुंडा बोल रहा हूँ।
0: जी, बताइए आपका फरमाश कौन से गीत के लिए है?
1: फिल्म का नाम है फूल और अंगार। इसमें गाना है चोरी चोरी दिल तेरा चुराएंगे।
0: शुक्रिया आपको, आपने कॉल किया। जरूर सुनिएगा आपका पसंद का ये गीत।

0: हेलो हाफलोंग,
1: नमस्कार बहन जी।
0: नमस्कार।
1: मैं बस स्टैंड मानसा पंजाब से जगदीश राय गर्ग बोल रहा हूँ जी।
0: जी बताइए अपने जगह के बारे में कुछ।
1: यहाँ पंजाब में आजकल बेहद गर्मी पड़ रही है,
0: जी
1: घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। तो
0: जी
1: बस सुबह 10 बजे तक कोई काम है तो कर लेते हैं, नहीं तो फिर उसके बाद शाम के 5-6 बजे के बाद निकल पाते हैं।
0: जी जी तो बताइए आज आपको से गीत सुनने के लिए कॉल क्या है, फरमाइश क्या है आपका।
1: बहन जी आज है विश्व नेत्रदान दिवस, तो
0: जी
1: ऐसा ही एक गीत है आंखों का ही, वो मैं सुनना चाहूंगा। फिल्म है जी धनवान, और लता जी और सुरेश वाडेकर जी की आवाज में ये गीत है, जिसकी दो लाइनें मैं गुनगुना के बताना चाहूंगा जी।
0: जी बिल्कुल गुनगुनाइए।
1: जी आंखें देख कर हम सारी दुनिया भूल जाते हैं, जी आंखें देख

0: हेलो हफलोंग,
1: नमस्ते मैम। हाँ,
0: नमस्ते।
1: मैं जिला बालोद्रा राजस्थान से मोहन लाल प्रजापत खमागणी। फिल्म का नाम है बेटी बेटे। आवाज है मोहम्मद रफी और सुमन कल्याणपुर के। बोल है कि तेरी जलवा नुमाइंदा होती।
0: जी
1: और आज 3 महीने हो गए, आज बहुत दिनों के बाद से याद आई, मैं आज हफलोंग पर कॉल किया जाए।
0: जी 3 महीने के बाद आपने कल किया और आकाशवाणी हाफलोंग कार्यक्रम को आप सुनते हैं।
1: फरमाइशी प्रोग्राम में मैं सुनता रहता हूँ।
0: जी जी
1: फरमाइशी प्रोग्राम बहुत अच्छे लगते हैं और मैं मॉर्निंग, ईमेल और व्हाट्सएप आदि जितने भी प्रोग्राम है हर आकाशवाणी से सुनता रहता हूँ।
0: जी बिल्कुल, आप जरूर सुनिएगा। आपका पसंद का ये गीत, आपको बहुत बहुत धन्यवाद।

0: में थोड़ा जिला वारकमान बीच से।
1: तो कैसे हैं आप?
0: बहुत बढ़िया है मैम, और इधर तो अभी भीषण गर्मी है और गर्मी के नाम से घर से निकलना बहुत मुश्किल हो गया है मैम।
1: जी जी, तो बताइए कौन सा गाना आज सुनने के लिए चुने हैं?
0: एक गाना है मैम, बहुत ही सुपर हिट गाना है, यशुदास की सबसे बड़ी आवाज में है मैम। फिल्म का नाम है अय्यास और गाने की बोल है, बीती हुई रात की सुहानी है कहानी ये सुबह।

गीत के साथ ही इस सप्ताह का हेलो हाफलोंग कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। हम इस कार्यक्रम को लेकर फिर लौटेंगे अगले सप्ताह इसी समय और ढेर सारे फोन कॉल्स और फरमाइशों के साथ। श्रोताओं, अगर आप भी फोन कॉल्स के माध्यम से अपना फरमाइशी फिल्मी गीतों को सुनना चाहते हैं तो हमें कॉल कीजिए हमारे इस नंबर पर। नंबर है 9435700596। आप अपना पसंद का गाना अपने दोस्त और रिश्तेदारों को भी डेडिकेट कर सकते हैं इस कॉल के जरिए। हमें कॉल करने का वक्त रहेगा हर बुधवार दोपहर 1 बजे से लेकर 2 बजे तक। दोस्तों, आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल का नाम है आकाशवाणी हाफलोंग और हमारे फेसबुक पेज है ऑल इंडिया रेडियो हाफलोंग। आज के लिए मुझे यानी कि आपके सखी दीप्ति को दीजिए इजाजत। अगले हफ्ते आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।

0: श्रोताओं, आप सुन रहे थे हेलो हाफलोंग, जिसके प्रस्तुतकर्ता थे दीप्ति भट्टाचार्य जी।
1: हेलो हाफलोंग, आप सभी श्रोताओं के लिए आकाशवाणी हाफलोंग पेश करता है बहुत ही खास फोन इन प्रोग्राम हेलो हाफलोंग,
2: हर शनिवार और रविवार को रात के 9 बजे, यानी कि एवरी सैटरडे एंड संडे एट 9 PM।
1: इस प्रोग्राम में हम आपसे बातें करते हैं और आपको आपका फेवरेट हिंदी फिल्म सॉन्ग भी सुनवाते हैं, और एक खास बात, आप अपना पसंदीदा गाना किसी को डेडिकेट भी कर सकते हैं। दोस्तों, कॉल करने के लिए नोट कीजिए हमारा नंबर है 9435700596। कॉल करने का समय है हर बुधवार को दिन के 1 बजे से लेकर 2 बजे के बीच, यानी कि एवरी वेडनेसडे बिटवीन 1 to 2 PM ओनली। आपके कॉल्स का हमें रहता है बेसब्री से इंतजार। दोस्तों, कॉल जरूर कीजिए और सुनते रहिए आपका फेवरेट प्रोग्राम हेलो हाफलोंग।

0: ये कस्टमर केयर कहाँ है? हाँ मैडम
1: जी,
0: ये केवाईसी अपडेट के लिए मुझे बार बार मैसेज क्यों आ रहा है?
1: क्योंकि बैंकिंग सेवाओं के लिए निर्धारित समय पर केवाईसी अपडेट करवाना चाहिए।
0: पर ये होगा कैसे?
1: अगर पहचान या पते में कोई बदलाव नहीं है तो अपने बैंक या एटीएम या बिजनेस करेस्पोंडेंट यानी बीसी के पास जाएं, या बैंक में रजिस्टर्ड ईमेल या मोबाइल नंबर या मोबाइल बैंकिंग ऐप या पत्र द्वारा उसका डिक्लेरेशन दें।
0: अच्छा, और अगर कोई बदलाव हो तो?
1: तो ऐसे में पहचान और पते का नवीनतम प्रमाण देकर केवाईसी अपडेट करवा सकते हैं।
0: बस
1: बस
0: समझ गया।
1: अपना केवाईसी अपडेट कराने के लिए अपने नजदीकी ग्राम पंचायत के कैंप या बैंक शाखा में जाएं।
2: आरबीआई कहता है,
3: जानकार बनिए, सतर्क रहिए।
4: ये आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र है। श्रोताओं, आइए अब हम आरंभ करते हैं चित्रगीत कार्यक्रम, और इस कार्यक्रम के तहत हम सुनेंगे कुछ चुनिंदा बेहतरीन गीत। अब सबसे पहले सुनते हैं इस गीत को, जिसे गाया है महेंद्र कपूर ने।

इन्हीं गीतों के साथ यहीं पे समाप्त होता है चित्रगीत कार्यक्रम। फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन 100.2 मेगाहर्ट्ज़ पर यह है आकाशवाणी का हाफलॉन्ग केंद्र। इस समय हमारे स्टूडियो के घड़ी में रात के 10 बज चुके हैं और वक्त हो चला है इस सभा को यहीं पे विराम देने का। कल सुबह की पहली

सभा में सुबह 6 बजे आपसे फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे यानी कि आपके दोस्त इमरान को दीजिए इजाजत। नमस्कार, शुभ रात्रि, जय हिंद।